0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लूटा।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का
1: हो आमचा रेडिओ पुणेरी
2: करदर्शन.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एक भी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज का हमारा विषय है मांसाहार रोगों और पापों को निमंत्रण देता है। मांसाहार होना लोग सोचते हैं बहुत अच्छा है। आज के युग में लोगों के खान पान की जो महत्ता है या जो उनकी चाव है वो ज्यादा मांसाहार की ओर अग्रसर हो रही है, तो इसे हमें ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमात्मा पिता कर्मों की को ही गति बताते हुए कहते हैं कि हमारा जो आत्मा के साथ जो संबंध है, आत्मा प्रकृति के बने शरीर के संबंध में आने से जो अच्छे बुरे कर्म करती है उसका फल आत्मा को क्रमशः सौभाग्य या दुर्भाग्य के रूप में प्राप्त होता ही है। आत्मा करती है तो भुगतती भी आत्मा ही है, फिर चाहे इस जन्म के शरीर में या अगले जन्म के शरीर में, क्योंकि आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का हिसाब किताब लेकर ही जाती है। सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण आत्मा नजर नहीं आती, देह नजर आती है, तो हमें यह भ्रम हो जाता है कि देह कर रही है। देह त्याग कर दिया तो अच्छे बुरे कर्मों का फल भी यहाँ का यहाँ ही रह गया और आत्मा क्लीन स्लेट हो गई, परंतु नहीं, आत्मा निर्लिप नहीं है। इसे हमें यहाँ पर देखना है। वास्तविकता यह है कि आत्मा जब पहली बार इस धरा पर माता के गर्भ से जन्म लेती है तब वो क्लीन स्लेट आती है। जन्म मरण के चक्र में आते हाँ कर्म करते आत्मा पर हिसाब किताब बहुत ज्यादा हाँ हिसाब किताब का लेप जो है लेप छेप लगता जाता है, फिर आत्मा निर्लिप नहीं रह पाती। आत्मा अपने सत्य स्वरूप अपने आदि अनादि स्वरूप को भी भूल जाती है। इस अज्ञान अंधकार में गोते खाते खुद को तो यथार्थ रूप में आत्मा समझती नहीं, अपितु पेड़ पौधों में चैतन्य आत्मा है यह कहकर भ्रमित होती रहती है। मांसाहार को पाप न मानने के और प्रकृति प्रदत्त पदार्थों के सेवन को पाप मानने के तर्क वितर्क में उलझी रहती है। पेड़ पौधे प्रकृति के अंश है हमारे लिए, प्रकृति द्वारा प्रेम से बनाया हुआ भोजन आत्मा अर्थात पुरुष और प्रकृति का यह खेल बना हुआ है। प्रकृति के देश में आत्मा अपना निज धाम परम धाम छोड़कर मेहमान बनकर आती है। मेहमान नवाजी में प्रकृति ने मनुष्य की आत्मा के लिए विशिष्ट प्रकार के वस्त्र यानी कि देह और उस वस्त्र के लिए लाभदायक भोजन प्रदान किया है, शाकाहारी भोजन। ऐसे ही प्रकृति ने अन्य प्राणियों को भी उनके अनुरूप विशिष्ट वस्त्र पशु पक्षी आदि को भी और भोजन शाकाहार व मांसाहार प्रदान किया है। अगर हम देखें तो मनुष्य शरीर शाकाहार के लिए बना है। कहा जाता है जहां जाए वहां के जो नीति नियमों के अनुरूप चलेंगे तो लोग खुश रहेंगे, नहीं तो परिस्थिति से ग्रस्त रहेंगे। लोग का खुश रहना नहीं, हमें खुद को देखना है कि जहाँ के रीति रिवाज के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम खुद में भी खुश रहेंगे। तो हमें देखना है कि आज परिस्थिति से हम ग्रस्त रहेंगे। जैसे भारत का कोई व्यक्ति जर्मनी चला जाए तो वहाँ सड़क पर राइट की जगह लेफ्ट साइड प्रकार चलाए तो नियम तोड़ने की सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसे ही जब मनुष्य आत्मा प्रकृति के देश अर्थात इस धरती पर आते हैं तो उसे यहाँ के नियमों का पालन करना ही होगा। शाकाहारी मनुष्य शरीरों के लिए प्रकृति ने फल सब्जियां अनाज आदि प्रदान किए हैं, वे ही कृतज्ञ भाव से स्वीकार करने चाहिए, न कि प्रकृति में मौजूद अन्य पशु पक्षियों को मारकर खाकर पाप का भागी बनना चाहिए। पशु प्राणियों थलचर दल और जलचर नवचर सब में चैतन्य आत्मा है, उनके शरीर को आहत करना पाप का भागी बनना है, जिस वजह से प्रकृति और पशु दोनों सजाए देते हैं। प्रकृति देह की बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में और पशु आक्रमण के रूप में। पेड़ पौधे भी बीज से निकलते हैं, बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, परंतु वे जड़ हैं। जिन्हों को प्रकृति ने मनुष्यों के भोजन हेतु औषधोपचार हेतु स्वास्थ्य लाभ हेतु बनाया है, फल सब्जियां तोड़ना काटना खाना कोई पाप नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसी चैतन्य आत्मा को देह से अलग नहीं कर रहे हैं, जैसे पशु हत्या में किया जाता है, और न ही यह प्रकृति के विरुद्ध कर्म है, क्योंकि प्रकृति में जो है, हाँ, प्रकृति ने मनुष्य शरीर शाकाहार के लिए ही बनाया है, इस बात को विज्ञान सिद्ध कर चुका है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।
1: प्रेम की गंगा करुणा की देवी, वात्सल्य की प्रतिमा वो परम सेवी। प्रेम की गंगा करुणा की देवी, वात्सल्य की प्रतिमा वो परम सेवी। शक्ति की दानी सच्चाई का दर्पण, शुभ भावना की धारा संपूर्ण शिव समर्पण, संपूर्ण शिव समर्पण। खिले हुए फूलों की जो महकती कयारी है, खिले हुए फूलों की जो महकती कयारी है, शिव सी जो सुंदर है, ऐसी दादी हमारी है, ऐसी दादी हमारी है।

दोस्तों, तो मैं ज्योत्सना फिर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है मांसाहार रोगों और पापों को निमंत्रण देता है। जैसा कि हम सभी देखते हैं, जैसी प्राकृतिक आपदाओं द्वारा मनुष्यों को तकलीफ होने पर प्रकृति पर कोई पाप नहीं चढ़ता, क्योंकि प्रकृति जो है वो जड़ है, उसमें आत्मा नहीं है। ऐसे ही प्रकृति द्वारा मिले फल सब्जी आदि खाने से मनुष्य आत्मा पर पाप नहीं चढ़ता, परंतु पशु की देह में विराजमान चैतन्य आत्मा को इसकी देह से यदि हम अपनी कामना पूर्ति के लिए अलग कर देते हैं तो पाप के भागी अवश्य बनते हैं। जैसे पहाड़ से यदि कोई व्यक्ति टकराकर गिर जाए तो पहाड़ पर पाप नहीं चढ़ता, हाँ, क्योंकि पहाड़ जड़ है। परंतु यदि किसी मनुष्य के धकेलने से वह व्यक्ति पहाड़ से गिरा हो तो धकेलने के कारण, हाँ, धकेलने वाले पर पाप लगता है, क्योंकि धकेलने वाला चैतन्य है और उसने एक चैतन्य आत्मा की देह को क्षति पहुंचाई है। किसी की देह छीन लेना, भले ही वो पशु पक्षी हो, महापाप है। फिर भी कुछ लोग यह तर्क देकर मांस खाते हैं कि फल फूल पेड़ पौधे साग सब्जी भाजी आदि में भी चैतन्यता है, लेकिन वास्तव में यह भ्रम है, अज्ञान है। फल फूल में पेड़ पौधे साग सब्जी हाँ भाजी आदि में चैतन्य आत्मा नहीं होती, पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि का हड्डी मांस जो है रक्त मज्जा से बना शरीर होता है, इसमें चैतन्य आत्मा होती है, जिस वजह से उनके सुख दुख के प्रकंपन प्रकृति में फैलते रहते हैं। यदि किसी प्राणी के शरीर की हत्या करते हैं तो उसे दुख पहुंचता है, हाँ, किसी को कष्ट देना पाप है। किसी की देह ही उस आत्मा से छीन लेना, भले ही वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, यह तो महापाप है। इस दुष्कर्म का दुखदायी फल मनुष्य आत्मा को भुगतना ही पड़ता है। मनुष्यों के लिए जड़ प्रकृति अर्थात शाकाहार ही बनाया गया है, जिसे खाने से किसी जीव अर्थात आत्मा के शरीर की हत्या नहीं होती, इसलिए मनुष्य आत्मा पर पाप का लेप छेप भी नहीं चढ़ता। यहाँ पर हम देखते हैं बढ़ते दुखों का एक कारण है जीव हत्या। मांस खाने के लिए पशु पक्षी के शरीर की हत्या करने से वे आत्माएं दुख क्रोध शोक भय आदि नकारात्मक भावनाओं के प्रकंपन वायुमंडल में फैलाती है, जिससे हिंसा और अशांति बढ़ती है। यह भी आज की दुनिया के बढ़ते दुखों का एक कारण है। फल फूल पेड़ पौधे साग सब्जी भाजी खाने से दुख का वायुमंडल नहीं बनता, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती जो दुख दर्द की लहर फैलाए। इसलिए मांसाहार छोड़कर शाकाहार अपनाना चाहिए, जिससे दुख अशांति और हिंसा का वायुमंडल बनाने में हमें सहयोगी न हम बने, हाँ, ताकि हमारे ही खाते में दुख हिंसा और अशांति न लिखी जाए। पति तपावन परमात्मा ने भी हमें शुद्ध सात्विक आहार लेने की श्रेष्ठ मत दी है। शाकाहार ही मनुष्य आत्मा की शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे अगर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते

नमस्कार दोस्तों, तो मैं ज्योत्सना फिर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है सहनशीलता ही सफलता का आधार है। एक तरफ हम देखते हैं कि सहनशीलता में यह भी हमें देखना हिसाब किताब का चुकतू होना। कोई भी व्यक्ति हमें कटु वचन बोलता है, अपमानित करता है, तो समझना चाहिए कि पीछे का कोई हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। यदि हम सहन नहीं करते बल्कि क्रोध में आकर के उल्टा बोल देते हैं तो हिसाब किताब बढ़ जाएगा। इसलिए निंदा आदि को समझना चाहिए कि हम पर फूल बरस रहे हैं, और यह भी समझना चाहिए कि वह माया की जो है माया के वशीभूत है। क्रोध अहंकार आदि के प्रभाव में आकर यदि हम उसकी आलोचना करते तो हमने माया से हार खा ली। हाँ, यहाँ पर हमें देखना है हमारा कर्तव्य तो उस व्यक्ति तथा अपने को माया से मुक्त करना है। याद रहे कि लड़ाई तो माया से है ना, हाँ, ना कि किसी व्यक्ति से। इस प्रकार हम माया पर जीत पाते जाए तो सहनशीलता का गुण अपने आप ही आएगा। शिव बाबा कहते हैं कि मरजीवा अर्थात पुरानी देह व दुनिया से जैसे मर चुके हैं, मरा हुआ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। मरजीवा बनना मरना नहीं बल्कि माननीय बनना है। एक तरफ हमें ये भी देखना है कि कब तक हम सहन करें। कुछ लोग बार बार तंग करते व सताते रहते हैं। प्रश्न आता है कि कब तक सहन करें। यदि अपने आप में अगर उसे 9 बार सहन किया परंतु 10वीं बार सहन नहीं किया तो बाप दादा कहते हैं कि आपको सहनशीलता का खिताब मिल नहीं सकता। बाबा हमें क्या कहते हैं कि आपको सहनशीलता का खिताब मिल नहीं सकता। अतः हमें क्या करना चाहिए, जब तक हम संगम योग पर सहन करना ही हमारा क्या है कि हम समझे कि हम महान कार्य हमारा संपन्न हो रहा है, सहन करना पड़ता है। यह न समझकर हमें समझना है कि मैं बाप दादा यानी कि हम बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, बाबा ने मुझे सहन करने में आज्ञाकारी रहने का हमें स्वमान दिया हुआ है, मैं उस स्वमान रूपी तिलक को धारण कर रही हूँ। हाँ, समस्याओं को ड्रामा का नजारा समझ उड़कर पार करना होता है, यह झुकना नहीं उड़ना है। एक तरफ हमें ये भी देखना है पूर्वज आत्मा जो होते हैं वो मानव सृष्टि चक्र के आदि अर्थात सतयुग की शुरू में ही हम आत्माएं धरा पर देवी देवता के रूप में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि इस कारण तुम अन्य सभी मनुष्य आत्माओं के पूर्वज हो। लौकिक में जब बच्चे बड़े बूढ़ों के साथ शरारत करते हैं तो वे नाराज नहीं होते तथा कोई बात नहीं बोलकर सहन करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम सदा स्वमान में रहो, मैं पूर्वज आत्मा हूं, इससे आप पे ही सबका सब में अपने आप सहन होता रहेगा, सबकी बातें आप सहन करते रहोगे और सहनशीलता आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com.
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। जब से हमारी ये सीरीज शुरू हुई है, बहुत से हमें कॉल्स आते हैं, बहुत से ईमेल्स आते हैं और आप सबका एक बहुत लगातार रिस्पांस आता जा रहा है। ढेर सारा प्यार भी मिलता है, लेकिन साथ ही हमें बहुत बार दर्शकों ने लिखकर भेजा कि उनके अनुभव जो हो रहे हैं, जो आप लोगों को मिल रहा है, वो बहुत सुंदर है और जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हर बार हम आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करें जो हो सकता है आप ही के जीवन में हुआ हो। तो आज एक बार फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। हम एक बात ये करना चाहेंगे कि जो लोगों का अनुभव हुआ है, जो परिवर्तन हुए हैं, वो जो उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है जो पूरे जितने और नए दर्शक जुड़ते हैं उनके लिए।
1: आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि परमात्मा भी हमें हमेशा यही कहते कि ज्ञान तो है ही सर्वश्रेष्ठ, लेकिन ज्ञान तब मेरे लिए पर्सनल हो जाता है जब वो मेरा एक्सपीरियंस बनता है। तब तक वो किसी और का ज्ञान है, इसे या कहें पहले वो परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान, क्योंकि बाबा का ज्ञान मेरी प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि शिव बाबा ने कहा जो कुछ मेरा है वो आपका है, लेकिन वो मेरी प्रॉपर्टी कब बनता है, जब मैं उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हो और फिर यूज करके सक्सेस मिलती है, एंड देन आई से इट वर्क्स। सो टिल आई कम टू दैट लाइन व्हिच सेज दिस ज्ञान वर्क्स, दैट्स द डे व्हेन आई से ओके नाउ आई एम एट द राइट प्लेस, दिस इज एंड दिस इज गॉड। इवन दैट लेट्स से द बिलीफ टू द ट्रूथ, वो जो जर्नी है, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द बिलीफ कि ये ज्ञान जो है वो डायरेक्ट परमात्मा दे रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए ट्रुथ कब बन जाता, व्हेन आई सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन माई सेल्फ, देन आई से कि यू नो जो देने वाला है वो जो डॉक्टर है ही इज राइट बिकॉज आई एम गेटिंग क्योर्ड। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर एनी इंडिविजुअल।
0: और शिवानी, ऐसा बहुत से लोग हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो कहते जा रहे हैं कि मेरे में परिवर्तन देख रहे हो, लेकिन मैं शो पर हूँ तो
1: आपके अंदर सब परिवर्तन देख रहे हैं। आई मस्ट टेल यू कि वेयर एवर आई हैव गॉन एंड हूएवर आई हैव मेट, एवरीवन टॉक्स अबाउट यू एंड एवरीवन सेज घनु देखते आ रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, एंड वो तो बिल्कुल चेंज हो गई है, एंड यू मस्ट नो कि यू आर बिकमिंग अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। दे आर बिकॉज दे सीइंग यू एंड दे से कि वो बहन के अंदर इतना चेंज आ गया है, उसको इतना समझ में आने लगा है, एंड दे ऑल्सो फील देर इज अ चेंज इन द वे यू आर presenting the whole gyan. So they say ke, because they are seeing you as the example on which the gyan has worked. See, इस साइड पर जो भी भाई बहने बैठते उनको तो वो देख ही तब रहे हैं आफ्टर दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, लेकिन आपको उन्होंने उस जर्नी पर देख लिया है कि व्हेन यू बिगैन विद इट एब्सोल्युटली रॉ, ओम शांति यू वर सेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड टुडे व्हेन दे कैन सी दैट इट वर्क्स, तो आपको देखकर हर एक को बहुत प्रेरणा मिल रही है कि यस दिस कैन वर्क।
0: वेरी ट्रू, एंड इनफैक्ट ये हमें अनुभव तब होने लगता है जब हमारी सिचुएशंस जब आती हैं उनमें हमारा रिस्पॉन्स अलग होने लगता है, हम सिचुएशंस के ऊपर उतने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो ऐसा ही आप सबके साथ भी बहुत लोगों के साथ होता जा रहा है, और आज सिस्टर शिवानी के साथ हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, आप ही में से एक थी, समझा और फिर वो स्टेप उठाया। हम बार बार ये बात करते हैं कि हमें अच्छा लगता है सुनना, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ सुनते हैं, लेकिन क्या ये मेरे जीवन में हो पाएगा जब मेरे जीवन में सिचुएशन आएगी। वो एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया। हमारे साथ खास सिंगापुर से भारत आए हुए, इन दिनों भारत में है, समीना जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति।
2: ओम शांति।
0: आप ही की तरह के एक गेस्ट हैं, मतलब हमारे साथ, लेकिन आप बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं समीना जी, और एक परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कैसे हुआ ये सब, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे प्रोग्राम देखा?
2: आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कैसे हुआ, लेकिन एक बार चैनल सर्फिंग करने के टाइम पे ये प्रोग्राम देखा और मुझे लगा दिस इज डिफरेंट, यू नो ये रिलीजियस टॉक नहीं है, ये कुछ और है। तो फर्स्ट एपिसोड देखा तो यू नो इट वॉज अ गुड थिंग, यू नो समथिंग डिफरेंट, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये कहाँ क्या बोल के आ रहे हैं इन लोग। And then I felt कि this is just talking about life, जो हमारी जिंदगी है, हम उसे कैसे अलग बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, या you know if she is looking so calm, मैं ऐसे बन सकती हूँ, because you know हमारे जिंदगी में इतनी उथल पुथल होती है ना, so I felt कि all right, then I thought कि okay ये एक ही बार होगा, तो कभी और यू नो अनदर डे और टू टाइम वापस सर्व करने के टाइम पे वही वो उसी टाइम पे प्रोग्राम था. सो आई थॉट ओके दिस इज अ डेली शो, यू नो दिस इज नॉट अ वन टाइम शो, लेट मी सी. एंड एक फिर हैबिट बन गई. आप लोग अभी जो कहते हैं संस्कार, वो संस्कार बन गया कि नहीं मुझे देखना ही है, किसी भी तरह से मुझे ये टाइम निकाल के ही देखना है. एंड एवरी डे दैट आई सॉ मुझे लगा दिस इज डिफरेंट. ये जो कह रहे हैं ये शायद अगर ये कह रहे और वर्क करता है तो इट इज इट कैन बी सच अ ब्यूटिफुल लाइफ. एंड आई थॉट ओके नथिंग टू लूज. नहीं काम करेगा तो नहीं काम करेगा, काम करेगा तो अच्छा ही है. तो स्लोली वेरी ग्रेजुअली आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग रोज जो आपके प्रोग्राम होते उसमें से एक बात पकड़ के मैंने बोला ट्राई करते हैं इसे, ये वर्क है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक ट्राई करना था कि कैन यू समहाउ conquer your anger.
0: I know. That's the biggest thing.
2: Because that is such a immediate reaction. जब कुछ गड़बड़ होता है तो first reaction is anger, stress. क्या you know whether we have some sort of control over that situation. And every time a situation came जहाँ हम volatile हो सकते हैं या गुस्सा हो सकते हैं या you know agitate हो जाते हैं, तो तब क्या हम वो सिचुएशन को संभाल सकते हैं, यू नो. एंड आई फेल्ट दैट एक बार किया, दो बार किया, जब बहुत बार किया तब लगा इट इज सो मच बेटर कि तब नहीं होना है गुस्सा, सोचना है करना क्या है. एंड अब गुस्सा अंदर जरूर आता है लेकिन बहुत धीमे आता है, यू नो लाइक ओके एक बात को जब हम भड़क जाते थे बहुत बात पे, अभी you know, थोड़ा वक्त देते हैं. ओके इट्स चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग है ये टाइम, you know, कि गर्मी ठंडी में सब काफी काम रहते हैं लेकिन गर्मी में सबकी सबके टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. सो इट्स रियली अ चैलेंज बट इट्स वेरी नाइस क्योंकि you know, जब हम थोड़ा शांत होते हैं तो सामने वाला भी शांत हो जाता है. आई डोंट नो आई फील इट दैट you know, जब हम आराम से बात करते हैं तो सामने वाला अगर गुस्से में भी होगा तो उसे बुरा लगेगा.
0: See, we've been talking about it.
2: जब वो हमारे से गुस्से से बात कर फिर उसको खुद को लगता है कि बट शी इज नॉट स्क्रीमिंग तो कोई जरूरत नहीं. और हमारे आदत है, एक्चुअली आदत ये भी है कि एवरीबडी नोज मी एज अ पर्सन हुज नो हु रिएक्ट्स वेरी क्विकली. सो दे फील के ये ड्रामा करिए या यू नो क्या हो रहा है, रिएक्शन नॉट स्पॉन्टेनियस एनी मोर. लेकिन आई थिंक स्लोली आई थिंक दे विल गेट यूज्ड टू इट, आई एम श्योर. एट लीस्ट आई फील गुड.
0: नो बट इट्स सो ब्यूटीफुल समीना, आई एम सी यू कमिंग ओवर एंड शेयरिंग दिस विच इज एक्चुअली सो रियल. लेकिन पहला कदम आपने उठाया, दैट वॉज सो इम्पोर्टेंट. सुधा शिवानी,
1: आई थिंक इट वुड बी नाइस इफ यू शेयर हाउ डिड यू एक्चुअली गेट द ज्ञान टू वर्क, यू नो, बिकॉज आई टेल यू अ लॉट ऑफ अस वॉचिंग द प्रोग्राम बट देन वन इज कि हमने प्रोग्राम देखा सुना, लाइक यू बहुत सारे भाई बहने रेगुलर भी देख रहे हैं, बट समवेयर दैट लिटिल गैप इज देयर बिटवीन प्रोग्राम को देखना सुनना, परमात्मा से जो ज्ञान मिल रहा है समझना भी, लेकिन टू टेक इट बैक टू माई लाइफ टुमारो. सो वॉट इज इट दैट प्रोबेबली इंस्पायर्ड यू टू डू इट एंड वॉट डिड यू डू टू डू दैट, यू नो, टू गेट इट टू वर्क? बिकॉज अदरवाइज गुस्सा नहीं करना तो अभी पहली बार थोड़ी सुना आपने. आई एम श्योर इफ यू वर अ हॉट टेम्पर्ड पर्सन तो आपको बचपन से राइट फ्रॉम योर पेरेंट्स टू एवरीवन मस्ट हैव बीन टेलिंग यू कि गुस्सा नहीं करना चाहिए. तो व्हाट इज इट दैट गॉट यू टू वर्क ऑन इट नाउ एंड यू नो हाउ डिड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ?
2: फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्ट दैट आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट ऑन दिस इज बिकॉज आई न्यू आई हैड नथिंग टू लूज. इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, इट डजंट वर्क ठीक है, आई विल बी बैक टू माई नॉर्मल सेल्फ. A lot of people are watching this program, they agree with it, but they don't make an effort to bring it into their lives. You know, isme effort chahiye. You have
0: to. What was that effort?
2: The effort was that the time when I started, I wanted this so much in my life, is there were many things, factors going wrong in my life, and I had no control over it. Mujhe laga ki jaise, you know, I'm holding, jaise ret pakdi hui haath mein sab phisalta ja raha hai. मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ, यू नो, दैट आई वांटेड टू होल्ड ऑन टू थिंग्स.
0: चीजें सिचुएशंस हैं, वो
2: सिचुएशंस
1: हैं, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इन दिस होल सीरीज दैट वी बीन डूइंग. इट्स अ न्यू सीरीज, वी बीन टॉकिंग कि जब जब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है तो जो फर्स्ट फीलिंग आती है दैट इज पावरलेसनेस, कि मेरे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू कंट्रोल अदर पीपल एंड सिचुएशंस एंड दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल एनी मोर. तो सडनली यू फील कि मेरी पूरी जीवन ही मेरे हाथ से निकल, माई हस्बैंड इज नॉट इन माई कंट्रोल, माई चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप नाउ, दे आर नॉट इन माई कंट्रोल, एंड सबसे बड़ी बात, I am not in my own control. So you just feel, then what is in my control? You know, nothing seems to be in my control. And usse ek bahut feeling of kahin demotivation, you know. Life is not enjoyable anymore when you feel ki nothing is in your control. So that's true. That's the time when it's really needed. So that when I come back into control, everything comes back into control.
2: I think that was the key thing, that if I felt, I, like Sister Shivani said many times, don't try to change everybody around you. Try and change yourself. I said, okay, let me work reverse direction abhi. Ki agar mere mein thoda, you know, if I can change a little bit and mere mein badlaav aa jayega, to shayad wo thoda reflect hoga jo mere aas paas hai. Ye waise bhi mere control mein nahi hai, to main let it flow. I don't want to try very hard to change something that's going against me. If I let it go, let me see what happens. And when I did that, when I let go of all possibility to control things, I felt, and I just talked to God. And I said, now you help me from here. Maine aapka haath pakda hai, aap ab mera haath pakdo. And jab maine wo kiya, toh I felt that he actually held on to me. And he said, okay, I'll show you the first step. Chalna tumhe hi hai, lekin steps main sikhaunga. And once I did that, I felt, now I know my path. And what happens is religion, baki sare, I'm a Muslim, and it gets complicated. Jo religions cheeze wo complicate. Mujhe kuch bilkul plain and simple, jo mere samajh mein aaye, aisa mujhe chahiye tha. Jisse meri zindagi, you know, hum, everybody, hum jo bhi yahan, jo bhi programs dekh rahe, everybody wants in their nuclear family to be happy. Koi ye sochta nahi hai ki mujhe dukhi hona hai. I don't think anybody thinks that. Everybody wants just to be happy.
0: Very true. Har koi apne efforts jo hai wo khush rehne ke liye kar raha hai.
2: Yes. So I just wanted to be happy. I wanted my family to be happy, contented. And I feel I'm already on that journey. I feel ke jo bhi mere haath se phisla ja raha tha, phisal gaya tha, jo chala gaya tha, wo dheere, I don't know, main samjha nahi pa rahi hu, lekin wo wapas lot kiya. It's a tide. It went and it's returning.
1: But what all do you feel? You want to share what you feel had gone on that's come back?
2: A lot of things. A lot of that particular phase jab maine ye experiment kiya tha, business mein bhi mere husband ko losses the, family mein bhi problems chal rahe the, and you know, things like that. And we were both depressed. We both were feeling that, you know, we are good people. Hame sab lagta hai, hum sab logo ko aise lagta hai ki we are good people.
1: हमारे साथ गलत क्यों हो रहा
2: है? हमारे, you know, why should it happen? मैंने, हम लोग ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया है, ना किसी को चीट किया है, ना कुछ भी. तो हमारे साथ ये ये ये इतनी पनिशमेंट हमें क्यों मिल रही है? लेकिन नाउ आई रियलाइज दैट दीज वर लेसन्स, एंड दिस वॉज जैसे परमात्मा हमें, ईश्वर कहो, ऑलमाइटी कहो, अल्लाह करो, जो भी, you know, he was actually kind of tuning us, training us for better times to come. And as you start the journey, and now I am a long way into the journey, I feel that there is no other way to live. You know, we are peaceful souls. We are happy souls. We don't have to be sad, you know. Ye rona dhona is not our life.
0: Very true. How beautiful. This is what I think.
1: This is what we've been saying
0: every
1: time.
0: We've been wanting people to come out and say.
1: Yeah. Because pain is not a part of it.
2: Yes. No. Don't give pain to anybody, but don't accept pain also.
0: Yeah. You know. And
1: this is, you know, she's not even realized what she said. Yes. But this is what Shiv Baba says. Na dukh do, lekin na dukh lo. Majority log hum kehte hain ki humne dukh nahi diya, hum kuch galat nahi keh rahe. Lekin dukh lena nahi hai. That part we didn't know. We knew this, ke dukh dena nahi hai. Wo bhi kabhi kabhi galti se de hi dete the. Lekin dukh na lo. We didn't know that we had a choice there. We always thought ki agar kisi ne kuch kaha hai to dukh hi to.
2: But if you're in soul consciousness, if you're conscious all the time, mujhe 24 hours lagta hai ki the divine force is with me. Wo mere saath hi hai. He is with me. And therefore, I will not do wrong. And I will not be wronged. Wo hai. He's protecting me. वो मेरे साथ ही है. अगर कुछ समथिंग गोज रॉन्ग आई फील ही इज टीचिंग मी समथिंग नाउ. आई नेवर सी इट नेगेटिवली.
1: सो इट बिकम्स अ वेरी पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड.
2: यस आई मीन नाउ आई हैव फाउंड के आई हैव अ मैकेनिज्म बाई विच आई कैन एक्चुअली टॉक टू हिम. मैं आई एम शेयरिंग माई लाइफ डेली बेसिस. जब आई एम इन मेडिटेशन दैट्स व्हेन आई एम वेरी क्वाइट. बट उसके बाद आई टॉक टू हिम. आई टेल हिम अगर इफ आई हैव डन समथिंग बाय मिस्टेक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग या मुझसे कुछ यू नो वो स्पॉन्टेनियस जो पहले के संस्कार थे वो गुस्सा कहीं किसी पे आ गया या कुछ भी आई विल टेल हिम कि आई हैव दिस इज व्हाट आई डिड टुडे बट आई विल मेक श्योर दैट आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम. सो द कॉन्शियस लाइक सोल कॉन्शियसनेस आई एम इन दैट सोल कॉन्शियसनेस एंड बिकॉज आई एम इन सोल कॉन्शियसनेस यू कैन नॉट डू रॉन्ग. दैट्स द थिंग.
0: See, that's like, दृष्टि अगर हमारी ठीक रहती है या हमारा पूरा एहसास रहता है तो एक्चुअली नथिंग कैन गो रॉन्ग ऑल्सो. यू नो ये भी आपके ऊपर पूरा स्ट्रॉन्ग आपको एहसास रहता है कि कभी कुछ गलत हो भी नहीं सकता.
2: Yeah.
0: बहुत सुंदर. अब तो मैं आपको सिस्टर समीना भी कह सकती हूँ.
2: No, because Samina, I feel
0: so much a part of the family.
2: Actually. Yes, I am. That's true. I am a part of
0: the family. अपने सभी दर्शकों के साथ हम ये भी शेयर करना चाहेंगे कि समीना जी भारत जो इस बार आई हैं वो अपने परिवार के साथ आई और माउंट आबू गए ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स. वो एक्सपीरियंस कैसा रहा?
2: Yeah, it was. I didn't actually. मुझे पता ही नहीं था कि मैंने सोचा मैं एक आश्रम में जा रही हूँ. पहले तो मुझे वही लगा जब मैं गई और इट इज बिग. यानी इट्स ऑन अ बिग स्केल एंड इतने इतने लोग आते हैं वहां पे. इतने सारे भाई बहन हैं यू नो एंड इट्स जस्ट ब्यूटिफुल. एक्चुअली जस्ट सीइंग एवरीबडी इन द वाइट इट मेक्स यू फील वेरी यू फील लाइक एंजल्स यू नो फ्लोटिंग अराउंड द प्लेस. यू फील सो ब्यूटिफुल. आई हैड अ चांस टू डू meditation for many hours that way, you know. And it was jab sab milke meditation karte wo energy alag hoti hai. Wo hum mujhe khud nahi laga ki main you know 40-45 minute baith sakti hu ek bar. You know I'm very fidgety. To aisa laga ki main hat jaungi, log mujhe dekhenge ki kitni shift ho rahi hai yahan se wahan. Nobody is bothered over there because even the you know senior dadis jisse main mili वो कहते हैं कि ये अपनी पर्सनल जर्नी है. कोई आपको जज नहीं करने वाला है. आप जिस स्पीड से जाना चाहते जाओ. यू नो एक बिल्कुल भी एक रिलीजियस फीलिंग नहीं था. सिर्फ स्पिरिचुअल फीलिंग थी दैट आई एम हियर एंड ही इज देयर एंड आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद हिम.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी। जागरण किसे कहते हैं? जब हम खुद ये जान ले कि हम क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिंदगी का पूरा सफर सोते हुए ही गुजर गया। और जब हमने ये जाना कि अरे हम कौन हैं, तो ऐसा लगता है कि खुद को ही नहीं पहचान पा रहे, खुद से ही खुद का तारुफ कराने की कोशिश करते हैं। ये पूरी श्रृंखला जो हमारी चल रही है, उसमें इन दिनों हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। कई सारे मुद्दे आए, कई सारी बातें आई, कई सारी मिथ्स जो डिप्रेशन से जुड़ी हुई थी वो दूर हुई। लेकिन आज जो मुद्दा हम लेकर आ रहे हैं वो है, जब हम या आप विक्टिम्स हो जाते हैं किसी भी हादसे का। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल, जाने माने साइकोथेरेपिस्ट। डॉक्टर गिरीश, अ वेरी वार्म वेलकम।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत।
3: ओम शांति।
1: ओम शांति। डॉक्टर पटेल, शुरुआत करते हैं उस मुद्दे से कि अगर एक बड़ा हादसा हो जाए, चाहे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए या फिर कोई आग लग जाए या कुछ इस तरह का इंसिडेंस हो जाए जिसमें पब्लिक आउटक्राई भी है, मैं उस जो पूरा हादसा हुआ है उसका एक विक्टिम हूं, चाहे मुझे फिजिकली कोई हार्म नहीं हुआ है, फिजिकली हार्म हो जाए, हैंडीकैप्ड हो जाऊं तब भी प्रॉब्लम है, लेकिन एक इमोशनल स्कार, एक डिप्रेशन सीप इन कर जाता है, बार बार बार बार वो चीज याद आती है और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तब क्या किया जाए?
2: मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो इवेंट्स है उसका कारण एक तो बहुत बड़ा फियर या तो शॉक, क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नहीं, फिर भी वो शॉक रहेगा और वो शॉक बार बार बार वो एक जीवन का ऑब्सेशन भी बन सकता है। जो फोबियाज डेवलप होते हैं कई प्रकार के, वो फोबिया इसी प्रकार से डेवलप होते हैं। जैसे ऐसे हादसे है तो हो सकता है कोई व्यक्ति को बड़े आवाज का फोबिया हो जाए, थोड़ा भी कहीं क्रैकर्स भी जैसे दिवाली में फूट रहे हैं तो वो एक्सट्रीम उसको फियर हो जाएगा।
1: तो जब तक वो फिजिकल था तब तक तो मैं फाइट आउट करता रहा, सब लोगों ने कहा, लेकिन जैसे वो नॉर्मल हुई लाइफ, जो इमोशनल स्कार्स थे वो भूल के मैं भी अपने आप को खुद मेहनत करता रहा, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन सीप इन कर जाता है। उस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं?
2: उस डिप्रेशन में मैं सोचता हूँ कि रिवेंज बहुत बड़ी बात है। जैसे हादसों में एक तो हुआ वो फोबिया, वो एक डिफरेंट इश्यू है, उसको भी हमें डिस्कस करना चाहिए। और एक बात है कि जो रिवेंज की एटीट्यूड आती है कि वैसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, कई बार टेररिस्ट अटैक्स होते हैं तो देन ऑल्सो नो यू फील लाइक टेकिंग अ रिवेंज। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि वो भी टेररिस्ट बन गए। तो उस इश्यू को एक अच्छे से अच्छा काउंसिलर उस बात को समझ करके, उनके जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसे अंडरस्टैंड करके एटीट्यूड को चेंज करना सिखा सकता है।
1: कितना काउंसलिंग जरूरी हो जाता है इन हादसों में, इन
2: तो सबको जरूरी है वास्तव में। पहले ऊपर से हम कहे भी कि आवश्यक नहीं है, मैं तो नॉर्मल हूं, लेकिन हर एक विक्टिम को वास्तव में थोड़ा एक दो घंटा तो काउंसलिंग होना ही चाहिए ताकि हम ठीक से उसे अंडरस्टैंड कर सके और उस अनुसार सही राय दी जाए।
1: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये क्वेश्चन कंटिन्यूस हैमर करता रहता है। ऐसे में भारतीय स्पिरिचुअलिटी, अगर हमारी अपनी सोच को हम देखें कि कार्मिक डेप्थ्स है, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली रियली हेल्प्स। काउंसलिंग ऑफ कोर्स हैज टू बी देयर, बट ये जो विक्टिमाइजेशन की बात है जहां ऐसे में बिल्कुल सब मेरे साथ क्यों, मैं अच्छा बना था सब कुछ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, कंटिन्यूस ये सवाल सिर्फ लोगों से ही नहीं अपने आप से पूछता रहता है वो आदमी। फिर
3: सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण ही शायद वो बन जाता है, या वो दुख में जाने का कारण ही वो बन जाता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। और ये ना जनरली लोग कहते हैं मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैं तो सारी जीवन अच्छा ही चल रहा था, तो मेरे साथ फिर बुरा क्यों हुआ। अगर हम लॉ ऑफ कर्मा को भी लें तो यही हमें सिखाया गया कि आप जैसा करेंगे वैसा आपके साथ होगा। तो हम कहते हैं लेकिन मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, या थोड़ा बहुत किसी को दुख दिया लेकिन इतना बुरा किसी के साथ नहीं किया है कभी, जो मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। तो वहां कर्म फिलोसफी या कर्म का ज्ञान पता होते हुए भी उसको समझ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कर्म फिलोसफी सिर्फ एक जीवन पर आधारित नहीं है। एक जीवन पर वो तब तक आधारित थी जब मैं एक शरीर हूं, तब मेरे लिए जीवन क्या है, जिस क्षण में पैदा हुई अब तब से लेकर अब तक मैंने क्या अच्छा किया क्या गलत किया, तो आई यूज टू सेट माई पैरामीटर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जब ये समझ में आ गया कि ये शरीर नहीं, ये तो एक कॉस्ट्यूम है, मैं एक आत्मा हूँ जिसने इस शरीर को धारण किया है, तो अब एक सेकेंड के लिए डिटैच हो जाइए, यू नो, टेक योर सेल्फ सेपरेट, कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर मैंने धारण किया है। मुझ आत्मा की एज कितनी है?
1: तो है ही,
3: इस शरीर की एज 35 है, मुझे पता है। तो देन आई से आई हैव डन गुड फॉर 35 ईयर्स, लेकिन मैं आत्मा हूँ, अब मेरी एज कितनी है और मैंने इस एज में कितना अच्छा किया और कितना गलत किया, दिस हाउ विल आई अंडरस्टैंड। जैसे आपने कहा आत्मा अजर अमर, तो आत्मा क्या कर रही है, इट्स इटर्नल एनर्जी, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। तो वो एक कॉस्ट्यूम लेती है, टाइम पूरा हुआ, वो भी कब टाइम पूरा हुआ, उस कॉस्ट्यूम को छोड़ा, तो कॉस्ट्यूम को छोड़ते ही वो कहाँ जाएगी, वो एक दूसरा कॉस्ट्यूम लेती है। लेकिन जब दूसरा कॉस्ट्यूम लिया, इस कॉस्ट्यूम में जो जो डीलिंग्स की थी, सपोज आज आपने पिंक कलर की साड़ी पहनी है एंड आज आप मेरे से 100 रुपीज ले लेती हैं, तो मैंने आपको 100 रुपीज दिए, आप लेकर चले गए, ठीक है, कल आप ब्लू साड़ी पहनकर आती हैं और आप कहे नहीं मैंने तो पिंक साड़ी जब पहनी थी तब आपको 100 रुपीज दिए थे, तो वो बात वहीं की वहीं फिनिश हुई, अब मुझे वापस नहीं करने, तो दैट्स नॉट लॉजिकली राइट। आई सर आपकी साड़ी ने पैसे नहीं लिए थे, आपने पैसे लिए थे, सो इट डजेंट मैटर कि आपने कौन सी आज साड़ी पहनी है, यू स्टिल हैव टू रिटर्न माय 100 रुपीज टू मी।
1: सोल के डेप्थ,
3: यस, तो नाउ व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट आई एम अ सोल, आई अंडरस्टैंड कि इस कॉस्ट्यूम में शायद मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स और पहले धारण किए थे, उन कॉस्ट्यूम्स में मैंने क्या क्या किया आई डोंट रिमेम्बर। तो आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, व्हेन वी अंडरस्टैंड कर्म, इट्स कर्म ऑफ द सोल नॉट कर्म ऑफ द बॉडी, तो सोल की एज ये एज नहीं है, सोल की एज बहुत सारी लाइव्स पहले जा रही है और बहुत सारी लाइव्स में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हमने किया है। तो वो सब का डीलिंग कंप्लीट करना, या जिसको हम कहें कार्मिक अकाउंट सेटल होना, वो होना ही है।
1: सो फाइनली आई थिंक इट कम्स डाउन टू एक्सेप्टेंस, सिस्टर शिवानी की, एक्सेप्ट कर ले कि ये कार्मिक डेप्थ है, इसमें कुछ नहीं कर सकते,
3: एक्सेप्टेंस लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ, यू नो इट इज नॉट अ फोर, एक होता है कि जबरदस्ती एक्सेप्ट कर लो, इट्स लाइक अगर आपको मुझे वापस करने हैं वो 100 रुपए, आप कहो ठीक है जी जबरदस्ती, मतलब मैं स्वीकार करूं, जबरदस्ती नहीं है, आपने लिया था, सो इट इज एन अंडरस्टैंडिंग, आपने लिया था आपको देना है, अगर हम जबरदस्ती एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगा।
1: लेकिन फिर अगर मुझे याद ही नहीं कि मैंने लिया था या नहीं, तो मैं एक्सेप्ट कैसे कर,
3: लेकिन समझ जाना पड़ेगा कि हर चीज एक नियम से चल रही है, हु इज इट अदरवाइज हु डिसाइडेड दैट आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट यू नो दैट इंसिडेंट, देयर इज नोबडी एल्स। और अगर जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा यू नो ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस, तो परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी, उसमें सब थॉट्स जो अभी किए जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
2: और ना कनुप्रिया जी, इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी सोचा जाए, वो शायद सरल भी हो सकता है, ये सत्य है कि मेरे साथ ये हादसा हुआ, लेकिन औरों को और भी प्रॉब्लम हुए हैं। अगर औरों के जीवन को आप देखो पूरे, तो उतनी ही मैग्नीट्यूड के भी, किसी को कैंसर हो गया, किसी की माँ बचपन में ही गुजर गई, तो वह देखेंगे तो सच उतने बड़े।
1: डॉक्टर पटेल, लेकिन बात ये होती है कि जब इसमें आ जाते हैं, जब हम उस दौर से गुजर रहे होते हैं, तब हम दूसरे जो हमारे से भी बुरी हालत में, उन्हें नहीं देख रहे होते हैं।
2: वो गलत है ना?
1: हाँ, लेकिन होता यही है, मतलब
2: इसलिए कि वाई मी एटीट्यूड कभी नहीं कहो।
1: हाँ,
2: यह सोचो, उल्टा तब समय भी दो और ये प्रैक्टिकली सोचो कि भी औरों के भी सामने सचमुच प्रॉब्लम्स हुए। इसमें एक बहुत अच्छी कहानी है जो इंटरेस्टिंग भी होगी। कहते कि एक बार एक व्यक्ति को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ और वो भगवान के पास गया और भगवान को कहा कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, भगवान मैं कितना बदनसीब हूँ, हाँ वाई मी, मुझे देखो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है ना, उसकी गठड़ी बहुत बड़ी थी। फिर भगवान ने कहा कि भी तुझे देखना है कि भी औरों को भी कितने प्रॉब्लम है, कहा बिल्कुल मुझे देखना है। तो परमात्मा ने सबकी दिखाई गठड़ी, हाँ उसके पिता की गठड़ी दिखाई, उसके चाचा की दिखाई, नेबर की दिखाई, तो जाके उसने खोल के देखा तो उनकी गठड़ी तो और भी बड़ी थी, उनके प्रॉब्लम्स तो और भी बड़े थे। नेबर का बेटा है ड्रग्स लेने लगा था, बहुत सीरियस प्रॉब्लम था, हाँ किसी के साथ वो फेथ टूट गया था, किसी का अफेयर था दूसरे के साथ, तो उसको तो और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो सब वो देखा तो उसको लगा हाश नहीं, मेरे प्रॉब्लम तो कम है, फिर वो जाने लगा। अंत और भी इंटरेस्टिंग है इसका, बस थोड़ा सा स्पिरिचुअल है। वो जाने लगा तो भगवान ने कहा जा रहा है? उसने कहा जा रहा हूं, अभी मुझे तसल्ली हो गई, मेरी गठड़ी तो छोटी है। फिर से पूछा जा रहा है? कहते हाँ हाँ जा रहा हूं, अभी तो मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ। फिर पूछा गठड़ी? तो कहा जा रहा हूँ। अरे बुद्धू, देख और सब तो गठड़ी छोड़ के गए यहाँ पर, तू क्यों लेके जा रहा है? मैं उसे ट्यूबलाइट हूँ, अरे रे तो सब मुझे छोड़ के जाना है,
1: लेकिन एक और बड़ी गठरी लेकर आऊंगा जब मैं वापस लौटूंगा।
2: तो दे दो परमात्मा को, हाँ अपने प्रॉब्लम है, एक तो राइट सोचो, साइकोलॉजिकली भी सोचो, स्पिरिचुअली भी सोचो, फिर अल्टीमेटली अपने प्रॉब्लम से भगवान को सौंप दो।
3: बहुत सुंदर लगता है। स्पिरिचुअली भी इसको अब साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया गया है, क्योंकि जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, पहले हिप्नोटिज्म हम सुनते थे, लेकिन हिप्नोटाइज वो इस जीवन में ही करते थे, यू नो आपके कोई भी प्रॉब्लम को वो आपको हिप्नोटाइज करके सबकॉन्शियस माइंड से वो बातें निकालते थे कि आपके बचपन में या कुछ क्या हादसा ऐसा हुआ था जिसका ट्रॉमा आप अभी तक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अब जो साइंस ने और प्रगति की है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, आप हिप्नोटाइज कर रहे हैं, आत्मा है तो आत्मा की कोई एज नहीं है, अगर आप उसको 10 साल पीछे लेके जा सकते हैं, आप उसको 50 साल भी पीछे लेके जा सकते हैं, तो आप उसको 200 साल पीछे भी लेके जा सकते हैं, बात सिर्फ कितना पीछे जाने की है। तो आज कई लोग जो अपनी प्रॉब्लम्स लेके, मेरे को लगता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, तो हिप्नोसिस में यही पता चलता है कि उसकी जड़ कहीं ना कहीं थी, कोई चीज भी आपके साथ अभी ऐसी नहीं हो रही है जिसका कनेक्शन कहीं पीछे जुड़ा हुआ नहीं था, और जैसे ही उन लोगों को वो कनेक्शन दिखाई देता है वो फ्री हो जाते हैं, बिकॉज दे जस्ट नीड अ लॉजिक कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा
1: है। आंसर,
3: वंस दे गेट द आंसर, इट्स वेरी इजी टू एक्सेप्ट। सारे जितने केस स्टडीज ये हुई है और इसपे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी पब्लिश हुई है, जैसे ही उसको रियलाइज हुआ अच्छा ये हुआ, उसका रिजल्ट ये है, जस्ट गेट्स ओके। तो अब हमें वी डोंट नेसेसरी हैव टू गो थ्रू दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वी नो देयर वाज अ पास्ट लाइफ एंड वी नो दिस इज समथिंग बिकॉज ऑफ दैट, सो इट्स जस्ट इजी टू एक्सेप्ट।
1: देन अभी आपने ये भी कहा कि थॉट जो है अब, क्योंकि एक बार हम विक्टिम हो गए, हम उस डिप्रेशन में चले गए हैं, नाउ द थॉट दैट हाउ टू कम आउट ऑफ इट, यू नो नाउ दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज नाउ द टाइम इज लाइक व्हाट टू डू नेक्स्ट, you know how to come out of it. So matlab ek therapist ke naate bhi kya aap kaise kahenge ki wo bahar nikle, and of course agar hum spiritually bhi dekhe to wo thought ko kis tarah se mold karna hai ki hum bahar nikal sake.
2: Aise hadson mein ek to badle ki bhavna nirman hoti hai tuhan, aur bhal wo ye main nahi keh raha hu ki bhi nahi honi chahiye, kyunki aapke sath badi samasya hui hai to naturally man ke andar wo vichar chalenge, परंतु उसके पीछे एक रीजनेबल टाइम दो। कई बार मैंने देखा है सारा जीवन वहीं चला जाता है, 24 घंटे बस यही सोचते हैं कि भी कैसे मुझे न्याय मिले, है ना, कैसे कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो। भल करिए, परंतु ये सोचिए कि जीवन में और भी बहुत कुछ है।
1: ऑब्सेशन बन जाता है,
2: ये ऑब्सेशन नहीं बनना चाहिए कि भी और चीजें मुझे करनी है, मेरी जो टैलेंट्स है उसको निखारना है, जीवन में आगे बढ़ना है, यह बात भी साथ साथ में होनी चाहिए। और एक जो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं कि इसे फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करो, क्योंकि तभी बिकॉज यू हैव सफर्ड।
1: नहीं पर ये जो जब हम इस हादसे की बात करते हैं इसमें तो हम फ्यूचर में नहीं प्रिवेंट कर पाएंगे, लेकिन जो इंसिडेंट आप बात कर रहे हैं, जैसे हम एक्चुअली जो मेजर यू नो डिप्रेशन से गुजरते हैं वो है चाइल्ड अब्यूज और रेप विक्टिम्स जो है, कि रेप विक्टिम अगर आप है वो इंडिविजुअल हो जाते हैं।
2: यू आर राइट, रेप विक्टिम की बात ठीक नहीं, यहाँ पर भी मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल टेररिस्ट अटैक्स है, वहां इफ आई एम अ विक्टिम से, फिर मैं अपनी लाइफ को डेडिकेट करूं कुछ तरीके से, ताकि नहीं लोगों को ट्रेनिंग में दे सकता हूं कि भी कैसे बचना है और कुछ, है ना भाई, टेररिस्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी कुछ एफर्ट की जाए. ब्रह्मा कुमारी तिहार जेल में भी जाकर के उन्होंने कई मेडिटेशन के प्रोग्राम्स किए हैं. बल हमारे पास एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक नहीं कि कितना परिवर्तन आया होगा, पर अगर 10% भी परिवर्तन आया है तो वो बहुत बड़ी वर्थवाइल चीज है. ब्रह्मा कुमारी ने डाकुओं में भी चेंज लाए उसके लिए एफर्ट की. डाकू पंचम सिंह की जो बहुत अच्छी तरह से सुनाते, करीब 2 घंटे तक मेरा उनके साथ डिस्कशन हुआ था. तो कहते थे इम्पॉसिबल था कि अगर ये बहने वहां नहीं आती तो मेरे में बदले की भावना थी जिससे मैं छूटता, रिवेंज लेता, लेकिन इसकी मेरे माइंड के ऊपर इफेक्ट हुई. तो ऐसी कुछ एक्टिविटी हम कर सकते हैं जिससे वो प्रिवेंट हो
1: और कहीं ना कहीं इंस्पायर होके, यू नो, इंस्पिरेशन जो है. और कहा यह जाता है कि जो खासकर मुजरिमों के लिए कहा जाए कि जो इतने प्लानर्स होते हैं, अगर वो पॉजिटिविटी में चले जाएं, सो दे कैन एक्चुअली बिकम सच गुड लीडर्स
3: एंड प्लानर्स. दे हैव द क्वालिटी,
1: यस, यू नो. तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी में आ जाए. अगेन विक्टिम्स के बारे में अगर हम बात करें, खासकर रेप विक्टिम एक ऐसा विक्टिम है जिसके बारे में, जिसको जो जिस दौर से गुजरता है उस पूरे हादसे के बाद, वो एक बहुत लंबा वक्फा होता है. बहुत लंबे टाइम तक उस पूरे इंसिडेंट से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. साइकोलॉजिकली ऑल्सो अगर हम देखते हैं तो वो बाहर कैसे निकल सकती है या कैसे निकलना चाहिए, और हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प हर. कार्मिक उसका ये सवाल कि मेरे साथ क्या हुआ, तो चलिए कार्मिक डेप्थ था, अब व्हाट नेक्स्ट, देयर हैज टू बी अ नेक्स्ट, देयर हैज टू बी अ टुमारो. सो हाउ इज इट दैट शी कैन कम आउट ऑफ इट.
2: या पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इट्स एक्सट्रीम स्ट्रेस. कहीं डॉक्टर राहे ने एक पूरा स्केल तैयार किया है, उसमें बहुत सारे प्रश्न है और ये सारे प्रश्नों के पॉइंट्स भी दिए गए कि भी इसको कितनी स्ट्रेस होगी. इसमें 100 पॉइंट्स दिए हैं कि नियर रिलेटिव की डेथ हो जाए तो दैट इज 100 पॉइंट. नो मैरिज इज 50 पॉइंट क्योंकि दैट इज ऑल्सो स्ट्रेसफुल. तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जो रेप विक्टिम्स की बात है, इट कैन बी इवन 10,000 पॉइंट विच इज एक्सट्रीमली सीवियर. लेकिन फिर भी देखा है कि ऐसे सिचुएशन में हर एक का रिएक्शन डिफरेंट होता है. भी कहीं तो डिप्रेस्ड फील करते, दे कमिट सुइसाइड इवन, नो. Some keep that revenge throughout their life. कहीं तो डरने लगते हैं, always they have a fear. और भी कुछ लोग है, all that is rare, कि ऐसे भी है कि भी जिन्होंने इसको अपना एक social work बना लिया, कि भी और भी जो इस प्रकार के victims है उनको जाके मिले, उनको counseling दी, अपना अनुभव सुनाया, how to come out of it.
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल बहुत से दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि ये जो विक्टिम है, क्या ये कभी इस ट्रॉमा से बाहर पूरी तरह से आ सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि ये जो इमोशनल स्कार है लाइफ का इतना बड़ा, इसे पूरी तरह से बाहर आया जा सकता है? विल दे एवर बी एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ?
2: फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑल्सो एग्री, क्योंकि नहीं, कई बार कहना सहज है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल यू कैन.
1: दैट्स व्हाट,
2: एंड इवन इफ यू कैन कम आउट टू 90% से, है ना, 80%, 90% भी आप बाहर आ गए और अपनी लाइफ को नॉर्मल बना दिया, देन दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव.
1: सर शिवानी, काउंसलिंग, स्पिरिचुअलिटी, द होल एस्पेक्ट ऑफ नोइंग माई सेल्फ, विल इट हेल्प?
3: लॉट्स.
1: कैन आई कम आउट 100%?
3: बिकॉज आई थिंक इस चीज में इससे ज्यादा और कोई चीज हेल्प शायद नहीं कर सकती है, क्योंकि कोई और काउंसलिंग बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी इसमें, क्योंकि द पेन इज टू मच, यू नो. बट नाउ मे बी ज्यादातर इस तरह के मन में क्या चलता होगा, अपने आप से नफरत भी हो जाती है, यू नो. दूसरे से तो होती है, लेकिन अपने अंदर लगता है कि मेरे अंदर कुछ, यू नो, अपने आप से नफरत जो होती है ना, वो ज्यादा ट्रॉमेटाइज करती है दूसरे से, क्योंकि दूसरा शायद अब आपकी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन खुद को देख देख के आपको अपने आप से प्रॉब्लम होने लगती है और लगता है मेरे अंदर कुछ कमी थी जिसने इस तरह का घटना.
1: या
3: यू आर कंटिन्यूसली ब्रिंगिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द अंडरस्टैंडिंग, नथिंग वॉज रॉन्ग विद मी, यू नो आई वॉज एब्सोल्यूटली फाइन, ये किसी और की कमजोरी थी, मेरी कमजोरी नहीं थी वो सबसे पहले, क्योंकि बहुत लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है जब ये हो कि ये मेरी कमजोरी थी, मेरी कोई गलती थी. तो सबसे पहले वो अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरी कमजोरी नहीं थी, दिस वॉज समबडी एल्सेज वीकनेस. और दूसरा, ओके आई इट मे साउंड ईजी बट इट इज द ओनली थिंग विच मेक्स सेंस, इज आई हैव गोन थ्रू समथिंग, एक दर्द है, अब मैं इस दर्द को कितना टाइम यू नो लेकर चलना चाहती हूँ, एक दिन, दो दिन, दस साल या पूरी जीवन, यू नो दैट्स इन माई हैंड, डेफिनेटली वो मेरे हाथ में है. तो कहीं ना कहीं अगर अपनी लाइफ में अपने आप को एक अलग डायरेक्शन में ले जाए, यू नो अपने आप को किसी चीज में ऑक्यूपाई कर ले, और इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि आप नॉर्मल रहे. जितना आप नॉर्मल रहते हैं चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, जितना आप सिंपथाइज करने की कोशिश करते हैं या बार बार उस इंसिडेंट को यू नो रीलिव करते हैं या उसको डिस्कस करते हैं, वो बार बार जागृत होता जाता है. बिकॉज हियर द ओनली थिंग दैट विल हेल्प इज फॉरगेट एंड फॉरगिव. Nothing else.
1: Yeah, the anger, you know.
3: Nothing
1: See,
3: else
1: when
3: will
1: the self-pity
3: help.
1: comes, the anger also comes.
3: Absolutely. So, आपको forget करना पड़ेगा, लेकिन भूलना easy नहीं है जब तक आप क्षमा नहीं कर सकेंगे. अब अगर logically कोई सोचे तो कहे ऐसे व्यक्ति को हम क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे हम अपने आप को दर्द पहुंचाते रहेंगे. तो we will have to, you know, let go of that person because that person is still here. You know, physically नहीं है, लेकिन मैंने उसको hold करके रखा हुआ है अपने mind में. I will have to pick that person out from here and throw him out forcefully. बार बार वो thought जितनी बार भी मेरे सामने फिर आती है, no, that pain was for that one day, not again. लेकिन बार बार करने से I am inflicting that pain on myself. You know, so वो उस process से गुजरने के लिए. और दूसरा, किसी भी हादसे में, चाहे ये या कोई accident या handicap, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान बहुत ज्यादा help करता है. क्योंकि एक है कि मुझे कुछ हो गया है और एक है मेरे शरीर को कुछ हो गया है. Two things totally different.
1: मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता,
3: मुझे कुछ नहीं हो
1: ये
3: सकता,
1: एहसास
3: मुझे वो ही हो सकता जो मैं खुद को दूंगा, और वो है दर्द. शरीर का अंग खराब हो सकता है, लेकिन वो मेरे शरीर का, यू नो द मिनट आई से मेरा शरीर, इट बिकम्स जैसे किसी और को हुआ है, यू नो. और जब किसी और को होता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, लेकिन मुझे हुआ है, मुझे हुआ है, बार बार मुझे हुआ है, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ पेन. तो वो पेन हम अपने आप को देते हैं. जो एक्सीडेंट था उसने मेरे शरीर को तकलीफ थी, दर्द हम खुद को देते हैं. तो वो जब अपने आप को हम सेपरेट कर देते हैं विद अंडरस्टैंडिंग, इट्स जस्ट इजियर टू अंडरस्टैंड.
2: और यहाँ पर जो मैंने अनुभव किया है कि रिलीजियस टीचिंग्स आर आल्सो वेरी पावरफुल. वो उदाहरण याद आता है कि जो प्रिस्ट और उनके बेटों को उड़ीसा में सभी पूरा जिंदा जला दिया गया.
3: वेरी गुड केस.
2: तो एक साल के बाद उनकी पत्नी का एक इंटरव्यू आया था, उनको पूछा कि भी आपको कैसा लग रहा है वैसा हुआ, तो बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जिस दिन यह हादसा हुआ उसी दिन मैंने उनको माफ कर दिया. एंड नो लॉ विल टेक इट्स ओन एक्शन. उन्होंने भी कहा कि भाई लॉ के अनुसार सजा मिलेगी, फिर मैंने तो उनको माफ कर दिया.
1: क्योंकि
2: तो ये पावर साइकोलॉजी में नहीं हो सकती है ना, कुछ भी करो मनोविज्ञान या नहीं कर सकते. आध्यात्मिक जो उनकी बिलीफ सिस्टम थी उसके कारण ये पावर आई.
1: एंड ब्यूटिफुल एक्चुअली, फॉरगिव करना, माफ करने से मैं अपने आप के लिए ही शांति कहीं ना कहीं तलाश.
3: क्योंकि सबसे पहले मैं अपने आप को माफ करती हूँ. सी एनीथिंग यू गिविंग टू द अदर पर्सन वो आपके लिए है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो दूसरा, हम दूसरे को क्या माफ करेंगे, लेकिन खुद को जब कर देते हैं तो वी बिकम वेरी लाइट इनसाइड. एंड दिस एग्जांपल इज बिकॉज दैट लेडी इज लीडिंग अ ब्यूटीफुल लाइफ, जबकि उनके साथ जो हादसा हुआ, इट्स डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट. तो इट वॉज जस्ट फॉरगिवनेस.
2: और भूलने के लिए भी माफ करना. अल्टीमेटली
1: हाँ,
2: व्यक्ति भूलना चाहता है.
3: जब क्षमा करते हैं तभी भूल सकते हैं.
2: वो रिपीटेशन स्टॉप होगा और भूल.
1: दैट्स व्हाट यू सेड, फॉरगिव एंड देन फॉरगेट.
3: फॉरगेट करना नहीं पड़ेगा ना, वो भूल जाएगा. हम लोग जनरली कहते हैं मैं भूल गया ना. अगर आपने ये तो बहुत बड़ी छोटी बातों में भी आपने मुझे ये कहा, मैं भूल गया जी, मैं भूल गया, अंदर फॉरगिव नहीं किया तो तब तक भूल नहीं सकते. फॉरगिव किया तो वो याद ही नहीं आएगा, और नहीं तो 10 साल बाद भी याद आएगा, आपका एक एक कड़वा बोल याद आएगा. तो इट्स नॉट फॉरगिवन, सो इट्स नॉट फॉरगॉटन.
1: बिल्कुल डॉक्टर गिरीश पटेल, असिस्टेंट शिवानी, बहुत सार्थक हमारी बातचीत रही. ये एक्चुअली मुद्दे ऐसे नहीं हैं जिन्हें हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इस पे अभी आगे अगली कड़ी में भी जरूर बातचीत करेंगे। कुछ और विक्टिमाइजेशन की बात जो है, कुछ और विक्टिम्स ऐसे हैं जो सारी जिंदगी निकाल देते हैं और वो तो कह भी नहीं पाते, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो चाइल्ड अब्यूज होता है, लेकिन वो हम अगली कड़ी में पहुंचेंगे। आज जो बातचीत रही अल्टीमेटली यही सामने आई बात की फॉरगिव एंड देन यू ऑलवेज फॉरगेट, यू नो, एंड समवेयर जो ये बड़े हादसे हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उसमें कार्मिक डेप्ट उसमें हमारे हाथ में नहीं है, एक्सेप्टेंस हमारे हाथ में है कि ये होना था, हो गया, कोई बात नहीं, अब आगे जिंदगी है। डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। डिप्रेशन से जुड़ी और भी बातें हैं जो आपके दिमाग में होंगी, जो आपको सता रही होंगी और शायद आप हमारे साथ उन्हें शेयर करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमें फोन पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी हमें भेज सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। विक्टिम्स हम में से हर कोई कभी ना कभी हुआ है, क्या विक्टिम्स बन के हम अपनी सारी जिंदगी इसी तरह से गुजार देंगे या फिर फॉरगिव एंड फॉरगेट यानी कि माफ करना और फिर भूल जाना इस पद्धति को अपनाएंगे? सोचिए और अगली कड़ी में कुछ और ऐसी ही बातें, कुछ और ऐसे ही मुद्दे लेकर आपसे मुलाकात करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पल्स 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सेक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने।
3: जीवन में अगर सेवा भाव है तो जीवन बहुमूल्य बन जाता है। हमारे आसपास कई ऐसे रोजगार हैं, कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन सेवा से है, जैसे कि हॉस्पिटल, बीमार बुजुर्ग, तकलीफ में रह रहे, तकलीफों से जूझ रहे लोगों को मदद पहुंचाने वाले। इस प्रोफेशन में एक बहुत ही खास नाम जुड़ जाता है उनका, जो कि इनकी दिन रात सेवा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उनकी, जो कि नर्सिंग के द्वारा लोगों को बहुत बहुत सुख और सुविधाएं पहुंचाते हैं। यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के एक और एपिसोड में मैं शांतनु आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले एपिसोड में आप सुन रहे थे ग्लोबल हॉस्पिटल के चीफ मैट्रन, चीफ नर्स ब्रह्मा कुमारी रूपा बहन को, जो कि राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित हैं, कि कैसे उनके जीवन में सेवा का या नर्सिंग का क्या महत्व है और वास्तव में नर्सिंग की ड्यूटी कितनी टफ होती है। हम इन बातों पर चर्चा कर रहे थे और आज हम दोबारा उनके साथ मिल रहे हैं। रूपा दीदी, आपका स्टूडियो में फिर से स्वागत है, नमस्कार। और शुरुआत करते हैं एक सवाल से।
4: आपके प्रोफेशन में आपको इतने लोगों ने सिस्टर्स बोला होगा, कितने ही लोगों ने सिस्टर्स बोला होगा, और आप कितनों की सिस्टर्स बनी होंगी। आपको नहीं लगता कि समटाइम्स ये जो वर्ड है सिस्टर, या जैसे मेल नर्स होंगे तो उनको ब्रदर्स कहते होंगे या जो भी तरीके से बुलाते हैं, इसका एक वैल्यू बहुत बड़ा हो जाता है और उसको कैरी कर पाना कई बार लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नर्स है, वो भी 24 घंटे है, उसके पास भी, मेरे पास भी 24 घंटे है, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल है वो कितना डिफिकल्ट है, किसी और के बॉडी को हील करने में उनकी बॉडी का कितना एनर्जी लग रहा है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो नर्स है वो थकान महसूस करे, या हो सकता है उनको भी कभी फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन आता होगा। कई पेशेंट ऐसे मिल जाते होंगे जो कि कॉन्स्टेंटली एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे कोई अगर आपको सिस्टर कह रहा है तो भी क्या आपके अंदर से वो सिस्टर वाला प्यार निकलता है, या उस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कैसे आप डील करते हैं?
5: अपनी थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है हमें इन बातों के लिए। तो जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग स्टाफ होती है और वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, तो उस समय कई बार सिस्टर्स हो जाती है फ्रस्ट्रेट, और ज्यादातर उस समय होती है कि जब माना हमारे हॉस्पिटल में हमें ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो सिस्टर्स है वो कैंपस में ही ज्यादातर रहती है, लेकिन बाहर के हॉस्पिटल में कई बार मैं देखती हूँ कि जैसे हमारा हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर का टाइम चल रहा है, जैसे आप दूसरे शिफ्ट वालों को दे रहे हैं पेशेंट का हैंड ओवर दे रहे हैं, और उसी समय अगर एडमिशन आ जाता है तो कई बार मैंने सिस्टर्स को फ्रस्ट्रेशन होते हैं, अरे अभी ही आना था क्या इसको, मुझे जाना है और आज मुझे जल्दी निकलना है, ऐसे समय पे ये होता है। लेकिन यहाँ इतनी हमारी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि फर्स्ट ही हम लोग पहले कहते हैं कि हमें टाइम देखकर काम नहीं करना है, तो हम वो देखते हैं कि जो भी है। तो मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम हमारे स्टाफ से नहीं फेस करनी पड़ती है कभी भी, वो लोग बड़े प्यार से ही करते हैं। हाँ, लेकिन जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में,
4: आपने जो ये बताया ना कि टाइम देख करके सेवा नहीं करनी, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड फॉर्मूला फॉर हूएवर इज इन दिस प्रोफेशन, जो भी कोई इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है कि आपको सेवा करनी है, समय देख करके सेवा नहीं करनी। बहुत अच्छा लगा ये सुनके।
5: और मैं हमेशा हमारे नर्सेस को भी यही हमारी इनको कहती हूँ कि पेशेंट हमारे पास जब आता है तो वो बहुत दर्द में आता है, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल में आना नहीं चाहता है। जब बहुत टॉलरेंस के बाहर हो जाता है तब जाकर वो एडमिट आते हैं, तो हमें उन्हें बड़े प्यार से वेलकम भी करना चाहिए, मना उनको लगना चाहिए कि हाँ बाबा मेरी यहाँ केयर अच्छी से होगी, इस प्रकार से हमें उनको ये करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एकदम अरे इस समय क्या आया, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। वो कंपैशन हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारे इसमें पेशेंट इतना आया है तो हमें उसकी अच्छी देखभाल प्रॉपर नर्सिंग केयर हमें करनी चाहिए। ये हमारे सारे नर्सेस को सिखाते हैं यहाँ, मेन इस पर फोकस होता है,
4: ये आप फोकस, हाँ, इसके फोकस में है।
5: हाँ, तो ये होता ही है कि भाई ये ध्यान रखना है हमें।
4: एंड आई थिंक आपके फोकस में, क्योंकि ये मूलभूत बातें हैं जो कि नर्सिंग की मूलभूत बातें हैं, या प्यार या संभाल देने की मूलभूत बातें हैं, क्योंकि नर्सिंग मतलब ही प्यार से किसी को ठीक कर देना। नर्सिंग वर्ड का मतलब ही है कि केयर से आप किसी को ठीक कर रहे हैं, दवाइयों से नहीं। दवाई तो चलो देंगे ही, लेकिन जो प्यार और पालना है, उस पालना से आप सामने वाले को ठीक करते हैं। ये आपके मूलभूत सिद्धांत इतने मजबूत है कि ये आपको एक साधारण नर्सिंग प्रोफेशन में आपको एक बहुत अनूठा अनोखा व्यक्तित्व बना देते हैं, जिसके तहत 2018 में राष्ट्रपति जी के द्वारा आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बहुत कम नर्सेस को ये सम्मान मिलता है। आपको जब ये सम्मान मिला, तो आपने पहले भी बताया कि मैंने सम्मान के लिए कोई सेवा नहीं की, लेकिन जब आपको ये पुरस्कार मिला तो आपको क्या लगता है कि आपके आसपास में जो लोग थे, क्या उनका आपके प्रति नजरिया थोड़ा डिफरेंट हुआ, या कुछ क्या चेंजेस आए?
5: चेंजेस तो है नहीं, लेकिन सबको बहुत प्राउड फील हुआ क्योंकि राजस्थान स्टेट में मिलना, एक फीमेल इसको मिलना, तो ये क्योंकि हर स्टेट से एक व्यक्ति को उस साल में मिलता है हर स्टेट से। और ये कैसे आपका सिलेक्शन होता है कि यहाँ से आपका जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हम लोग जैसे सिरोही में है, सिरोही हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमारा ये फिर सेंट्रल इस पे गया, स्टेट लेवल पर जयपुर में गया और वहां से सिलेक्ट होकर फिर सेंट्रल पे लिया, तो उस समय वहां दो नाम जाते हैं और उसमें से सेंट्रल वहां से एक का सिलेक्शन होता है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और जब इसका मेल आया मुझे तो भी मुझे ये रहा कि मैं इमेजिन ही नहीं कर सके। और मैं जब इस संस्था में, मैं जैसे आपको इस ब्रह्मा कुमारीज में आई, तो मुझे हमारी दादी प्रकाशमणि जी थे, तो दादी प्रकाशमणि जी ने पहले कहा था कि जो सेवा हमें मिलती है उस सेवा को अगर हम दिल से करते हैं तो उसमें हमें 101% सफलता मिलती है। तो जब मुझे ये मेल आया कि आपका सिलेक्शन हुआ है, तो मैं मेल पढ़ रही थी और मेरे मेल के वो वर्ड्स मुझे कुछ नहीं दिखाई दिए थे और दादी प्रकाशमणि जी मुझे दिखाई दे रहे थे और वो ऐसे कह रहे थे कि देखा मैंने आपको कहा था ना, अगर हम दिल से सेवा करते हैं तो उसमें कैसे सफलता मिलती है। कि ये एकदम मनचित तो ये हमारे लिए था कि ऐसे अवार्ड मिलेगा, वो भी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के द्वारा आपको ये सम्मान मिलेगा। तो मैंने देखा कि बहुत मना एक है, और सेकेंड जैसे ये अवार्ड मिला उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ गई अवार्ड मिलने के बाद। कि मुझे
4: ये बहुत बड़ी बात है कि अवार्ड केवल सम्मान नहीं है, साथ में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाता है।
5: रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो हमें और ज्यादा लोगों की हमारे प्रति बढ़ गई, तो उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना मेरा फर्ज बनता है। तो ये ऐसे रहा।
4: ये जो आपकी बात है रूपा जी की, जो भी सेवा आपको मिलती है, चाहे कोई छोटी से छोटी सेवा मिले या बड़ी से बड़ी, ऐसे सेवा तो कोई छोटी बड़ी होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसका कनेक्शन देखा जाए कि भाई कितने समय में हो रहा है और कितने लोगों के लिए हो रहा है, उसके हिसाब से अगर हम उसको सीमित या असीमित कहते हैं, बट जो भी सेवा है उसको अगर आप दिल से कर रहे हैं तो उसमें 101% सक्सेस है ही है। ये बहुत बड़ा मंत्र है।
5: और तब से मैंने ये रखा है कि मुझे कोई भी कुछ कहता है, अब मुझे पता है कि ये काम मेरे थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हां जी करके, बड़ों ने जो हमारे लिए निमित्त आत्मा है उन्होंने जो भी मुझे सेवा दी है वो हां जी को सेवा करो, तो मैंने देखा कि अपने आप वो आप में कैपेसिटीज भी आ जाती है। जैसे शुरुआत में मुझे याद है कि हमारा जब ये हॉस्पिटल का सेटअप बना और ऑपरेशन थिएटर जब शुरू हुए हमारे, तो मुझे ऑपरेशन थिएटर का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। जब हमारे पास ऑपरेशन थिएटर्स के लिए कोई सिस्टर नहीं थी, एक्सपीरियंस सिस्टर नहीं थी, और हमारे पास जो हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रस्टीज एंड डायरेक्टर डॉक्टर अशोक मेहता जो वेल नोन कैंसर सर्जन थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर कोई ट्रेनिंग ये करता है तो मैं उनको सिखाऊंगा, और उन्होंने पूरा ऑपरेशन थिएटर की मुझे ट्रेनिंग दी। और मुझे याद है कि इतना कॉन्फिडेंस हमारे में आ गया, क्योंकि माउंट अबू ये हमारे इनका ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर होने के नाते ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ डॉक्टर्स भी आते हैं विजिटर्स के साथ, तो कई बार कई विदेश के भी डॉक्टर्स हमारे पास सर्जन्स वगैरह आकर गए हैं। तो मैंने देखा कि इतना उन्होंने हमें ट्रेन किया, तो हमें उनको भी असिस्ट करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैंने देखा कि जब बड़े हमें कुछ कहते हैं और उस बात को हम अगर स्वीकार करते हैं, तो वो आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन जस्ट आप हां जी करते हैं और उस बात को आप पॉजिटिवली लेते हैं, तो अपने आप हमारे में वो कैपेसिटी आ जाती है, वो पावर्स आ जाती है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरा रहा है, और मैं करीबन मेरे ख्याल से 12 इयर्स मैं ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज करके रही, और लास्ट 10 इयर्स से ही मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे चीफ ऑफ नर्सिंग सर्विस पर आई हूँ। तो मेरा नर्सिंग का सफर शुरू हुआ है एज अ स्टाफ नर्स, और फिर धीरे धीरे कर चीफ ऑफ नर्सिंग सर्विसेज के पोस्ट पे आई है। लेकिन फिर भी मैं कई बार मैं ये फील करती हूँ कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में जितना मजा नहीं आता है उतना उस समय जो आता था क्लिनिकल एरियाज में जो ऑपरेशन थिएटर में हम करते थे, तो वो उसका अपना आनंद था। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन का भी, क्योंकि आपको कई सारी पॉलिसीज डिसिप्लिन वगैरह कराने होते हैं उस हिसाब से, लेकिन आनंद उसमें ज्यादा आता था।
4: बाकी एक चीज मुझे इसमें ये, जैसे आपने बताया कि जैसे बड़े आपके कहते हैं उससे आपको ये 100% यकीन रखना चाहिए, क्योंकि वो अनुभव से कह रहे होते हैं, तो अनुभव जो है व्यक्ति को बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित भी करता है और सक्षम भी बनाता है। जब कोविड आया उस टाइम पे किसी को भी अनुभव नहीं था कि इस प्रकार की बीमारी को किस तरीके से डील किया जाए, क्योंकि टच करना या लोगों के विक्सिनिटी में आना, नजदीकी में रह करके वो चीज पॉसिबल ही नहीं था। और जो लोग बहुत नजदीक संपर्क में थे पेशेंट्स के, उनके लिए भी बहुत बड़ा हैजार्ड था, बहुत डेंजरस था, क्योंकि उनको भाई उन्हें भी कोविड हो सकता है। तो ये जो इस प्रकार की, क्योंकि इसके पहले की आपकी जितनी भी ट्रेनिंग रही है वो सब अलग अनुभव के साथ रही है, उसका अनुभव शेयर करने के लिए भी लोग रहे होंगे, बट कोविड का सिचुएशन एकदम फ्रेश सिचुएशन था, उसमें अनुभव भी क्या होने वाला आपको पता नहीं था। ऐसे में आप और आपकी टीम ने दिल रात एक करके बहुत सेवाएं की है, और ये क्योंकि मैं खुद माउंट आबू में हूँ और हमारे श्रोता साथी भी माउंट आबू में हैं, कोविड का दौर कोई भूल नहीं सकता, कितना ही सेवा जो है आपके और पूरी टीम ने किया है। वो टाइम कैसा था, किस तरीके से आपने खुद को प्रिपेयर किया या अपने टीम का हौसला बढ़ाया, या हाउ डिड यू मैनेज दैट टाइम?
5: कोविड जैसे आया तो मुझे याद है उस समय सबसे पहले तो सबसे ज्यादा बिजी लोग कहते थे लॉकडाउन हुआ हम घर में फ्री बैठे हैं, लेकिन हेल्थ प्रोफेशनल वर्कर्स जो थे वो सबसे ज्यादा बिजी थे। एक तो हमें सबसे पहले अपने आप को ट्रेन करना पड़ा और हमें ऑनलाइन हमने ट्रेनिंग्स ली, क्योंकि ये पीपीई किट पहनना, पीपीई किट उसकी ट्रेनिंग हमारे स्टाफ को देना, उसके बाद कैसे पेशेंट्स के साथ आना है, क्योंकि पीपीई किट पहनकर आपको काम करना है शुरुआत में बहुत मुश्किल हो रहा था। और स्टाफ को ज्यादा इन्फेक्शन न होने के कारण हम तो 12-12 घंटे स्टाफ की हमारे ड्यूटीज लगाते थे, कंटिन्यूशन पे स्टाफ ड्यूटी कर रहा था उस समय, 12 आवर्स की उनकी ड्यूटी हम लगाते थे। और लेकिन साथ में हमने देखा कि अपने आप को हमने ट्रेन किया, ऑनलाइन हमने ट्रेनिंग्स ली इन बातों के लिए, कैसे पीपीई किट पहनना है, कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, और फिर कैसे ये बायो हजार मेडिकल वेस्ट जो ये है इनका, क्योंकि ये इन्फेक्शियस ही था, तो इनका कैसे हमें हॉस्पिटल वेस्ट जो होता है उसको कैसे सेग्रीगेशन करना है, कैसे उसके लिए भी इन्फेक्शन और ज्यादा ना फैले, उसके लिए कैसे प्रिकॉशंस लेनी है, मना इसके लिए हमें खुद को भी ट्रेनिंग लेनी पड़ी, साथ साथ हमारे स्टाफ को भी हमें ट्रेन करना पड़ा, और प्रैक्टिकल में भी हम जाकर ये सारा काम करवा रहे थे। नॉट ओनली नर्सेस के लिए, इसमें हाउसकीपिंग स्टाफ का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था इसमें। तो हमने देखा कि किस प्रकार से आपको, जैसे मैंने कहा, बायोमेडिकल वेस्ट का है, पीपीई किट पहनकर कैसे काम करना है, और जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको कैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, क्योंकि ये एक नया एक्सपीरियंस था कि विदाउट रिलेटिव्स पेशेंट रह रहे हैं, विदाउट रिलेटिव्स। कई जगह पे तो हमने देखा कि रिलेटिव्स ने एक बार लाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, उसके बाद तो वो आए नहीं है। कई बार हमने वीडियो कॉल से हम रिलेटिव्स के साथ पेशेंट्स की बात कराते थे, ताकि इस प्रकार से, तो काफी हमने टाइम हमारे पेशेंट्स को भी इस समय दिया हुआ है। और मैनेजमेंट ने भी हमें जो सारी चीजें चाहिए वो सारी प्रोवाइड करते गए हैं हमारे साथ साथ। हमने ना कि हमारे स्टाफ भी कोरोना से कैसे वो प्रिवेंट हो रहे ऐसे, क्योंकि नेचुरली पेशेंट्स की केयर करते करते कई हमारा स्टाफ भी, इंक्लूडिंग मैं, हम भी कोरोना के चपेट में आए हुए थे, तो कैसे अपने आप को आइसोलेशन करा कर अभी करना है, उसकी हमने काफी ट्रेनिंग भी ली और प्रैक्टिकल भी हमें तुरंत करना पड़ा हर बात के लिए। एकदम ये अनुभव जो रहा कोरोना का, काफी एकदम ये था, माना फर्स्ट वेव्स में तो हमने पूरी ट्रेनिंग ली, लेकिन सेकेंड वेव्स में तो हमने देखा कि किस प्रकार से, और हमने ये भी देखा कि एंग्जायटी के कारण यंग जनरेशन की मोर्टैलिटी ज्यादा हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी, ये था। तो यंग जनरेशन काफी फियर के कारण हमने देखा कि डेथ की तरफ वे हो रहे थे, लेकिन काफी अच्छा
4: कोरोना से ज्यादा उसके कईयों को सताया,
5: डर के कारण ही काफी हम यंग जनरेशन जो गई है कोरोना में, हम तो देखते हैं कोविड पैंडेमिक में, वो जस्ट एंग्जायटी, इसके अलावा ये नहीं रहा है उनका। और कई बार ऐसे भी हमने ओल्ड एज वाले पेशेंट्स ऐसे थे कि वेंटिलेटर पे थे और हमें लग रहा था कि ये रहेंगे नहीं, वो एकदम वेंटिलेटर से आउट होकर अच्छे होकर डिस्चार्ज होकर घर गए हैं, वो भी हमने देखा है। लेकिन बहुत एकदम अलग एक्सपीरियंस था इन बातों का, कभी हम इस एक्सपीरियंस को भूल नहीं सकते हैं। और अभी भी कोरोना कोरोना सब जगह अभी चल रहा है, जो न्यूज आ रही है अभी कि चाइना में बहुत सारा कोरोना का ये हो रहा है, लेकिन हम लोग वैक्सीनेशन के कारण काफी सेफ थोड़ा फील कर रहे हैं, लेकिन बहुत
4: ये अनुभव आप भी नहीं भूल सकते और देश भी नहीं भूल सकता, इसलिए
5: देश भी
4: में 2022 में, जी 2022 में आपको सेवा रत्न पुरस्कार भी दिया गया कोविड के दौरान अपनी सेवाओं की वजह से, तो इसका तो पहले पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। लेकिन हमें भी बहुत निश्चिंतता होती है कि हमारे साथ ऐसे अनुभवी नर्स और उनका टीम है जो कि हमारा ख्याल रखने के लिए हमेशा अपने दिन रात को एक करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं इस चर्चा को फिनिश रैपिड राउंड में जाने के पहले आपसे एक या दो कुछ ऐसे किस्से सुनना चाहूंगा, मैं समझता हूँ मेरे श्रोताओं को भी बड़ा मजा आएगा सुनने में, जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल इंसिडेंट्स रहे हैं आपके नर्सिंग लाइफ के, मतलब अगर कोई एक या दो इंसिडेंट्स आपको ऐसे याद करने हो, एक था जो आपका फर्स्ट वाला था, बट इवन देन कोई ऐसे इंसिडेंट्स जो कि आपको खट्टे मीठे याद दे करके जाता है?
5: कई ऐसे एक्सपीरियंस है जिसमें, जैसे ऑपरेशन थिएटर का मैं बता रही हूँ कि शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि हमारे जो ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रस्टीज डॉक्टर अशोक मेहता थे, एकदम शुरुआत में जैसे पेशेंट्स ये आते थे तो बॉम्बे से पूरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम लेकर आते थे और यहाँ ऐसे ऑपरेशन हमने देखे हैं पेशेंट्स के। एक ऑपरेशन मैं नहीं भूल सकती हूँ कि पेशेंट को पूरा रोडेंट अल्सर बना, कैंसर यहाँ था और पूरा बड़ा ये था, तो हमें ऐसे कुछ ये करना था कि जिस ऑपरेशन को मैं फर्स्ट टाइम असिस्ट कर रही थी, मुझे भी इस ऑपरेशन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, ये 1995 की मैं बात कर रही हूँ। और इस ऑपरेशन में ऐसे था कि पेशेंट के वो कैंसर ट्यूमर जो था, उस ट्यूमर ने आई की भी पूरा ये सारा इन्वॉल्व था, आई के हमारी मसल्स भी जो ये होता है ना उसमें पूरा ऐसे ये था रोडेंट अल्सर में। तो क्या हुआ था, जब हम शुरुआत में ये होते हैं तो वहां लगाने के लिए हमें ऐसे था कि अंदर चिक के अंदर से जो हमारी चिक के अंदर की जो सेल्स है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन व्हाइट वाला जो अगर हम देखते हैं, उसको निकालकर वो यहाँ आंख में लगाने वाले थे, ऐसे था। तो मुझे लगा कि चलो फर्स्ट वो ही हुआ सर्जरी के दौरान। फिर ये तब तक पता था कि कोई भी चीज शरीर से हम निकालते हैं ऑपरेशन के दौरान तो उसको हमें हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जांच के लिए भेजना जरूरी होता है, इसलिए हम अलग से निकाल कर रखते हैं और उसके लिए हम अलग से एक स्पेसिफिक इसमें रखते हैं फॉर्मोलिन, हमारा जो ये आता है डिसइंफेक्ट, उसमें हम ये डालते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही सोचा कि चलो ये निकाला है तो हमें डालना है, इतनी सी वो स्किन थी, यहाँ वहां कहीं गिर ना जाए, इसलिए मैंने हमारे असिस्टेंट को कहा भाई वो फॉर्मलिन वाली बॉटल लेकर आओ, उसमें मैं डालती हूँ। और मैं जब अभी डालने वाली थी तो एक जो डॉक्टर थे माना जो ऑब्जर्व कर रहे थे, वो मुझे ऑब्जर्व उन्होंने कर रहे होंगे शायद, उन्होंने देखा अभी मैं ऐसे उस बॉटल में, क्योंकि वो हमारी नॉन टच टेक्निक होती, हम लोग स्क्रब होते हैं तो ग्लोव वगैरह पहने, गाउन होता है, तो फोर्सेप से मैं ऐसे डालने वाली थी, उतने में वो डॉक्टर साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं इसको ऐसे ही रहने दो, इसको बाद में ये कर रहा हूं। फिर मैंने जैसे कहा कि अगर कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं उस समय उनकी बात मानकर हां जी किया और उसको वैसे ही ये कर दिया। फिर बाद में वो सारा अल्सर जो ये था रोडेंट अल्सर, इतना बड़ा ट्यूमर का रूप था, उसको सारा निकाला और जब आंख में ये करने के लिए जब वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स मुझे मांगे जो अंदर इससे निकाले थे, हाँ, तो मुझे पता पड़ा कि माय गुडनेस मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी उस समय, और मुझे कैसे परमात्मा जो हम सुप्रीम सर्जन करते हैं, क्योंकि ये मेरा ये है कि सुप्रीम सर्जन ने मुझे कैसे सेव किया और वो हमारा पेशेंट कैसे सेव हुआ, तो मेरी एक छोटी सी गलती पेशेंट को कितना बड़ा हार्म ये होती थी और वो ऑपरेशन सक्सेस हमारा नहीं होता था। तो मैं हमेशा ऑपरेशन थिएटर में जब भी एंटर करती थी तो हमेशा एक सुप्रीम सर्जन से वो एक रिलेशन कि परमात्मा मेरे सुप्रीम सर्जन है और जो उनको मैं सारा बताती कि आज ये ऑपरेशन है, आज ये टीम आने वाली है, तो मैंने देखा कि जब हम परमात्मा के साथ अगर कनेक्शन अपना कराते हैं तो अगर आपकी गलती भी हो रही है तो उसको कैसे शुद्धि हो जाती, हो करेक्ट अपने आप हो जाती। तो ये मेरा एक पहला बहुत बड़ा एक ये रहा। सेकेंड एक्सपीरियंस मेरा ओली ट्रेनिंग के दौरान रहा कि जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट डे तो हमने जो साड़ी पे रैपलिंग की थी और सेकेंड डे हमारा जो रैपलिंग का ये हो रहा था तो जो माउंटेन था उसकी हाइट काफी ज्यादा थी और जो हमें बांधा गया था पूरे, तो जैसे अभी मैंने रैपलिंग करना शुरू किया तो जो ये थे हम ये तो एकदम टाइट हो गए, जो रोप्स मुझे बांधे हुए थे ये एकदम टाइट हुए जिसके कारण मैं ब्रीथ भी नहीं कर पा रही थी और मुझे लगा कि दिस इज माय लास्ट ये, और मैंने परमात्मा को अपने आप को ये कहा कि बस मैं अभी आपके इस पे आ रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। और मेरे मुंह से कैसे निकला उस समय कि उनको मैंने बताया कि सारे जन तो एकदम घबरा गए कि एकदम ये हो गई, तो मेरे मुंह से निकला कि मेरे ये बहुत टाइट है, इसको लूज करो चेस्ट के इसको जो बांधा हुआ था ट्रैपलिंग के समय, और उन्होंने जैसे लूज किया तो मैं अपने आप इतना इजिली उतर गई उस माउंटेन। तो मैंने देखा कि हर कार्य में अगर हम परमात्मा को साथ रखकर करते हैं तो हमारी हर कार्य कैसे इजी हो जाता है। बहुत डिफिकल्ट उस समय सिचुएशन लगती है, लेकिन परमात्मा हमें बहुत इजीली उस गलतियों से या इससे हमें पार कर देता है। तो ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है इस 30 साल में, लेकिन
4: रूपा जी जो दोनों अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किया ना, उन दोनों अनुभव में एक चीज तो बहुत पक्की निकल के आती है कि अगर आपने ऊपर वाले को अपना साथी बनाया है तो फिर आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है। और दूसरी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी स्पेशली वो ये कि आप निश्चिंत हो जाते हैं, फिर फिक्र नहीं होती है। और जब आप बेफिक्र होकर के कोई काम करते हैं तो उस काम की सफलता की गुंजाइश ज्यादा होती है। मैं समझता हूँ हमारे श्रोताओं ने भी आज बहुत कुछ सीखा है आपसे, और सेवा भाव, सेवा का जो आनंद है वो क्या होता है, वो तो आपके बातों से, आपके आवाज से ही हमें महसूस हो रहा है शुरू से, कि कैसे आप अपने सेवा के जीवन को बहुत दिल से पसंद भी करते हैं और लोगों को प्रेरणा भी देते हैं कि वो भी अपना जीवन ऐसा बनाए। जाते जाते हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे। आई होप यू आर रेडी फॉर इट।
5: ओके,
4: तो आपको एक शब्द में या एक वाक्य में ही इसका जवाब देना होगा, है ना? तो पहला सवाल, सेवा क्या है?
5: सेवा वो है कि जिससे दूसरों को खुशी मिले।
4: तो क्या आप कहेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने किसी को केवल रास्ता ही बताया है तो क्या वो भी सेवा कहलाएगा?
5: और भी कह सकते हैं, आगे जाकर अगर वो अच्छाई पर ये हो जाता है तो वो आपको याद करता है कि आपने मुझे ये रास्ता बताया तो आज मैं इस पर हुस्तान भी हूँ। तो जिससे खुशी मिलते है, दुख दर्द हम उनका दूर करते हैं। नर्सिंग के भाषा में तो हम यही कहेंगे कि हमारे पेशेंट अच्छे होकर जाए, जिनका दुख दर्द दूर हो जाए, जिसको हम सेवा कहते हैं। तो ऐसे नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं और खुद ही हम टेंशन में आ रहे हैं, तो उसको हम सेवा नहीं कहेंगे।
4: जिस कार्य को करते हुए खुद भी हम खुश हो रहे हैं और सामने वाले को खुशी मिल रही है, वो सेवा है। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। सेवाधारी या जो सेवा करता है उसका डेफिनेशन क्या है?
5: मतलब निस्वार्थ भावना से, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, जो कार्य आप करते हैं उसको हम सेवाधारी कहेंगे।
4: तो अपेक्षा का डेफिनेशन क्या है?
5: अपेक्षा का मना ये है कि हमने किसी के लिए कुछ किया तो हमें लगता है कि उसने भी, हमने उसके लिए कुछ किया है तो उसने भी मेरा ये करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। मैंने उसके लिए ये हेल्प दी तो मुझे जब जरूरत पड़े तो वो और ज्यादा रीति से मुझे हेल्प करे, या मुझे सामने से होकर वो हेल्प के लिए करे, ऐसे नहीं।
4: भारत क्या है?
5: भारत हमारा देश है, हम उसके नागरिक है, जहाँ इतने सारे जाति सर्व है और इकट्ठे होकर हम अनेकता में, विविधता में भारत एक है। तो और हमें बहुत प्राउड है कि हम इस देश के नागरिक हैं, भारत के। और मेरे हिसाब से इस देश में परमात्मा का अवतरण होता है। ये भारत भूमि है जहाँ ऋषियों मुनियों ने तो सजाया।

0: हुआ है। सोने की चिड़िया जिसका वर्णन किया जाता था, वसुदेव कुटुंब के लिए भारत हमारा और भारत का राजयुग सारे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे हमारा भारत है। ये भारत की डेफिनेशन एक वर्ड या एक शब्द में नहीं हो सकती है।
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और नाम ही हमारे कार्यक्रम का यशस्वी भारत, तो यशस्वी भारत का यशोगान तो एक शब्द में नहीं पूरा हो सकता। भारत का तो आपने बहुत अच्छा परिचय दिया। मुझे जानना था कि एक शब्द में अगर आप बताना हो तो एक आदर्श नर्स कौन है?
0: आदर्श नर्स हम जो दिल से अपने पेशेंट की सेवा करे, ना समय को देखे ना ही करे, और ना सिर्फ पेशेंट लेकिन पेशेंट के पूरे फैमिली को, पेशेंट एज अ होल हम जो देखते हैं उसको ये कराती हूँ।
1: सिस्टर रूपा कौन है?
0: एक तो नर्स ही, मैं सबसे पहले अपने आप को एक नर्स ही समझती हूँ, और मैं अभी भी हम यही कहते हैं कि एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि अगर मान लो इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आता है तो भी सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि पेशेंट को ट्रॉली से लेकर मैं इमरजेंसी में पहुंचाऊं। उस समय मैं ये नहीं देखूंगी कि मैं चीफ ऑफ नर्सिंग सर्विसेज है, नहीं, दिस इज माय गिफ्ट। मेरा फर्स्ट ये है कि पेशेंट को प्रॉपर फटाफट उसको ये मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इन इमरजेंसी एज अ नर्स। उस समय पोस्ट पोजिशन वगैरह कुछ नहीं आती है, एज अ नर्स हमें ये।
1: तो मैं समझता हूँ आपने जो जवाब दिया उसको समझते हुए रूपा जो है वो एक अथक सेवा धारी है, और जैसे कि आपको हम सब जानते हैं सिस्टर रूपा के नाम से, तो आप सब की सिस्टर हैं और अथक हैं, निस्वार्थ सेवाधारी हैं और देश का गौरव है भारत देश।
0: और एक बात,
1: आपके जैसे वीरांगनाओं की वजह से, आपके जैसे तपस्विनी आत्माओं की वजह से भारत बनता है। रूपा जी, आप हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, यशस्वी भारत कार्यक्रम रेडियो मधुबन की देन है, और रेडियो मधुबन को हम बार बार थैंक्स कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए इतने अच्छे अच्छे गेस्ट हर बार आते हैं इस कार्यक्रम में, जो न केवल अपने कार्य से बट अपने स्वरूप से, अपने चरित्र से देश को एक नई परिभाषा देते हैं।
0: शंतनु भाई,
1: भारत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा जी, अगर कोई एक मैसेज हो जो आप हमारे श्रोता साथियों को देना।
0: यही एक छोटा सा संदेश होगा कि कभी मेहनत से हमें डरना नहीं है, बहुत अच्छी से हमें मेहनत करनी है अपने कार्य के प्रति और बिना अपेक्षा से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें
1: ये छोटा संदेश नहीं है, ये छोटा संदेश बिल्कुल नहीं है, ये पूरे जीवन का सार है कि अपेक्षा रहित और श्रम से कभी भी परेशान नहीं होना है, मेहनत से डरना नहीं है, हमेशा सेवा पे तत्पर रहना। इट्स अ वेरी बिग मैसेज दीदी, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू, ओम शांति, नमस्ते।
1: रूपा जी तो आज हमारे बीच में हमें बहुत कुछ हमें उन्होंने अपने जीवन से सुनाया, स्पेशली वो बातें जो हम और आप कभी सोचते भी नहीं होंगे कि एक नर्स के जहन में कौन सी बातें चलती होंगी जब वो किसी की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। सेवा के लिए आगे बढ़ना, खुद को ऑफर करना, यही कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। लेकिन आज रूपा जी से बात करते हुए पता चला कि इसमें भी बड़ा मजा है, इसमें भी बड़ा आनंद है, बहुत रोमांच है। कहां बॉम्बे में अपना जीवन शुरू करने वाली एक साधारण सी भारत की महिला अपने आप को सेवा के फील्ड में जब आगे बढ़ाती है तो वो भारत की पहली महिला नर्स फॉर हाई एटीट्यूड रेस्क्यू मिशंस का हिस्सा बन जाती हैं। तो कहां राष्ट्रपति उन्हें सम्मान देते हैं, तो कहां एक राजस्थान के छोटे से गांव में कोई व्यक्ति जिसको सेवा या चिकित्सा का इतना समझ नहीं है वो उन्हें अपने लाइफ में एक सेवियर की तरह, एक देवदूत की तरह देखता है। ये सब बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं और इन इंटरेस्टिंग बातों को हमारे साथ आज शेयर कर रहे थे सिस्टर रूपा, जो कि ग्लोबल हॉस्पिटल के चीफ नर्सिंग मैनेजमेंट को देखने वाले चीफ नर्सिंग स्टाफ हैं। और रूपा जी ने हमारे साथ जिन बातों को शेयर किया उसका अगर सार समझे तो उन्होंने यही बताया कि श्रम से नहीं डरना है और अपेक्षा रहित लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहना है। इस मैसेज के बाद कुछ कहने को रहता ही नहीं दोस्तों, बस इतना ही कि आप रेडियो मधुबन 90.4 FM के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड यशस्वी भारत के लिए इंतजार में रहिए। थैंक यू सो मच। मैं आरजे शांतनु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।

0: पुडेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो। नमस्कार रेडियो श्रोतागण, आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज पर प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा। ज्ञान चिंतन
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक जैन 107.8 FM से। आज मैं ज्ञान चिंतन का एक नया विषय लेकर आया हूं, एकाग्रता। आइए हम आज एकाग्रता के बारे में समझते हैं। एकाग्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। एकाग्रता किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी होती है। यह मानसिक शक्ति का वह गुण है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और बाहरी व आंतरिक बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है, चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत विकास। हर क्षेत्र में एकाग्रता सफलता की नींव होती है। आइए अब हम समझते हैं एकाग्रता का अर्थ क्या होता है। एकाग्रता का अर्थ है मन को एक ही दिशा में केंद्रित करना और भटकाव से बचाना। जब व्यक्ति किसी कार्य को पूरे मनोयोग से करता है तो उसकी गुणवत्ता और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यह न केवल अध्ययन और कार्य क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए अब हम समझते हैं एकाग्रता का हमारे जीवन के भिन्न भिन्न पड़ावों पर क्या महत्व होता है। अध्ययन में सफलता के लिए विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता का विशेष महत्व है। जो छात्र अपने अध्ययन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं वे अधिक तेजी से और बेहतर तरीके से सीखते हैं। कार्य

0: शांति और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। एकाग्रता हमें तनाव मुक्त रखती है। आइए अब हम समझते हैं कि हमारी एकाग्रता में क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो कि बाधाएं पैदा करते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारी एकाग्रता को एडवर्सली अफेक्ट करता है वो है अत्यधिक विचार। जब व्यक्ति एक साथ बहुत अधिक चीजों के बारे में सोचता है तो उसका मन भटक जाता है। आजकल मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी इनका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, खासकर यंग जनरेशन और बुजुर्ग लोग भी जो फ्री रहते हैं। ये हमारी तकनीकी व्याकुलता बढ़ाता है जो कि एकाग्रता को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तनाव और चिंता हमारी मानसिक तनाव बढ़ाता है और नकारात्मक विचारों को भी बढ़ाता है जो कि हमारी एकाग्रता को कमजोर करता है। अनियमित दिनचर्या का भी हमारी एकाग्रता पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। समय पर भोजन न करना, नींद की कमी और व्यायाम न करने से मानसिक थकावट बढ़ती है जिससे कि हमारी एकाग्रता प्रभावित होती है। आइए अब हम समझते हैं कि हम अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ा सकते हैं। पुराने समय से, हमारे ऋषि मुनियों के समय से ही मेडिटेशन और ध्यान पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। नियमित ध्यान और योग करने से हमारा मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। हमेशा एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए, मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। इससे भी हमारी एकाग्रता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। नियमित दिनचर्या अपनाना चाहिए, समय पर भोजन करें, समय पर सोएं, पर्याप्त नींद लें, शारीरिक व्यायाम करें, इससे हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। बीच में हम छोटी छोटी विश्राम की अवधि लें जिससे कि मानसिक थकावट नहीं होती और हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हमेशा सकारात्मक सोच अपनाएं। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से दृष्टिकोण में बदलाव होता है और व्यक्ति अपने कार्य पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस चर्चा से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एकाग्रता जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुण है। यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना, ध्यान केंद्रित करना सीख ले तो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। अभ्यास, अनुशासन और सही जीवन शैली अपनाकर एकाग्रता को मजबूत किया जा सकता है जिससे जीवन अधिक सार्थक और सफल बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक के साथ चिंतन के लिए। धन्यवाद, बने रहिए पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहिए, खुशियां बांटें।
1: आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज पर। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: मेरी आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris.
2: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us. Welcome, sister.
3: Om Shanti.
2: Aapka swagat hai Being Bliss mein.
3: Thank you.
2: Sister, main ek line padhna chahunga.
3: Sir.
2: Perfect maturity is when a person hurts you.
3: Hmm.
2: And you try to understand their situation and don't hurt them back. Aur dusri hai, on love. Love me when I least deserve it.
3: Beautiful.
2: Love me when I least deserve it because that is when I really, really need it.
3: पावरफुल लाइन है एंड हम कहेंगे कि जब कोई ऐसी गलती करता है जिससे हम कहते हैं हमारा विश्वास टूट गया, जो हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था वो उन्होंने पूरा नहीं किया, जब उन्होंने कोई गलती की तब हमारा प्यार ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है क्योंकि इट गेट्स रिप्लेस्ड विथ एंगर, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, हर्ट. एंड दैट लाइन इज सो ब्यूटिफुल. लव मी When I least deserve it.
2: Actually, बच्चों पे बहुत ये आता है ना, अगर बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, रियल लाइफ में कोई बहुत बड़ा नुकसान करके बिजनेस में आ जाएं, या स्कूल में कोई झगड़ा करके आ जाएं, या कहीं कोई चीटिंग करके आ जाएं, या मतलब कोई जो आपको बर्दाश्त भी नहीं होती है, उस टाइम पे वो जब घर आता है उसको कितने प्यार की जरूरत. और हमने बोले तू ऐसा, तू वैसा, तूने हमारे खानदान का नाम खराब कर दिया, गेट आउट ऑफ दिस हाउस, वी डोंट नीड यू, वी डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद यू. मतलब मैं तो ड्रामेटाइज नहीं कर रहा हूँ,
3: तो
2: मैं 1% में नहीं बोल रहा हूँ.
3: अभी तो आप उस लाइन को आराम से बोल रहे हैं ना,
2: तो मार मार के गेट के बाहर निकाल देते, बात नहीं करते, घर वाले बाइकआउट कर देते हैं. तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये करते हुए?
3: आप
2: और ये टाइम पर
3: जरूरत किस चीज की है?
2: प्यार.
3: सो वी डूइंग एब्सोल्युटली द ऑपोजिट.
2: बच्चे गाड़ी ठोक के आ जाते हैं, एक्सीडेंट मोटरसाइकिल पे हुआ, दर्द पूछने के बाद थप्पड़ मार देते हैं पहले.
3: ट्रू.
2: हाथ से चीज टूट गई, बहुत महंगी, बच्चा अंदर से थर थर कांप रहा, एक थप्पड़.
3: तो ज्यादातर क्या हुआ कि जो एनर्जी देनी चाहिए उस टाइम उसकी ऑपोजिट एनर्जी थी. जब आप ये बात सुना रहे थे तो मुझे एक बात याद आई. कुछ समय पहले हमारे पास एक कपल आए अपनी बेटी को लेकर. वो बेटी 7th या 8th क्लास में थी उस समय. एंड दैट गर्ल, बिकॉज ऑफ यू नो, जैसे आजकल बहुत कॉमन हो गया है स्कूल्स में या वातावरण में कहें, तो दैट गर्ल वॉज इन्वॉल्व्ड विद समबडी, शी वॉज इन अ रिलेशनशिप, जैसे भी जिस लेवल पे वो है. तो एक दिन जब वो बच्ची घर आई शाम को, तो उसके चेहरे पे कुछ मार्क्स वगैरह थे थोड़े. द इमीडिएट रिएक्शन जो पेरेंट्स का था वो था शॉक, एब्सोल्यूट शॉक कि मेरी बेटी इतनी छोटी सी है 8th स्टैंडर्ड में एंड इज डूइंग समथिंग लाइक दिस. तो वो शॉक, एंगर, रिजेंटमेंट, मतलब इतना ज्यादा गुस्सा एंड मिस्ट्रस्ट, नो, विश्वास तो जैसे मतलब खत्म उस बच्चे के ऊपर. इफ यू मीट दैट गर्ल, मतलब एंजल देखना हो तो वो लड़की आपको दिखाई देगी. इतनी ब्यूटीफुल, नॉट फिजिकली बट ब्यूटीफुल पर्सन, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, प्योर पर्सनालिटी. तो जब वो मिले तो मतलब यू नो शी वाज लाइक एन एंजल. आई स्टार्टेड कॉलिंग हर एन एंजल बिकॉज शी इज सो प्योर. एंड ये बात पता चली एंड

0: पेरेंट्स ने जिस तरह के शब्द अपनी बेटी के लिए यूज किए, कांट यूज ऑल दोज वर्ड्स. एंड अब उन्होंने क्या करना शुरू किया कि जब वो घर से बाहर जाते, वो उसको कमरे में लॉक करके चले जाते, क्योंकि बोथ वर वर्किंग. तो वो लॉक करके जाने, कई दिनों तक चलता रहा. अब धीरे धीरे, पहले तो सोचा स्कूल नहीं भेजेंगे अभी थोड़ा टाइम, क्योंकि कहीं अकेले भेजेंगे ही नहीं. फिर स्कूल तो जाना पड़ा. अच्छा, स्कूल तक ये बात पहुंच गई, स्कूल में भी पता चला. स्कूल का रोल देखिए, जो हम कहते हैं ना, हम बड़े कैसा रोल प्ले कर रहे हैं जब हमें किसी की कोई गलती पता चलती है. द प्रिंसिपल टेक्स एन एक्शन कि ये बच्चा हमारे स्कूल में नहीं रह सकता है. शी इज बैड इन्फ्लुएंस ऑन अदर पीपल. एंड दिस इज वन ऑफ द टॉप स्कूल्स ऑफ दिल्ली सिटी, मतलब वन ऑफ द स्कूल्स जिसको हम कहेंगे, जहां काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मन को समझते हैं. समझते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसके पीछे कोई बात हो सकती है, उसकी हीलिंग करनी है. लेकिन इमीडिएट जो फर्स्ट रिएक्शन था कि ये बच्चा हमारे स्कूल में नहीं रह सकता है, इस बच्चे की काउंसलिंग करानी शुरू की. जब ये सारी बात हमारे पास आई सेंटर पे, जैसे वो सेवेंथ स्टैंडर्ड की बच्ची है, वी आर नॉट सेइंग कि जो हुआ वो राइट था या यू नो व्हाट, बट अब जिस तरह से हैंडल हो रही है ये पूरी चीज, और अब जिस तरह की एनर्जी आप उसको दे रहे हैं, वो अब आने वाले समय के लिए ये एनर्जी क्या डैमेज क्रिएट करने वाली है, वी कैन नॉट कॉन्सेप्चुलाइज. अभी जो डैमेज हुआ है, यस छोटा सा डैमेज या जो भी कहे, लेकिन वो डैमेज तो बहुत इजीली रेक्टिफाई हो जाएगा. वो कोई बहुत इतनी बड़ी बात नहीं हुई है. लेकिन आज आप सब मिलकर, चाहे वो पेरेंट्स है, टीचर है, काउंसलर है, आप प्रिंसिपल है, आप एक एक जो शब्द यूज कर रहे हैं उसके लिए, आप एक एक जो एनर्जी दे रहे हैं उसको, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि हमारे वर्ड्स कितने हार्श हो जाते हैं और हम क्या क्या कह देंगे बच्चे को उस समय, और आप जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, तो आप डेफिनेटली वो क्रिएट कर रहे हैं जो आप अभी बोल रहे हैं. जो आप अभी बोल रहे हैं वो सच नहीं है बिल्कुल भी. वो बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट इस बच्चे पर अभी पड़ने वाला है, वो डेफिनेटली एक बहुत डैमेजिंग फ्यूचर क्रिएट कर सकता है. अब ऐसे पेरेंट्स से जब बात की, एंड टू एक्सप्लेन टू देम कि ऐसे समय पे बच्चे को सिर्फ प्यार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, डांट नहीं चाहिए, समझानी नहीं चाहिए, रीजन एडवाइस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब पेन. एंड पहली बात तो वो बच्चा ही गिल्ट में है, गिल्ट में है, फियर में है. पेरेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लाइन दैट टाइम. कहते ऐसे कैसे, अगर अभी नहीं समझाएंगे, अभी नहीं कुछ बोलेंगे, तो पता नहीं कल ये क्या करके आएगी. अब इससे क्या हुआ, वो बच्चा अपने एक शेल में जाने लग गया. देन वी फेल्ट कि इनको रेगुलर काउंसलिंग चाहिए. तो पेरेंट और बच्चे दोनों को एक प्रोफेशनल काउंसलर के पास भेजा. काउंसलर ने पेरेंट से बात की, सब हुआ, एंड द काउंसलर कॉल्ड मी. आप मुझे फोन किया उसके बाद और कहा, नेक्स्ट सेशन के लिए सिर्फ पेरेंट्स को भेजना, बच्चे की जरूरत नहीं है. आई सेड, आई डोंट नो, डिड यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मतलब बच्चे की काउंसलिंग की जरूरत है. शी सेड, नहीं, पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, एंड वो सिंगल चाइल्ड है, एक ही बच्चा है, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, एंड दोनों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाली है बचपन से. मदर तो बच्चे को फिजिकली बहुत बीट करती है, उस लड़की को मारती है, तो उस बच्चे ने प्यार का कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा है अपने पेरेंट्स से. तो दैट चाइल्ड इज ओनली लुकिंग फॉर लव.
1: इन बातों को तो प्रिंसिपल की ड्यूटी थी ना देखना,
0: किसी ने नहीं देखा ना. और वो काउंसलर ने इतने प्यार से समझाया कि दैट चाइल्ड इज ओनली डिप्राइव्ड ऑफ लव. और इसीलिए ठीक है, वी आर नॉट सेइंग कि जो किया वो सही था, बट वो था एब्सोल्यूट इनोसेंस में कि मुझे घर पे दोनों से वो प्यार मिल ही नहीं रहा. तो जहां से भी, जिस फॉर्म में भी वो था, द चाइल्ड जस्ट ड्रिफ्टेड अवे. वो तो ऐसे प्यार से वापस आ जाएगी, कुछ भी नहीं करना है उसको, कोई काउंसलिंग नहीं चाहिए. पेरेंट्स को काउंसलिंग चाहिए. पेरेंट्स को ये बात बताए, कहते द काउंसलर इज ओनली रॉन्ग, एंड दे डिडंट गो बैक टू द काउंसलर. स्कूल चेंज कर दिया, बच्चे के ऊपर एक अलग ही, यू नो, स्ट्रिक्टनेस, एक अलग ही वो सब करना शुरू कर दिया. आज सोल्यूशन क्या है? वी दिस लाइन जो आपने पढ़ी है, लव मी व्हेन आई लीस्ट डिजर्व इट. हाउ मेनी ऑफ अस कैन डू दैट? वी से आई लव यू बेटा बेटी, फ्रेंड्स, स्पाउस, एवरीथिंग. लेकिन जैसे ही कोई गलती होती है, एवरीथिंग चेंजेस. हम क्या करेंगे कि जितनी बड़ी गलती उतना ज्यादा डांट, उतना ज्यादा घर में इट्स अ डिस्कशन, सब लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग परेशान होकर बैठे हुए हैं, सब लोग अपने दर्द का कारण उस बच्चे को या उस
1: व्यक्ति को समझाने की कोशिश कहाँ करते हैं, टारगेट बना देते हैं घर का.
0: मतलब वो अपने इंटेंशन तो समझाने की है ना. लेट्स से बच्चे को कोई आदत पड़ गई है, कोई भी तरह की एडिक्शन हो गई है, कोई ऐसे रास्ते जा रहा है जो हमें पता है कि वो सही नहीं है. लेट्स से इट्स अल्कोहल, सिगरेट, इट्स गैम्बलिंग, इट्स एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, इट्स एनीथिंग जो हमें लगे कि इवन ए सिंपल थिंग कि वो पढ़ता नहीं है ठीक से, वो पास नहीं हुआ है इस साल. इनमें से कोई भी अगर रीजन है, कोई भी रीजन जिसको हम सब ने लेबल का किया कि ये गलत है, बच्चे ने गलती बहुत बड़ी की है, बच्चा बुरा है, ये जो हम लेबल सारे लगाते हैं, हमें पहले उस समय ये समझना होगा कि बच्चा हमारे से कई गुना ज्यादा दर्द में है. अगर वो फेलियर है, कोई फेलियर एक्सपीरियंस किया है, कोई एडिक्शन की तरफ है, कोई बड़ी गलती हो गई है, वो बहुत गुना ज्यादा दर्द में है. हमें ये नहीं समझ में आता कि जिसने गलती की है वो दर्द में भी हो सकता है. हमें लगता है उसकी गलती की वजह से हम दर्द में हैं. यू नो, सपोज स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल पेरेंट्स को बुला दे और कहे कि आपके बच्चे ने ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे किया, तो पेरेंट्स हर्ट भी हो जाते हैं, वरिड भी हो जाते हैं, चिंता भी है बच्चे के लिए. अब वो वरी और एंग्जाइटी पेन है, दर्द है. तो हमें लगता है बच्चे ने गलती की, हम दर्द में हैं. ये इक्वेशन बनती है.
1: लेकिन जब दीदी ये लगता है ना कि बच्चा भी दर्द में है, तो हम अपने आप को कहते अच्छा है, उसको दर्द में रहने दो, उसको जितनी दर्द होगी उतना सीखेगा,
0: पर दर्द
1: तो दोबारा करेगा फिर.
0: पर दर्द कौन सा दर्द है उस समय बच्चे को, ये अंडरस्टैंड करना. गिल्ट एक है,
1: गलती करके आया है,
0: गिल्ट है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका स्वमान तो कम होगा ना सबके सामने,
1: लो सेल्फ एस्टीम भी हो जाती,
0: लो सेल्फ एस्टीम हो गई, फियर है कि अब जो मेरे आसपास के बड़े हैं वो क्या कहेंगे. अरे हर एक के लिए, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, किसी से भी कहीं भी कोई भी एज में कुछ भी ऐसा हो जाए या कोई आदत हो या कोई बात हो जिसको हम गलत कहते हैं, और जिसकी गलती की वजह से बाकी जो हमारे आसपास हैं उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है. सी, गलती मींस जो बाकी सब उसके प्रति अपनी एनर्जी चेंज कर लेते हैं. जब ये एनर्जी सबकी चेंज होती है, मतलब दर्द, इवन इफ इसे चिंता है, वरी है, बट वो दर्द है. जब सारे आसपास दर्द में चले जाते हैं, वो अपने दर्द में इतना हो जाते हैं कि उनको ये नहीं रियलाइज होता कि जिस जो टारगेट है जिसको हम कह रहे हैं वो गलत है. हमें लगता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, उसने तो गलती की, उसकी वजह से हम दर्द में हैं. वो कई गुना ज्यादा दर्द में है, ये अंडरस्टैंडिंग. हमें लगता है कि वो है ही गलत, वो मस्ती कर रहा है, वो गलत है, इसलिए वो ये सब कर रहा है, हम दर्द में है. जो टारगेट है हम सब की रिएक्शंस का, वो उस रिएक्शन से पहले ही दर्द में था. सपोज हमें आज पता चले कि किसी को कोई आदत लग गई है, कोई भी तरह की नशे की, एडिक्शन की, हमें तो आज पता चला. सपोज आज पता चलने से हर्ट हुए पेरेंट्स, चिंता हो गई भविष्य की, हेल्थ की, स्टडीज की, बहुत कुछ हुआ, हमें हर्ट आज हुआ है. वो बच्चा पहले से ही हर्ट में है, इसलिए वो इस एडिक्शन की तरफ गया है.
1: विवेक ने मुझे एक बार बताया कि हमारे एक नेबर का बच्चा मिला उसको दिल्ली में, तो बहुत बोले तुमको क्या हो गया दोस्ती में, आपकी हालत ऐसी क्यों है, तो भाई मुझे भूत ने पकड़ लिया, छोड़ता नहीं है. और वो भूत मेरे सर पे बैठा रहता है, मुझसे चोरियां भी करवाता है, क्या क्या करवाता है, मैं कितना दर्द में हूँ. वो खुश नहीं है एडिक्शन में, उसको वो कहता है वो भूत ने पकड़ लिया मुझे और मैं परेशान हूँ, दिन रात छोड़ता नहीं है और ये सारे गलत काम मुझसे करवाता है,
0: अब
1: और मैं मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ.
0: राइट, लेकिन अब वो क्यों दर्द में है, क्योंकि वो एडिक्शन के वश है. लेकिन उससे पहले की स्टेज, वो एडिक्शन की तरफ गया क्यों, क्योंकि वो किसी और दर्द में था, इसलिए एडिक्शन की तरफ गया. एनी सोल, दिस इज 100%, एनी सोल हु इज कॉन्फिडेंट कंटेंटेड कैन नॉट गो टूवर्ड्स एनी सब्सटेंस अब्यूज. ये पॉसिबल नहीं है. अभी इसको नहीं, वी हैव टू थिंक अबाउट इट. हमें खुशी चाहिए, हमें स्टेटस चाहिए, हमें आसपास के लोगों की एक्सेप्टेंस चाहिए, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो समाज है. हमें वो थ्रिल चाहिए, हमें अपने मन की चिंताओं से
1: कुछ
0: दूर
1: चाहिए, ये मैं मान सकता हूँ.
0: यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? अंदर कोई खालीपन है.
1: हाँ, और क्या चाहिए नहीं मालूम,
0: पर चाहिए तो ना. अंदर
1: तो
0: कोई खालीपन है.
1: हाँ.
0: या तो, या फिर कोई बहुत दर्द है जिसको मुझे सप्रेस करना है, या फिर पीयर प्रेशर है कि अकॉर्डिंग टू मी यू नो ये सब चीजें लेना, सबके साथ बैठकर ये ले पाना मुझे रिस्पेक्ट और रिकग्निशन और अप्रिसिएशन देता है लोगों से. ये सेल्फ एस्टीम की कमी है ना. जिसके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी होगी, वो ही इन चीजों को अपना स्टेटस सिंबल बनाएगा, वो ही इन चीजों को लोगों से अप्रिसिएशन और वर्थ लेने का सब्जेक्ट बनाएगा. उसके अलावा तो नहीं बना सकता.
1: जिन लोगों के साथ मैं रात को बैठता था क्लब्स वगैरह में, वो धीरे धीरे धीरे करते करते कहने लगे, या तो रात को नहीं आते तो फिर दिन में मिलके फायदा ही क्या है, तुमसे मिलने का मन ही नहीं करता, शाम को तुम घर भाग जाते हो. करते करते अब आज ये हालत हो गई कि वो दिन में भी मिलने से मुझे खुश नहीं है. क्यों, प्रॉब्लम क्या आपकी, मैं अगर आपके साथ दिन में हूँ और रात को नहीं हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? उनका आंसर नहीं उनके पास, बोलता नहीं यार तुम बस क्या समझते अपने आप को.
0: अब आप इस एज में है ना,
1: मैं आज की बात कर रहा हूँ,
0: आप इस एज में है, तो इस एज में डिसीशन लेना इज इजियर, क्योंकि हम कहते हैं नहीं, मेरी हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है, एंड आई डोंट वांट टू टेक दिस, इट्स ओके अगर मेरे से नहीं कोई बात कर रहे हैं उस वजह से. लेकिन जब एक 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का बच्चा होता है, उसके लिए अभी वो फ्रेंड सर्कल, वो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है. उस समय वो ही उसकी सेल्फ एस्टीम की चीज है. जैसे कई लोग कहते हैं कि फिर हम पार्टी में जाएंगे अगर हम नहीं लेंगे,
1: अगली बार वो नहीं बुलाएगा,
0: नहीं बुलाएंगे. अच्छा, नहीं बुलाएंगे भी नहीं, छोड़ो, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सेल्फ एस्टीम की कमी है. इट्स 100% जो आत्मा के अंदर.
1: वैसे तो सिस्टर फिर सबको कमी है.
0: हाँ, तो सबको कमी है. दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट. सबको कमी है, सेल्फ एस्टीम की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या कोई पेन है. यू नो, किसी की चाइल्डहुड में फैमिली एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, वो प्यार नहीं है, कोई ना कोई कमी है, तब हम किसी चीज की तरफ जाते हैं. तो जैसे आपने कहा कि उनके दोस्त ने कहा कि अब ये भूत मुझे तंग कर रहा है, वो एक दर्द, लेकिन उसकी तरफ गए क्यों? पहले एक दर्द. वी आर ट्राइंग टू सी कि उस व्यक्ति कितने दर्द में है. पहले कोई दर्द है, तब एडिक्शन की तरफ गए. अब एडिक्शन हो गया, उसका दर्द, तो सेकंड चीज. अब थर्ड, जो आसपास के फैमिली और फ्रेंड्स से रिएक्शन मिलेगा, जो इतनी सारी एंगर या जो भी हर्ट मिलेगा, उसका दर्द. ये तीन पेन्स, तीन डिफरेंट रीजंस फॉर पेन, ये दर्द में है, हम उसकी हीलिंग कैसे करेंगे?
1: बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े टेक्नीशियंस, उनके बच्चे देखते हैं बचपन से कि पिताजी को ये लत लग गई शराब की, पहले दोपहर को भी पी के सोने लगे, फिर बाद में सुबह 7 बजे ही शुरू हो गया, फिर काम पर ही जाने लगे पी के, तो उन देखते हुए भी इनका बुरा हाल है. तो मैं सोचता था कि ये लोग देखेंगे पिताजी का ये हाल, तो ये टच भी नहीं करेंगे. मैंने ये भी देखा टच भी नहीं करेंगे, और ये भी देखा कि वो भी शुरू हो गए.
0: तो वो आत्मा की अपनी विल पावर और अपने संस्कार पे डिपेंड करेगा.
1: देखते हुए भी खड्डे में,
0: तो जो आत्मा स्ट्रांग है, सपोज मैं देखू आपको ऐसे चलते हुए आप खड्डे में गिर रहे हैं, तो मुझे खड्डे में नहीं गिरना है ना, बट फॉर दैट आई हैव टू बी एक्यूरेट. लेकिन मैं भी कमजोर हूँ, मुझसे नहीं जंप हुआ उसके ऊपर, तो मैं भी गिरूंगी, इवन इफ आई सी यू फॉलिंग इन टू इट. एंड सिर्फ एडिक्शन की बात नहीं है, किसी ने झूठ बोला, किसी ने धोखा दिया, किसी ने चोरी कर दी छोटी, किसी ने कोई रिलेशनशिप में है वो गलती कर दी, गलतियां जरूर एडिक्शन नहीं है जिसकी वजह से
1: लॉस है,
0: बिजनेस में लॉस है,
1: कितने लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, मैंने शेयर मार्केट में गलत पैसा लगा दिया,
0: फैमिली से, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जिसकी गलती हुई, फैमिली से क्या रिएक्शन मिलता है उस टाइम,
1: ज्यादा सजा मिलती है उससे ज्यादा।
0: सपोज किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, कोई और भी उसने लोन लिया था, तो वो सारे लोग आ गए पैसा लेने के लिए घर पे, अब ये जो फैमिली है ये इसका रोल क्या है उस हेड ऑफ द फैमिली के प्रति, गुस्सा, हर्ट, तुम्हारी वजह से हमारी भी इंसल्ट हो गई, हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं, हम कैसे फेस करेंगे समाज को, हमने ये किया था, हम क्या कर रहे हैं, एडिंग पेन टू देयर पेन।
1: अमेरिका में आई नो सिस्टर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जैसे नौकरी से उन्हें निकाला गया कोई गलती से, या जो भी बॉस ने बोला आज के बाद गेट आउट, वो घर से औरत घर छोड़ के चले जाती है, सॉरी यू लूज योर जॉब, लूज मी,
0: इट हैपेंस।
1: ऊपर उस वक्त उसको जरूरत है दर्द में,
0: दैट्स व्हाई दैट लाइन, लव मी व्हेन आई लीस्ट डिजर्व इट बिकॉज आई नीड इट द मोस्ट दैट टाइम।
1: ये बड़ी सुंदर लाइन है, आई नीड इट द
0: मोस्ट दैट टाइम, क्यों, क्योंकि मैं बहुत बहुत बहुत दर्द में हूँ उस समय, प्लीज लव मी द मोस्ट दैट टाइम। और ये कोई भी गलती, एक छोटा बच्चा झूठ ही बोल दे, उस समय गिल्ट में है, फियर में है, झूठ बोला ही क्यों, झूठ बोला क्योंकि डर था ना सच बोलने से, नहीं तो क्यों झूठ बोलेगा कोई। इतने सारे दर्द को प्यार से हील करने की बजाय हम और दर्द देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं याद रहता या ये अवेयरनेस नहीं है कि वो दर्द में है।
1: एक लड़का आया था नौकरी के लिए मेरे पास, बहुत परेशान, दिखता तो अच्छे घर का था, मैंने बोला तुम्हारे कपड़े खराब, ये क्या, कहाँ रहते हो तुम, कहाँ पहले नौकरी किया, तो बोले मैंने कहीं नहीं किया, मैं फलानी फलानी जगह रहता था, मेरी भाभी से मैंने सब्जी मांगी तो उसने बोला अभी नहीं मिलेगी, ये है एंड ऑल दैट, तो मुझे गुस्सा है, मैंने प्लेट मुंह पे फेंक दी उनकी और घर छोड़ के भाग गया, नहीं तो बहुत मार पड़ती। घर में उसकी जो पिटाई होती या उसके बाद उसका जो हशर होता, वो डर से वो बॉम्बे भाग के आया था।
0: आपको मालूम है जो बच्चे स्कूल में फेल होने के बाद सुसाइड करते हैं या सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या सुसाइड का थॉट आता है, देयर इज अ कंप्लीट स्टडी ऑन दैट, कि सिर्फ स्कूल में या एग्जाम में फेल होने से, अभी तो जीवन में बहुत कुछ करना है, तो स्कूल में फेल होने से सुसाइड करने का मन क्यों करता है या सुसाइड कर क्यों देते हैं, अटेम्प्ट क्यों करते हैं। द फाइनल रिसर्च सेज इट्स नॉट बिकॉज दे फेल्ड, इट इज बिकॉज दे कैन नॉट फेस देयर पेरेंट्स आफ्टर द फेलियर, एंड दिस इज वेरी वेरी डीप। मैं एग्जाम में फेल हुआ वो ठीक है, मैं नेक्स्ट ईयर पास हो जाऊंगा,
1: फ्रेंड्स है, सोसाइटी है, पीयर प्रेशर है,
0: इट इज बिकॉज मैं उन
1: कॉलेज जाने वाले हैं, मैं स्कूल में ही रहूंगी,
0: मैं उन पेरेंट्स को फेस नहीं कर सकता जिन्होंने पूरा साल मुझे ये मैसेज कन्वे किया था कि मेरे पास होने पर उनकी खुशी डिपेंडेंट है, और अब वो मेरे फेल होने से इतने दर्द में चले जाएंगे कि मैं उस सीन का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए कई बच्चे सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए कई बच्चे घर भी छोड़ देते हैं भाग के, जैसे आपने कहा भाग के चल, व्हाई इज ऑल दिस हैपनिंग, क्योंकि जब कुछ गलती हुई जो एनर्जी मिलती है वो है एडिंग पेन टू पेन, एंड दिस अगर हमें ये समझ में आ जाए तो दोनों का फायदा होगा। एक, जब किसी ने गलती की, प्लीज वी हैव टू रिमेम्बर वो दर्द में है, वो गलत नहीं है, ये हम लेबल कौन सा लगा देंगे, गलत, बुरा, खराब, बेसमझ, ये लेबल लगा के ये तो रियलिटी भूली जाती है कि वो दर्द में है, फियर में है, गिल्ट में है, अंदर
1: तो
0: कोई रिसेंटमेंट
1: नहीं है, बोलते हुए सुना मैंने,
0: कैसे संस्कार है,
1: आज के बाद मेरा तेरा रिश्ता नहीं,
0: yes, वो दर्द में है। और अब अगर हम इतना दर्द क्रिएट करेंगे तो हम भी दर्द में जाएंगे एंड हमारे दर्द से उसका दर्द कई गुना बढ़ जाएगा। इस समय हीलिंग मीन्स वो जितनी बड़ी गलती उसके लिए कई गुना ज्यादा एक्सेप्टेंस और कई गुना ज्यादा प्यार। वो प्यार पहले मुझे हील रखेगा क्योंकि हम चिंता में, दर्द में, गुस्से में नहीं जाएंगे, और वो प्यार उनके वुंड को, जो चोट है उसको हील करेगा, और उसको हील करने से वो उसको उस गलती से भी बाहर निकालेगा, सिर्फ अभी की चीज को नहीं ठीक करेगा, एड्रेस द रूट ऑफ द प्रॉब्लम।
1: बट सिस्टर आप देखिए ना, कहीं भी आप बैठिए, लोगों की बातचीत आप देखो, ऐसे लोगों को तो दो मारना चाहिए, इसको इसको तो उल्टा लटका देना चाहिए, इसको तो सड़क के ऊपर लटका के शूट कर देना चाहिए। बेसिक थॉट ही यही है, इसको मारो, इसको तोड़ो, इसको उल्टा लटका दो, पनिश हिम। एवरीबॉडी वांट्स टू जस्ट ऐड पेन टू द पेन। तो फिर आपकी बात कहां तक सही है, कहां तक गलत है?
0: जो हम देखते हैं कि वर्तमान समय कुछ जेल्स में, प्रिजंस में ये हो रहा है कि जिनको मतलब जेल में रखा जा रहा है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ अ पास्ट, उनको जो वहां का वातावरण दिया जाता है और उनको जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनकी हीलिंग की जाती है ताकि जब वो यहाँ से निकल के बाहर जाएंगे, दे डोंट गो बैक एज क्रिमिनल्स बट दे गो बैक एज रिफॉर्म्ड सिटीजंस ऑफ सोसाइटी
1: एंड रिफॉर्मर्स।
0: यस एब्सोल्युटली,
1: जाके लोगों को भी शिक्षा दे सकते हैं।
0: उसके लिए एक देश में ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह किया गया एक जेल में, कि जितने स्टाफ थे, यू नो, जेल के जो स्टाफ थे, उन्हें ये एक प्रोजेक्ट की तरह दिया गया कि जो उस जेल के इनमेट्स हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनको गेस्ट की तरह ट्रीट कीजिए, पूरी कॉन्शियसनेस अपनी शिफ्ट कीजिए कि वो इस स्थान पर मेहमान है।
1: चोर हमारे मेहमान।
0: मेहमान किस लिए? ताकि आपका प्यार और आपका रिस्पेक्ट उनके लिए, क्योंकि वो चोर है, वो मर्डरर है, वो क्रिमिनल है, तो एनर्जी कौन सी जाएगी? हेट्रेड, एंगर, नफरत, एंड कितना उनको नीचा देखा जाएगा। एंड इट डज मैजिक। इंडिया में है, तिहार जेल में एक्सपेरिमेंट है, उनको स्पिरिचुअल सेशंस कराए जाते हैं, उनको पढ़ने का मौका दिया जाता है, उनको अपना करियर बनाने का मौका दिया जाता है। बट ऑल दिस इज डन नॉट ओनली आउटसाइड बट विद द एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट। अगर एक गलती करके जो आया है उसको ये वाइब्रेशन मिले, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, तो उसका क्राइम यहाँ से कभी खत्म नहीं होने वाला है। इनफैक्ट जब वो पनिशमेंट, जो हम कहते हैं पनिशमेंट तो चेंज करने के लिए होनी चाहिए ना, लेकिन अगर वो एक साल या 14 साल उस वातावरण में रहे कि ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, उसके बाद जब वो बाहर जाए वहां से, तो वो पहले से भी ज्यादा दर्द में जाएगा। और यही अगर उसको उतना समय रिस्पेक्ट, प्यार, और बाहर जाने के बाद अगर समाज से, अपने परिवार से रिस्पेक्ट और प्यार मिले, रिफॉर्म्ड। फोकस रिफॉर्मेशन होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं। पनिशमेंट एंगर से हो सकती है, डांटने से हो सकती है, रिफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन प्यार से हो सकता है।
1: चलिए सिस्टर, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं।
0: उसके लिए एक ही चीज करनी है, जितनी बड़ी गलती, मतलब चाहे कोई भी गलती, उतना ज्यादा कई गुना हमें प्यार और अंडरस्टैंडिंग। जो हम नॉर्मल की डेफिनेशंस हैं अपनी, डांटना तो होता ही था, डांटना तो पड़ेगा, गुस्सा तो आएगा ही, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स मेकिंग द सिचुएशन टफर देन बिफोर।
1: देखते हैं सिस्टर, अगले एपिसोड में फिर से इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो आपने, जैसे आपने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन प्यार से होना चाहिए, तो मैं अपने ऊपर भी थोड़ा प्यार से ट्रांसफॉर्म करने की खुद को, स्वयं को कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। नमस्कार। थैंक यू।
2: When someone has made a mistake, they are in pain. We feel they have done wrong and we are in pain because of their mistake. Truth is, they are in more pain than anyone else. The one who has made a mistake creates guilt, low self-confidence, low self-esteem, fear of rejection and insecurity of future. If we create anger, hurt and hatred, then we are increasing their pain many folds. They need love and acceptance to heal their pain. A person goes towards any substance addiction because either they are deprived of love, or crisis in life, or low self-esteem and seeking public approval for feeling good. Help them to heal the pain in order to give up the addiction. The intention should be reformation, not punishment. Anger gives punishment, depletes the energy of the one who has made a mistake. Love empowers them and brings about reformation.
3: तुम्हाला माहित आहे का, केंद्र सरकारने लहान उद्योजकांसाठी 40 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे तारण मुक्त मुद्रा कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. ही रक्कम कुवेत सारख्या देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या जवळपास 3 पट इतकी आहे.
4: करोडो छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला. उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर.
3: 12 वर्षे विश्वासाची, विकासाची, जन कल्याणाची.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुणे की आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ऐकलत का?
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुनेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांटो।
3: खाबों का सफर आरजे सनी के साथ।

0: का सफर। जी हाँ, मैं हूँ आपका हम सफर सनी। आइए आगे बढ़ते हैं आज के इस सफर में और बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आपको जी अक्षर से सुनाने वाले, यानी गा, और 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज आप तक पहुंचाएंगे और बहुत ही खूबसूरत गाने आपको सुनाने वाले हैं। आइए, हमारे साथ विशेष किरण जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और खास उनके पास जो है बहुत सारे ग यानी जी अक्षर वाले गाने हैं जिससे हम बहुत सारे खूबसूरत गाने सुनेंगे। तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं?
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। तो आइए, आज मेरे पिटारे में जी के अल्फाबेट में कौन से हसीन गाने हैं? क्या पता आप उनमें से कोई गाना या सारे गाने गुनगुनाने लगे, या फिर हो सकता है गाने भी लगे। आज का मेरा पहला गाना है गा मेरे मन गा। हमारा मन उदास हो या खुश हो या फिर दुखी हो, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर हम मन के साथ मन की तरह करने लगे तो बहुत सी बातें वैसे होने लगती हैं, या हमारे व्यवहार से हमारे आसपास के लोगों का व्यवहार भी वैसा होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है, चाहे दुखी हो या उदास हो, हमेशा खुश रहना चाहिए और गाते रहना चाहिए, अपने मन को खुश रखना चाहिए। ये गाना भी शायद इसीलिए बनाया गया है कि गा मेरे मन गा। तो आइए सुनते हैं। गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा।
0: ओके, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा जिस गीत की तरफ आपने इशारा किया है, मजरू सुल्तानपुरी का, और आशा भोसले जी ने इसे गाया था। सचिन देव बर्मन ने इसे संगीत से संवारा था। 1958 का लाजवंती फिल्म से है। तो आइए इस गीत का आनंद उठाते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। कहते हैं दोस्ती हर चेहरे की मीठी मुस्कान होती है, दोस्ती ही सुख दुख की पहचान होती है। रूठ भी गए हम तो दिल पर मत लेना, क्योंकि दोस्ती जरा सी नादान होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब के इस गीत की तरफ आपका इशारा है।
2: क्या बात है, क्या हंसी गाना है, गैरों पे कर्म अपनों पे सितम। एक बात तो सच है कि प्यार किया या दिल दिया तो हमेशा प्यार ही हो, ये भी नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत एक दूसरे को तड़फाना या सताना ये नहीं हो प्यार में तो वो भी थोड़ा अधूरा सा लगने लगता है। दोस्तों, प्यार में तड़फाना या सताना, नोकझोंक होना, लड़ाई करना, वो भी बहुत अच्छी बात है, पर प्यार को किसी वजह से गलत समझ लेना ये ठीक नहीं। कभी कभी हमारी आंखें धोखा भी दे देती हैं, तब ये भी कह देते हैं।

0: कर। तो दोस्तों, अपनों पे इतना जुल्म ना करें, उसे समझने की कोशिश करें।
1: ओके बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और प्यार में कभी कभी हम एक दूसरे पर शक करने लगते हैं तो इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन प्यार में समर्पण बहुत जरूरी है। जब समर्पण है तो प्यार भी कायम रहता है। तो आइए, बहुत ही प्यारा सा गीत जो है आपने याद कराया है, साहिर लुधियानवी साहब का लिखा हुआ, लता मंगेशकर का गाया हुआ, रवि साहब का संगीत है, फिल्म आंखें 1968 का इस एल्बम से ये गाना हम लोग सुनेंगे। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: रेडियो पूनी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। आइए, बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं। एक और गीत हम लोग अभी सुनेंगे, तो कौन से गीत की तरफ आपका अब इशारा है?
1: दोस्तों, मेरे पिटारे में ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। बहुत पुराना है लेकिन जब भी सुने नया ही लगेगा। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे। गंगा मित्रों, ये नाम ऐसा है कि नाम माँ का है। गंगा माँ भी बोलते हैं। ये माँ जैसी बोलो या माँ बोलो, एक ही बात है। चाहे धूप हो या छाँव, दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, बारिश हो या हवा, वो शीतल ही रहती है। और ये आई कहाँ से और कहाँ को जाएगी, किसने इसे बनाया, कोई नहीं जानता। गंगा के ऊपर चंद लाइनें बोलना चाहती हूँ। दास्तां मेरे लाड प्यार की बस, दास्तां मेरे लाड प्यार की बस, एक हस्ती के इर्द गिर्द घूमती है। प्यार जन्नत से इसीलिए है मुझे, प्यार जन्नत से इसीलिए है मुझे, क्योंकि ये मेरी माँ के कदम चूमती है, क्योंकि ये मेरी माँ के कदम चूमती है। तो आइए सुनते हैं। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे।
0: बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है, गंगा मैया की बात करके। जी हाँ, गंगा तो बहती जाएगी, खुद में सबको समाएगी, करते हैं पाप जो दिन रात, उनके लिए भी मुक्ति लाएगी। गंगा तो बहती जाएगी, गंगा तो बहती जाएगी। आइए, बहुत ही खूबसूरत गाना अभी हम लोग सुनेंगे, गंगा पर गा मेरे मन। इसे लिखा था गुलजार साहब ने और हेमंत कुमार साहब ने इसे गाया था, सलील चौधरी ने संगीत से संवारा था। ये फिल्म काबुली वाला 1961 का है जिसमें ये गाना है। तो आइए इस खूबसूरत नगमे को, इस गीत को सुनते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खबर का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दिल में अरमान बहुत है, जिंदगी में गम बहुत है, कब की मार डालती ये दुनिया हमें, कम वक्त दोस्तों की दुआओं में दम बहुत है।
1: मेरा कोई अपना नहीं यहाँ तुम्हारे सिवा, किसकी बातों से दिल को खुश करें, तुमको हरगिज भुला तो नहीं सकते, तुमको भूले भी तो याद किसको करे। जी हाँ, जिंदगी में कोई एक अपना खास होता है, उसके बिना जिंदगी में जीना अच्छा नहीं लगता, कुछ अजीब सा लगता है, खाली खाली सा लगता है। कैसे जिए हम अपने हम सफर के बिना, अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करें। हर राह पे सोचते हैं कि मेरा कोई साथी हो, और जब साथी मिल जाए तो सपने और सजने लगते हैं, और उनको पूरा करने की चाहत भी होती है, उसके बिना जिंदगी में जीना अच्छा नहीं लगता। गाना बहुत खूबसूरत है। अगर तुम भुला ना दोगे सपने, तभी ही सच होंगे।
0: बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है, गर तुम भुला ना दोगे। हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, शंकर जयकिशन का संगीत, और ये फिल्म 1969 में आई थी जिसका नाम था यकीन। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत नगमे को। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। कहते हैं, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं तकदीर का लिखा देखूं। बस दोस्तों की मुस्कुराहट देखकर समझ जाता हूँ कि मेरी तकदीर बुलंद है। आइए आगे बढ़ते हैं ख्वाबों का सफर में। एक और गाना, खूबसूरत सा गाना आपके लिए। जी, कौन सा है अभी?
2: अगला गाना कुछ ऐसा ही है।

0: राहों में कौन अकेला चलना चाहता है यारों। और दिल भी यही कहता है कि तू ही जिंदगी है, तू ही आरजू, तू ही सांसें हैं, तू ही मंजिल। बता तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, किसी और का दस्तूर करूं कैसे। तू ही बंदगी है, तू ही मेरा खुदा, इसीलिए हम सफर एक दूसरे के साथ जिंदगी की मंजिल में साथ चलते हैं, और तभी मंजिल भी पूरी होती है। तभी ये गीत गाया है कि गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल।
1: क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। और ऐसे खूबसूरत गाने जब सुनते हैं तो दिल की खुशी और बढ़ जाती है। भले ही अपने जिगरी दोस्त कम है, पर जितने भी हैं परम अनुबम है। आप सुने हैं रेडियो पूरी आवाज। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए जो गीत आपने अभी सुना, इस गीत को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और लता किशोर जी ने गाया है। मस्ती भरा गीत है, सचिन देव बर्मन का बहुत ही खूबसूरत संगीत, और 1965 का पॉपुलर फिल्म देवानंद और वैदा रहमान पर पिक्चराइज किया गया ये फिल्म है गाइड। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर 50s एंड 60s की ओल्ड मेलोडीज आप सुनते जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक गाना आप तक पहुंचा रहे हैं।
2: दोस्तों, अगला गाना है गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के। मित्रों, भ्रम अच्छा होता है लेकिन कभी कभी, लेकिन ज्यादा हो जाए वो हर सपनों को चूर चूर कर देता है। और प्यार में भ्रम होना बिल्कुल अच्छा नहीं। इसी पे कुछ चंद लाइनें बोलना चाहती हूँ। सफर ये जिंदगी का तू अकेला ही मुसाफिर है, बेगाने हैं ये सब जो अपनापन जताते हैं। छोड़ जाएंगे ये तेरा साथ एक दिन राहों में, वो जो आज खुद को तेरा हम सफर बताते हैं। तो आइए सुनते हैं इस गाने को।

बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। कहते हैं आपकी दोस्ती को एहसान मानते हैं, इसे निभाना अपना ईमान मानते हैं, लेकिन हम वो नहीं जो दोस्त में अपनी जान दे देंगे, क्योंकि दोस्तों को ही तो हम अपनी जान मानते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज जी। शकील बदायूं साहब का लिखा हुआ ये गीत है, मुकेश जी का गाया हुआ, नौशाद साहब का संगीत से सवारा हुआ ये गाना। फिल्म था 1948 का मेला। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत है। तो आइए इस गीत का आनंद उठाते हैं। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM खाबो का सफर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब किस गीत की तरफ आपका इशारा है जो जी अक्षर से शुरू होता है?
1: दोस्तों, अब जो मेरा गाना है वो है गीत तेरे सांस का तेरी ही आवाज हूँ। जो हम सफर होते हैं वो एक डोर से बंधे होते हैं, उनका उम्र भर का साथ होता है, वो जीते जी कभी भी जुदा नहीं होते, एक दूसरे के गम को खुशियों को बांटते चलते जाते हैं, कभी भी तन्हा नहीं समझते अपने आप को, एक दूसरे के जीवन के पंछी और परवाज होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तू मेरा साथी बन जा, मैं तेरी हमराज हूँ। कहते हैं

0: ज़ूम।
1: चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा हुआ यह गीत, लता मंगेशकर का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, इंतकाम फिल्म 1969 में जो रिलीज हुई थी। बहुत ही प्यारा सा गीत है ये। आइए इस गीत का आनंद उठाते हैं। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आप सुन रहे हैं, तो चलिए आपके इस गीत की तरफ आपका इशारा है।
2: मित्र, शाम का नजारा बेहद ही बेमिसाल होता है। एक नदी के किनारे एक लड़की बैठी होती है और वहाँ पेड़ के ऊपर एक पपीहा भी बैठा होता है। वो लड़की उस पपीहे से बोलती है, देख मेरा सांवरिया आने वाला है, मैं उससे सारी उम्र के बदले मांगी थी ये शाम, मुझे कुछ ना मिले, सिर्फ मेरे सांवरिया का साथ मिले और उसका प्यार। वो उस पपीहे को बोलती है, तू चुपचाप रहना और मैं भी चुपचाप हूँ, मेरे दिल की बातों को मेरे सांवरिया अपने आप ही समझ लेंगे, बस तू देखता जाना धीरे धीरे, वो समझते हैं या नहीं। पपीहा बोलता है, ठीक है, पर तुम्हारा दिल इतना घड़ी घड़ी क्यों धड़क रहा है। तब वो गाना गाती है,

ओके ओके, ये बड़ा ही मस्ती भरा गीत है और आपने जिस गाने को याद कराया, ये मधुमती फिल्म का है 1958 का। उस समय ये गाना हर समय जो है रेडियो पे बजता रहता था और लोग इस गाने को सुनना भी बहुत पसंद करते थे। शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ ये गीत है, लता मंगेशकर का ये गाया हुआ है, सलील चौधरी साहब का ही संगीत है और बहुत ही प्यारा सा गीत है। तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने अभी सुना और आशा करता हूँ आप सभी को भी बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा। और आइए, क्यों अच्छा न लगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं ओल्ड मेलोडीज। ऐसा भी कहा जाता है, ओल्ड इज गोल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और मंजिल पाने की हसरत नहीं, किसी की याद में मर जाने की फितरत नहीं। आप जैसे दोस्त जब से मिले, किसी और को दोस्त बनाने की जरूरत नहीं।
1: दोस्तों, आज मेरे पिटारे का आखिरी गाना है गुमसुम ये जहां है। किताब मेरी, पन्ने मेरे और सोच भी मेरी, फिर मैंने जो लिखे वो ख्याल क्यों तेरा? ना कोई वादा, ना कोई यकीन, ना कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतजार करना ही है। गाना है गुमसुम ये जहां है। गुमसुम ये जहां है।
0: ओके, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। ये बीके पुरी साहब ने इसे लिखा था, जगजीत सिंह साहब ने इसे गाया है। ये गजल है शायद मुंतजर इस एल्बम से, ये खास गीत है जिसको हम लोग अभी सुनेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है ख्वाबों का सफर, और मैं कहूँगा कि इस सफर में आप हमारे हम सफर यूं ही बने रहें, ऐसी कामना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और जाते जाते चंद लाइन एक आपके नाम। अजनबी रिश्तों का नाम है दोस्ती, हर गम की दवा है दोस्ती। दोस्त बिछड़ जाए तो रोता है दिल, मगर दोस्ती टूट जाए तो रोती है जिंदगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। सलाम, नमस्ते, खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। जी हाँ, जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं। और हर हफ्ते शनिवार के दिन आप ये कार्यक्रम सुनते हैं जिसमें आपको अलग ट्रेड के बारे में हम लोग बात करते हैं। आजकल हमने पिछले कुछ समय से आपको जो है नए ट्रेड्स के बारे में बात करने की कोशिश की है, जिसमें अलग अलग ट्रेड जैसे कि मशीन लर्निंग के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बातें की थी। अब उससे आगे हम लोग बात करेंगे एक ऐसे यूनिक जो है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के बारे में। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर ये भी एक बहुत ही बड़ा जो है करियर का विकल्प है और इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। और ये डिजिटल दुनिया के अंदर तेज़ी से डिजिटल होते समय में हर कंपनी, स्टार्टअप या सरकारी संस्था हो या ऑनलाइन माध्यम का उपयोग कर रही है, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर, वेब पोर्टल और स्मार्ट डिवाइस, इन सभी को उपयोग करने के लिए अनुकूल जो चीज़ें हैं यूज़र फ्रेंडली बनाने में जिस बात की भूमिका होती है, सबसे अधिक आवश्यक होती है, वो होता है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की। साथियों, आप नाम सुन के थोड़ा चौंक तो गए होंगे, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यूआई यूएक्स डिज़ाइन की। आज के समय का सबसे लोकप्रिय क्रिएटिव और हाई डिमांड करियर है। ये सिर्फ एक डिज़ाइन का काम नहीं है, बल्कि उपयोगकर्ता की मनोविज्ञान, व्यवहार, रुचियों और आवश्यकताओं को समझकर बेहतर डिजिटल अनुभव एक्सपीरियंस तैयार करने की कला है। तो डिजिटल एक्सपीरियंस करने के लिए जो काम करते हैं उसको कहते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। तो आइए यूएक्स यूआई डिज़ाइनर क्या है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। यूआई का मतलब है वो दृश्य, विजुअल इंटरफेस जो उपयोगकर्ता देखता है, जैसे बटन है, रंग है, फॉन्ट है, लेआउट है, आइकॉन है, मेनू है, नेविगेशन है, आदि यूआई डिज़ाइनर का मुख्य काम है। स्क्रीन का सुंदर व प्रभावी डिज़ाइन ही लोगों को आकर्षित करता है। ब्रांड के अनुसार रंग और स्टाइल, उपयोगकर्ता को आकर्षित करने वाला इंटरफेस जिसको यूआई कहते हैं। दूसरी बात इसमें, जैसे कि यूएक्स बोला था मैंने, यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पर आता है। यूएक्स का अर्थ है उपयोगकर्ता का अनुभव। इसका काम है ये सुनिश्चित करना कि किस वेबसाइट या ऐप को इस्तेमाल करते समय यूजर को कोई परेशानी ना हो, इसके काम में शामिल है यूजर रिसर्च, यूजर की जरूरतों को समझना, वायर फ्रेम और प्रोटोटाइप बनाना, यूजर टेस्टिंग, आसान और सामूद नेविगेशन डिजाइन करना। यूआई जहां सुंदरता, ब्यूटी की बात करता है, वहीं यूएक्स प्रक्रिया, प्रोसेस और अनुभव की बात करता है। दोनों मिलकर एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं, इसीलिए यूआई यूएक्स डिजाइनर की बात हम लोग आज कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो माधवन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और एक नए करियर के बारे में सुन रहे हैं। शायद आप सभी को इसके बारे में अभी ही जानकारी मिल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना होगा, लेकिन जो आईटी सेक्टर में है या इस फील्ड में काम करते हैं उनके लिए ये शायद पुराना शब्द हो गया होगा। यूआई यूएक्स डिजाइनर का काम क्या होता है, आइए इस बारे में अभी बात करते हैं। एक युवा यूएक्स डिजाइनर के दायित्व बहुत ही अलग अलग होते हैं। देखने में बिल्कुल ये बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन इसका काम बहुत विस्तार से है। जैसे कि यूजर के व्यवहार का अध्ययन करना, माना जो भी मोबाइल का या एप्लीकेशन को या वेबसाइट को यूज करता है तो उसका व्यवहार, माना वो क्या क्या कर रहा है, उसका अध्ययन करना, डिजाइन समस्या की पहचान करना, लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम बनाना, प्रोटोटाइप तैयार करना, वेब और मोबाइल दोनों के लिए लेआउट डिज़ाइन करना, डेवलपर के साथ मिलकर काम करना, यूजर से टेस्ट कराना और सुधार करना, डिज़ाइन सिस्टम और स्टाइल गाइड बनना, ये एक रचनात्मक क्रिएटिव वर्क है और विश्लेषणात्मक एनालिटिक दोनों कौशल का मिश्रण है। अब देखेंगे कि यूआई यूएक्स डिजाइनर बनने के लिए जरूरी कौशल है, स्किल रिक्वायर्ड जो है, एक डिजाइन थिंकिंग, समस्या को समझकर समाधान केंद्रित डिजाइन बनाना। दूसरा है क्रिएटिव और विजुअल सेंस, रंग फॉन्ट लेआउट टाइपोग्राफी की अच्छी समझ होना, प्रोटोटाइपिंग टूल्स का ज्ञान जैसे कि फिग्मा, एडोब एक्सडी, स्केच, इनविजन, कैनवा, बेसिक डिजाइनिंग। चौथा है यूजर रिसर्च, लोग किस तरह ऐप का उपयोग करते हैं, क्या मुश्किलें हैं, क्या सुधार चाहिए। पांचवी बात आती है HTML, CSS, JavaScript, बेसिक, डेवलपर से बातचीत और डिजाइन की समझ बढ़ाने में मदद मिलती है। और छठवां आता है कम्युनिकेशन स्किल, क्लाइंट या टीम को अपने डिजाइन की रीजनिंग समझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिज़ाइन के माध्यम से जटिल समस्याओं को सरल बनाना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये है खास जो एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर को समझना। तो ये अगर स्किल्स आपके पास हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए एक बहुत बड़ा करियर का रास्ता खुला हुआ है। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनने का रास्ता, पहला है स्टेप वन जिसको कहते हैं, डिज़ाइन फाउंडेशन सीखे, रंग सिद्धांत को समझे, टाइपोग्राफी को समझे, ग्रीड और लेआउट को समझे, दृश्य संतुलन विजुअल बैलेंस रखने का तरीका आ जाए। सेकेंड स्टेप में आता है कोर्स करें आप इससे रिलेटेड, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है जिसके बारे में हमने पिछले बार भी बताया था, वही क्यूरोसिया, कोर्सिया, गूगल यूएक्स सर्टिफिकेट, यूडेमी, इंटरेक्शन डिज़ाइन फाउंडेशन, ये सारे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जो डिज़ाइनिंग कोर्स को सिखाते हैं। तीसरा स्टेप आता है टूल्स सीखे, क्योंकि फिग्मा और एडोब एक्सडी मुख्य है। चौथा है स्टेप फोर, पोर्टफोलियो बनाए, 3 से 5 अच्छे केस स्टडी, मोबाइल ऐप और वेब डिज़ाइनिंग, रीडिज़ाइनिंग, यूज़र रिसर्च के स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में रखिए। स्टेप 5 इंटर्नशिप या फ्रीलांस काम, छोटे प्रोजेक्ट ले और अनुभव बढ़ाए और काम करना शुरू कर दें। तो इससे क्या होगा, आपका अनुभव बढ़ेगा और आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से काम करते हैं, किस तरह के काम या किस जगह पे आप बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप काम नहीं शुरू करेंगे, आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो आपको खुद को नहीं पता होगा कि आप किस जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर एक जगह भी आप अच्छा काम कर रहे हैं तो दूसरा जगह आप सपोर्ट ले सकते हैं जो अच्छा करने वाले हैं, तो एक टीम वर्क के साथ ये पूरा काम बढ़िया बन जाता है। तो हमेशा अपनी टीम को बना के रखिए, टीम से आपको काफ़ी हेल्प मिलता है, लेकिन आपको काम पहले करना होगा, है ना। कई लोग डायरेक्टली काम करते हैं, वो मैनेजर का काम करते हैं, अपने काम को समझ नहीं पाते तो बाद में मुश्किल आती है। तो इसीलिए A to Z आपके पास जानकारी हो, ये कैसे किया जाता, ये कैसे होता है, तो चीज़ें आसान हो जाए।
अब यूआई यूएक्स डिजाइनर की जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो यूआई डिजाइनर, यूएक्स डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर, इंटरेक्शन डिजाइनर, विजुअल डिजाइनर, यूजर रिसर्च, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, यूएक्स राइटर, तो ये जॉब प्रोफाइल में आता है। तो जब आप इन चीजों को ले लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर चीजें आपके लिए, आपका रास्ता और अच्छी तरह से आप उड़ान भर सकते हैं इस करियर में। तो चलिए आप थोड़ी देर में बात करते हैं स्टार्टअप कौन कौन से हैं, कितनी सैलरी मिलेगी और कैसे आप अपने करियर को चुन सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। बात कर रहे हैं हम लोग UI UX डिजाइनर के बारे में। चलिए बात करते हैं करियर स्कोप किन किन जगह पे आपके लिए मिल सकता है, कहाँ कहाँ आप अच्छा कर सकते हैं, कौन सी कंपनी आपके लिए वेट कर रही है। तो आज हर कंपनी को UI UX डिजाइनर की आवश्यकता तो है ही है। सबसे पहला आता है IT कंपनियां, दूसरा आता है मोबाइल ऐप बनाने वाली कंपनियां, ई कॉमर्स वाली कंपनियां, स्टार्टअप नए जो हो रहे हैं, मार्केटिंग एजेंसी, गेम डेवलपमेंट, सास कंपनियां और सरकारी डिजिटल भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। भारत में UI UX डिजाइनर की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये सारे जो अलग अलग मैंने स्टार्टअप्स बताए हैं, कंपनियाँ बताई हैं और विभाग बताएं जहां पर आपका डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं कितनी सैलरी मिलेगी, है ना। भारत में औसत सैलरी 25,000 से 50,000 रुपये हर महीने की फ्रेशर के लिए है। तो यहां से आपकी शुरुआत होती है और 1-2-3 साल का अनुभव होने के बाद ये सीधा दुगना हो जाता है, 50,000 से 90,000 रुपये हर महीने आपको मिल सकते हैं। फिर अगर आप सीनियर UI UX डिजाइनर बन जाते हैं तो भैया आपको 1 लाख से 2 लाख हर महीना आपको पेमेंट मिल सकता है। प्रोडक्ट डिजाइनर की बात करें तो फिर वो अलग पैसे कमाते हैं और एक पूरे पैकेज में आता है, तो 1 साल का 2 साल का। तो साल का पैकेजिंग, ईयरली पैकेजिंग होता है जो 15 लाख से 25 लाख तक होता है। और आप फ्रीलांसर है तो फिर आप जो है ज़्यादा कमा सकते हैं, है ना। हर प्रोजेक्ट के लिए आपको जैसा प्रोजेक्ट होगा वैसे आप उसको फ्रीलांसर के रूप में पूरा प्रोजेक्ट आप लेके उनको फाइनल करके डिज़ाइन बना के दे देना होता है। तो इसमें 50,000 से लेकर 2 या 20 लाख तक का प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसा भी। अब ये तो कोई लिमिटेशन नहीं है इसके ऊपर, जितना आपका स्तर है, आपका टीम कितना बड़ा है, आप कितना अच्छी तरह से काम फ्रीलांसर बन के करके दे सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए बढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं करियर के बारे में। तो UI UX डिजाइनर में करियर क्यों चुने, आप अगर सोच रहे होंगे कि इसमें ही क्यों जाए, तो क्योंकि भैया अब ये लगातार बढ़ता हुआ क्षेत्र है। दूसरा, शानदार क्रिएटिव फील्ड है, वर्क फ्रॉम होम के अवसर इसमें ज़्यादा है, हाई पैकेज है, फ्रीलांस और ग्लोबल जॉब्स यहाँ पर मिलते हैं, टेक प्लस क्रिएटिविटी का मिश्रण है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्रिएटिविटी का मिश्रण बहुत सुंदर है, समाज के लिए उपयोगी डिजिटल प्रोडक्ट बनाना ये समाज के लिए भी आपका एक सहायक दायित्व बनता है, तो इसमें समाज सेवा भी जुड़ा हुआ है। ये करियर उन लोगों के लिए है जिन्हें डिज़ाइन कला, क्रिएटिव सोच और तकनीक इन सब का संयोजन पसंद हो, है ना। तो इसीलिए भी आपके लिए ये करियर बहुत ज़रूरी है और फ्यूचर स्कोप बहुत है, जैसे कि AI, AR, VR, स्मार्ट डिवाइस और मेटावर्क्स के आने से UI UX डिज़ाइन की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। आने वाले वर्षों में एक्सपीरियंस डिज़ाइन XD, वॉइस UX, मोशन डिज़ाइन और AI असिस्टेंट डिज़ाइन की भी मांग बढ़ेगी। तो ऐसे में डिज़ाइनर बनना आज के समय का सबसे बड़ा स्मार्ट और रचनात्मक करियर विकल्प है, जिसमें डिज़ाइन नहीं बल्कि लोगों के जीवन को डिजिटल रूप से आसान बनाने की कला भी है। यदि आप क्रिएटिव हैं तो लोगों के व्यवहार को समझना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं तो UI UX आपके लिए एक बेहतरीन और उभरता हुआ करियर है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद फिर बातें करेंगे। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हम बात कर रहे थे खास युवा यूएक्स डिजाइनर के बारे में। कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस करियर में किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जोनाथ आइव, ये जो है एक व्यक्ति है जोनाथ, इनके बारे में बात करते हैं। एप्पल के जादुई डिजाइनर कहते हैं इनको। जोनाथ आइव दुनिया के सबसे प्रसिद्ध यूआई यूएक्स और प्रोडक्ट डिजाइनर में से एक है। एप्पल के लगभग सभी बड़े प्रोजेक्ट, आईफोन हो, आईपैड हो, आईमैक हो और एप्पल वॉच हो, इन सभी का डिजाइन इनके द्वारा ही बनाया गया। जोनाथ छोटे थे तब उन्हें चीजों को खोलकर समझने की आदत थी। अक्सर रेडियो, पेन, खिलौने खोल देते और फिर उन्हें बेहतर तरीके से जोड़कर एक नई चीज बना देते। उनके पिता वुड वर्किंग और डिजाइनर सिखाते थे, इसलिए बचपन से ही डिजाइन की समझ उनके अंदर बहुत ज्यादा थी। करियर का मोड तब आया, उन्होंने डिजाइन में पढ़ाई की और कई सालों तक छोटे मोटे प्रोजेक्ट करते रहे, लेकिन असली सफलता तब मिली जब वे एप्पल कंपनी से जुड़े। उस समय एप्पल मुश्किल दौर से गुजर रहा था, लेकिन स्टीव जॉब ने जॉन एलन की प्रतिभा को पहचान लिया था और फिर उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया। डिजाइन फिलोसफी, जोनाथ हमेशा कहते थे सबसे अच्छा डिजाइन वही है जो देखने में जितना सुंदर हो, इस्तेमाल में उतना आसान भी हो। अब बात करते हैं उपलब्धियां इनकी, तो उन्होंने आईफोन का यूआई इतना सरल बनाया कि कोई भी बिना सीखे इस्तेमाल कर सके। एप्पल के स्मूथ, सिंपल और क्लीन इंटरफेस को विश्व भर में पसंद किया गया। उनकी वजह से यूआई यूएक्स दुनिया में मिनिमलिज्म सबसे बड़ी डिजाइन ट्रेंड बन गया है। सी जोनाथन आइव की कहानी बताती है कि रचनात्मकता और सरलता सबसे बड़ी ताकत है। उपयोगकर्ता की जरूरत को समझकर ही महान डिजाइन पैदा होते हैं। तो ये थी कहानी जोनाथन आइव की, एप्पल में जो यूआई यूएक्स डिजाइनर है। अब बात करते हैं एक और शख्सियत की, जूली जो। जूली जो दुनिया की सबसे सफल यूएक्स लीडर में से एक है। वो फेसबुक, अब मेटा में 25 साल की उम्र में प्रोडक्ट डिजाइनर मैनेजर बनी और फेसबुक के यूआई यूएक्स को दुनिया का सबसे इस्तेमाल होने वाला इंटरफेस बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब जूली एक साधारण परिवार से जन्मी थी। उन्हें बचपन में ड्राइंग और लिखने का शौक था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डिजाइन में करियर बनेगा। कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ते समय उन्हें पता चला कि यूआई यूएक्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रचनात्मकता का और टेक्निक दोनों का मेल है। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे उसको अच्छी तरह से सीखा। फेसबुक उस समय एक छोटी सी कंपनी थी। इंटरव्यू में जूली ने यूआई यूएक्स के बारे में गहरी समझ दिखाई और उन्हें नौकरी मिल गई। शुरू शुरू में उन्हें बहुत कुछ सीखना पड़ा और कई गलतियां भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। गलतियां करते हुए सीखते गए और आगे बढ़ते गए। सबसे बड़ा योगदान तब आया जूली ने फेसबुक के न्यूज फीड और प्रोफाइल पेज के यूआई यूएक्स को नया रूप दिया। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था ऐसा डिजाइन बनाना जिसे दुनिया का हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। उनके नेतृत्व में फेसबुक का इंटरफेस सरल, तेज और यूजर फ्रेंडली बन गया। लेखन और अनुभव साझा जो है उनको अच्छा लगता था। जूली ने अपने अनुभवों पर एक मशहूर किताब लिखी और द मेकिंग ऑफ ए मैनेजर, जिसे दुनिया के यूएक्स डिजाइनर आज भी गाइड की तरह पढ़ते हैं। तो बात आती है कि जब आप किसी एक चीज में महारत हासिल करते हैं तो उसी महारत को आप बुक में कंपाइल करते हैं, तो लोग जो आपकी तरह वो डिजाइन सीखना चाहते हैं उनके लिए उनका किताब एक मास्टर गाइड बन जाता है। और मेकिंग ऑफ ए मैनेजर ये उनका मास्टर गाइड यूएक्स डिजाइनरों के लिए है। जूली की कहानी हमें ये बताती है कि चाहे पृष्ठभूमि कैसी भी हो, लगन और सीखने की इच्छा आपको बहुत आगे ले सकती है, ले जाती है। यूआई यूएक्स में सफल होने के लिए उपयोगकर्ता के अनुभव को समझना सबसे जरूरी है। साथियों, इन दोनों कहानियां बताने का मतलब यही था कि यूआई यूएक्स डिजाइन सिर्फ तकनीक नहीं, एक कला, शोध और मनुष्य को समझने की क्षमता है। जोनाथन आइव और दुनिया के सबसे सुंदर इंटरफेस बनाए, जबकि जूली जोहा ने अरबों लोगों के लिए फेसबुक का अनुभव आसान बनाया। दोनों ने साबित किया कि इस क्षेत्र में रचनात्मक सोच, उपयोगकर्ता की समय, मेहनत बहुत मिलाकर एक असाधारण सफलता को हासिल करती है। तो साथियों, ये थी कुछ खास बातें दो विशेष व्यक्तियों की कहानी यूएक्स यूआई डिजाइनर की आपके लिए, ताकि आप इस फील्ड में कहाँ पहुंच सकते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। इन्हीं शुभारशाओं के साथ छोटा नहीं बड़ा सोचिए और मेहनत ज्यादा कीजिए, ताकि आप सफलता उसको सफलता आपको मिल सके और आपकी सफलता दुनिया के जितने भी यूजर हैं उन सबकी सफलता हो सके। इन्हीं शुभारशाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नए करियर को लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे?

0: किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: कैट माने बिल्ली, आरएटी रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
3: Hey, made in man, man माने पागल, दिलो बाय बॉय, बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुम तो हो तो क्या हुआ?
2: एटी एटी कैट, कैट माने बिल्ली, आरएटी रैट, रैट माने चूहा।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे, अरे लेकिन, लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात, एक बात, लेकिन एक बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है, या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मी मोनाली स्वागत. तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशिया वाट.
1: अरे राजू भाई, दो चाय लाना. अरे छोटू, दो चाय देना भैया को.
2: हाँ साहब, ये लो भैया.
1: ये क्या, तूने मेरे शर्ट पे चाय गिरा दी?
2: गलती होगी भैया, माफ कर दो. अगली बार से ऐसा नहीं होगा भैया.
1: क्या छोटू, तू हर टाइम ऐसा करते रहता है. तो कितने बार समझाएगा सही से चाय दिया कर.
2: नहीं साहब, वो इस बार हाथ फिसल गया साहब.
1: हर टाइम हाथ फिसल जाता है.
2: नहीं साहब.
1: ठीक है, अगली बार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना?
2: हाँ साहब.
3: क्या यार, मेरी जिंदगी भी कैसी है. काश मेरे भी पापा पैसे वाले होते. मैं भी और बच्चों की तरह स्कूल जाता, पढ़ाई करता, मैं भी खेलता. काश ऐसा होता.
4: क्या बात है सैंडी, आकाश, पंकज, भुवना, आज तुम लोग बड़े उदास लग रहे हो.
5: दीदी, आपको पता है, आज हमने एक टी शॉप में देखा कि एक बच्चा काम कर रहा है.
4: एक बच्चे को काम करते देखा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा ना?
1: हाँ, और वो दुकान वाले भैया उसे डांट भी रहे थे.
4: क्या देखा आज आपने? चलो भुवना बताओ.
5: दीदी, हमें बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था और उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन वो काम कर रहा है. और वो काम कर रहा है लेकिन बाय मिस्टेक वो फिसल गया उनके हाथ से. फिर भी वो ओनर इतना डांटा, बहुत बुरा लग गया होगा.
4: आप ही के उम्र के बच्चे जो काम करते हैं कोई चाय की दुकान पर या कहीं भी, उसे पता है क्या कहते हैं?
6: चाइल्ड लेबर,
1: बाल श्रम.
4: हाँ, उसे बाल श्रम या चाइल्ड लेबर कहते हैं. बच्चों की जो उम्र पढ़ने लिखने की होती है, कई बार पारिवारिक सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो काम करने पर विवश हो जाते हैं. तो बच्चों, चलो आज हम चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के बारे में ही बात करेंगे.
5: ठीक है
1: दीदी.
4: तो आकाश, आप बताओ, चाइल्ड लेबर से आप क्या समझते हो?
2: दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे उन बच्चों के मम्मी डैडी को ये सब काम नहीं करवाना चाहिए. ये उम्र उनकी खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है. हाथ में आने वाले पेन की जगह वो चाय की कटोरियाँ पकड़ा देते हैं, पीठ में लदे हुए बैग की जगह वो बोरियां पकड़ा देते. ये बहुत गलत बात है.
4: बात तो आपने बहुत सही कही. और सैंडी, आप बताओ.
1: दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि चाइल्ड लेबर एक जुर्म है, और जो लोग 14 वर्ष से कम उम्र में बच्चों को अपने दुकान पर रखते हैं या करवाते हैं, अगर चाइल्ड लेबर हमारे भारत में, विश्व में कहीं भी फैलता गया तो हमारे देश का, हमारे विश्व का क्या होगा? बच्चों को शिक्षा मिलेगी नहीं तो हमारा देश, हमारा विश्व हर चीज में पीछे हो जाएगा. तो ये चाइल्ड लेबर होना नहीं चाहिए,
4: क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं.
1: हाँ जी,
4: और अगर वो ही नहीं पढ़े लिखेंगे तो फिर हमारे भारत का भविष्य क्या होगा?
1: ये हमारी नीवी कमजोर होगी तो फिर कैसे होगा?
4: बिल्कुल सही सैंडी. और भुवना.

0: आप क्या कहना चाहते हो?
1: अब हमारी इंडिया सब देशों ने डेवलप्ड कंट्रीज है, लेकिन हमारी इंडिया डेवलपिंग, स्टिल डेवलपिंग। इस बात का एक वन रीजन है चाइल्ड लेबर। ऐसा बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं इंडिया में, बहुत सारे अननेसेसरी ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, और इस चाइल्ड लेबर को हम स्टॉप करना चाहिए। एक क्राइम है, ये सिर्फ इंडिया में फॉलो कर रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ कि इसको स्टॉप करना चाहिए और गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ वाइटल स्टेप्स लेना चाहिए।
0: बिल्कुल सही, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए और गवर्नमेंट कुछ काम इस पर कर भी रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हो पंकज?
2: चाइल्ड लेबर को देख के मुझे ऐसा लगता है हमारा देश कभी विकास नहीं कर सकता। आजकल छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे जो हमारे देश के भविष्य है, लेकिन वो किसी कारण होटलों में या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ने लिखने की उम्र में अपनी पीठ पे बोरियां लाद रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश का भविष्य मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे कि दूसरे देश अपने डेवलप्ड होकर और भविष्य में हम देखेंगे कि वो अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी और हमारा देश धरती पे ही रह जाएगा।
0: बात तो आपने पंकज बिल्कुल सही कही, हम आगे तभी बढ़ते हैं जब देश का भविष्य यानी बच्चे सुरक्षित हो, देश के साथ साथ उनका भविष्य भी हम बाल श्रम द्वारा बिगाड़ देते हैं। बच्चों मुझे एक बात बताओ, तुम लोग अक्सर बाहर जाते हो, कभी घूमने के लिए, कभी किसी काम से, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी बच्चे को बाल श्रम करते हुए या कोई काम करते हुए देखा है? और देखा है तो तुम्हें कैसा लगा है?
3: हाँ दीदी, मैंने बहुत बार देखा। कभी कभी हम लोग कहीं बाहर जाते घूमने के लिए, किसी होटल पे गए तो वहाँ कोई बच्चा कोई चाय लेके आ रहा है तो कुछ नाश्ता लेके आ रहा है, ऐसे कुछ काम करते हैं, और ये मुझे देख के बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मुझसे भी छोटे होते हैं, जिनको खेलने कूदने की उम्र होती है, जिनको अपनी मम्मी पापा से प्यार मिलना चाहिए, वो होटलों पे काम करते हैं, और ये मुझे देखकर बहुत बुरा लगता है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा नहीं हुआ, मेरे मम्मी पापा मुझे साथ देते हैं, और ये बात देखकर मुझे रोना भी आता है, थोड़ी खुशी भी होती है, पर खुशी तो उतनी नहीं होती, रोना बहुत आता है क्योंकि जो बच्चे इनके छोटे छोटे हाथ हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं।
0: बात तो आपने सही कही, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बहुत बड़े बड़े काम करने पर विवश हो जाते हैं, लेकिन उनके घर के जो पारिवारिक कंडीशंस हैं वो इस प्रकार की नहीं होती जैसी हमें मिली है। और जैसा कि आपने कहा कि इस मामले में हम कितने लकी हैं कि हमारे परिवार से ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि हमें सब कुछ मिला और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, पर सभी हमारी तरह लकी नहीं होते। हाँ आकाश बताओ।
4: दीदी मैं जब छोटा था तब मेरा एक दोस्त था, उसका नाम पोखराज है, वो बचपन में मेरे साथ खेलता था, वो सेंट जॉन स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, पहले तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया, उसके बाद उसको गवर्नमेंट स्कूल से निकाल दिया, फिर वो अब वो 14 साल का है और हमारे पड़ोस की दुकान में ही वो काम कर रहा है। उसको देख के बहुत बुरा लगता है। उसकी मम्मी सुबह से लेकर शाम तक लम्हा लारी पे सब्जी बेचती है और उसके पापा उन्हीं पैसों से ना घर चलने देते, सिर्फ अपने ही खुशियों के लिए पैसे खरीदते हैं।
3: हाँ दीदी, जैसे आकाश ने बताया, ऐसे ही मेरे पड़ोस में कुछ बच्चे रहते हैं, उनकी मम्मी तो चलो ठीक है पर उनके पापा शायद नशा वशा करते हैं, और बच्चे टैलेंट बहुत है उनमें, उनकी कैचे बच्चा है, अगर कुछ ही समझाए तो जल्दी समझ जाते, वो पढ़ना चाहते पर पापा उनके काम करने के लिए फोर्स करते, तो वो कचड़े बीनते हैं और ये सब करते हैं, और वो स्कूल तो जाना जाते हैं, पर मैं ऐसा देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है, तो मैं कभी कभी मेरी कोई पुरानी बुक्स, मेरी जो चीज़ होती है और कुछ दे देता हूँ उनको, तो वो थोड़ा वो अच्छा लगता है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है सैंडी, क्योंकि अगर हम अपना छोटा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए तो उन बच्चों को कितना अच्छा महसूस होता है।
3: हाँ दी,
0: है ना। बुबना, कभी आपने ऐसा कुछ देखा है?
1: दीदी हमारी घर में रोज एवरी संडे या सैटरडे जीएचएमसी लोग आते हैं डस्टबिन लेने के लिए, तो जब वो आते हैं उनके साथ उनके बच्चे भी, वो ड्राइनेज में बैठते हैं, वही रहते हैं, लेकिन वो खुशी से करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको ज्ञान भी नहीं है। तो मैं बोलती हूँ कि उन लोगों को ये सब हमें कुछ मैसेज देना, कि नॉलेज देना कि ये कर सकते हैं, और उनको ये एज नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास की होगी वो बच्ची, और उनको काम करवा रहे डस्टबिन को लिए।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, भले उन्हें अभी खुशी

0: है, वो खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें उनके लिए पढ़ना लिखना कितना जरूरी है, और कई बार ये बात बतानी उन्हें बहुत जरूरी होती है। पंकज, कभी आपने ऐसा कुछ देखा?
1: हाँ दीदी, मैंने भी देखा है। हमारे स्कूल के पीछे छोटे छोटे बच्चों को पीठ पे बोरियां लाद कर और प्लास्टिक की बोतलें बीनते हुए या कांच की बोतलें बीनते हुए, मतलब वो प्लास्टिक की बोरियों में भंगार इकट्ठे करते हैं और उसे बेच के दो चार पैसे कमाते हैं। लेकिन वो पैसे जो कमाते हैं वो उनके भी यूज में नहीं आते, उनके मम्मी पापा उनसे पैसे ले लेते हैं और अपने शौक पूरे करते हैं।
0: उनके मम्मी पापा उनसे वो पैसे भी ले लेते हैं जो वो मेहनत करके कमाते हैं।
1: हाँ दीदी,
0: बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मेरे ख्याल से हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसी चीजें होते हुए देखी हैं,
2: हाँ दीदी,
0: और हमें बहुत बुरा भी लगता है। हम बच्चे और क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर बच्चों की दुनिया सुनते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 90.4 FM पर हम वापस आ गए हैं लेकर बच्चों की दुनिया। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में, जिस विषय के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो है बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर। सैंडी, आप आज सुबह क्रिकेट खेलने गए तो आपने क्या देखा?
1: दीदी, मैंने देखा कि दो बच्चे थे जो बहुत छोटे थे और मैं बैट और बॉल लेके जा रहा था तो बोल रहा था भैया मुझे कुछ रुपये दे दो, मुझे भूख लगी है। तो उन्हें देखकर मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगा और मैंने, मेरे जेब में जूते भी थे, 20-30 रुपए उन्हें दे दिया।
0: हमें बुरा तो लगता है जब कोई ऐसे, स्पेशली जब कोई बच्चा आके हमसे ऐसा कुछ कहता है। तो ऐसे में एक और चीज हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कि अगर किसी को भूख लगी है या कोई ऐसा हमारे सामने आता है और हम कुछ कर सकते हैं तो कुछ खरीद कर या कुछ ला कर उसको दे दें। क्योंकि कभी कभी हमारे दिए हुए पैसे वो ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे या फिर कोई उनसे ले भी सकता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने आए तो आप कुछ लाकर, जिससे उनकी जो भूख है वो शांत हो सके, ऐसा कुछ लाकर आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है सैंडी?
1: ओके दीदी।
0: और वैसे तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते रहते हैं। अब आप लोग ये बताओ, जब आप लोग देखते हो आपको बुरा तो लगता है, क्या कोई ऐसी चीज है जो आप अपनी तरफ से उनके लिए कर सकते हो? भुवना,
2: पहले हम उनके माँ बाप को इंस्पायर करना चाहिए, क्योंकि बिना माँ बाप के कहने से बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तो हम उन माँ बाप को इंस्पायर करना कि आपके बच्चा ये कर सकता है, तो वो बच्चे को ऑलरेडी इंटरेस्ट होगा क्योंकि वो बच्चा है ना। जब हम इंस्पायर करेंगे, बुक्स देंगे, वो अच्छे से पढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उनके माँ बाप की फोर्स की वजह से वो ऐसे कर रहे हैं। तो जब हम उनके इंटरेस्ट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, माँ बाप काम करेंगे और पढ़ेंगे, फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
0: बात तो आपकी बिल्कुल सही है। स्पेशली जो हमारे आसपास के लोग काम करने आते हैं हमारे घर पे, या जैसे भुवना आपने बताया कि कूड़ा बीनने या फिर ऐसा कुछ है जिनके माँ बाप हमारे घर पे काम करते हैं, आसपास आते हैं, तो उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, है ना? और आकाश, आप क्या सोचते हो?
3: दीदी, मेरा ये मानना है कि उनके मम्मी पापा को हमें बताना तो चाहिए, लेकिन मैंने भी कई बार कोशिश करी है, लेकिन उनके दिल से चाह नहीं होती कि हमारे बच्चों को भेजे। वो कहते ही हैं, अरे पढ़ लिख के क्या करेगा, बड़े होके कमाना ही तो है, वो भेज देते, अभी से कमाएगा तो बड़े होके और पैसे लाएगा। ये बात उनके दिमाग में रहती है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो उसी जगह पे स्थित हो जाते हैं।
0: मतलब हम समझाते हैं तब भी वो नहीं समझ पाते उस बात को। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जो हमारी बात को नहीं समझेंगे, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहें और एक चेंज भी हम ला पाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ दीदी,
0: है ना? तो इसलिए हमें कोशिश, आकाश, जरूर करते रहने चाहिए।
3: हाँ दीदी,
0: है ना? और सैंडी, आप क्या सोचते हो?
1: दीदी, ऐसा आकाश ने और भुवना ने बताया कि हमें लोगों को समझाना चाहिए, ये बात तो सही है, पर मैं तो जहाँ तक होता है समझाता ही हूँ कि मुझे कुछ बच्चे मिलते हैं तो मैं उनसे बोलता हूँ। फिर एक बच्चे को मैंने बोला भी था तो बोलते कि मम्मी पापा ना बोलते, तो मैंने उन्हें बोला भी था, उनके मम्मी पापा को मैंने समझाया था, तो उन्होंने मुझे डांट भी दिया था कि तुम अपना काम करो, हमारे फैमिली से तुम्हें क्या मतलब। तो मुझे बुरा नहीं लगा, पर मेरी अभी भी कोशिश जारी है, मैं होता तो समझा देता हूँ, और मेरे पास जो भी कुछ होता है कि हाँ कुछ बुक्स हुआ, कुछ हुआ, अगर उनको अच्छा लगे तो मैं दे देता हूँ, मेरी कोशिश अभी भी जारी है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास जो होता है अगर उन चीजों से भी हम उनकी मदद कर पाए तो उनको अच्छा भी लगता है, और थोड़ा बहुत तो उनकी मदद हम कर ही सकते हैं, है ना? तो ये सैंडी बहुत अच्छी बात है। पंकज, आप बताओ।
4: दीदी, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो काम करते हैं लेकिन उनमें इच्छा होती है पढ़ने लिखने की, हमारे जैसा बनने की, वो भी सोचते हैं कि हम इनकी तरह बन सकते हैं, इनकी तरह हमारी लाइफ हो सकती है, हम पढ़ सकते हैं और पढ़ लिख के हम अपने पेरेंट्स की जिंदगी बना सकते हैं या खुद की भी जिंदगी बना सकते हैं, तो उनकी मदद हमें करनी चाहिए। जैसे कि अगर वो पढ़ना ही चाहते हैं तो उनको अपने पुराने बुक्स दे सकते हैं, उन्हें जाकर उन बुक्स के बारे में, या अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो उनके लिए कुछ टाइम निकाल कर उन्हें कुछ बता सकते हैं कि पढ़ाई क्या होती है और पढ़ाई का महत्व क्या होता है।
0: अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल पाए तो हम जाके उन्हें कुछ नहीं तो एटलीस्ट बेसिक पढ़ना लिखना तो सिखा ही सकते हैं, ताकि जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो हिसाब किताब सीख पाए, और थोड़ा लिखना पढ़ना सीखने से कोई उनके साथ बेमानी या गलत भी ना कर पाए।
4: हाँ दीदी।
0: भूमना आप बताओ।
2: आजकल स्कूल्स में इतनी सुविधाएं हैं कि बहुत सारे पैसे उनमें ही यूज कर रहे हैं और एक्स्ट्रा पैसे भी बहुत सारे अननेसेसरी थिंग्स पे यूज कर रहे हैं। इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स हम कुछ खाना एक एक हमने क्या किया इस बार स्कूल पे, मेरे हमारे स्कूल में एक एक क्लास एक एक थिंग ऑर्फनेज के लिए, छोटे छोटे बच्चे के लिए, जैसे 4th क्लास लोग को छोटे छोटे बच्चे के लिए डायपर्स लेकर आए, एटलीस्ट 3-3 डायपर्स फुल क्लास 3-3 डायपर्स तो ठीक है, तो हम फ्रूट्स देंगे। पर दीदी हम कभी भी पैसे नहीं लेना चाहिए, कुछ ये देना चाहिए ताकि वो इजीली यूज कर सकते हैं, जैसे हम क्लोथ्स दे सकते हैं, डायपर्स, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको डायपर्स चाहिए वो खरीद नहीं सकते। इसके बारे में हम स्कूल्स को भी ये कर सकते हैं और हम घर में भी थोड़ी थोड़ी हमारी पुराने बुक्स होते हैं, पुराने कपड़े, वो सब लोगों आते हैं उनको इंस्पायर करना चाहिए कि ये देखो इतना अच्छा बुक है तुम पढ़ो तो पढ़ लिख सकते हो, फ्यूचर में तुम ये बन सकते हो वो बन सकते हो, ऐसा करेंगे तो वो सच में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा और हमारे देश में कभी चाइल्ड लेबर नहीं होगा ये कंटिन्यू होगा। तो
5: ये तो आपके स्कूल का भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आपने भी बहुत अच्छी बात सोची कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी उनके लिए करें तो उनकी बहुत मदद हो सकती है। आकाश
3: दीदी, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने हमारा एक डोनेशन बॉक्स होता है जो हम हर ईयर पे खोलते हैं, मतलब जैसे इस महीने की हमारी हमको जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से कम 10 रुपया भी बच जाता है तो हम उस डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं और ऐसे करके हमारी 1 ईयर में डोनेशन बॉक्स जब फुल हो जाता है तब हम न्यू ईयर पे सब बच्चों को चिप्स बांटते हैं, कुरकुरेस बांटते हैं, उनके खाने की चीजें देते हैं। कम से कम हमारे पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो आराम से खा पी सकते हैं।
5: बिल्कुल सही, हमें पॉकेट मनी मिलती है उसको भी अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सेव करें और जैसे कि सब लोग मिलकर करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम अलग से भी अगर कुछ करें तो भी हम इस प्रकार से उनकी छोटी बड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। ऐसा ही एक इनिशिएटिव रेडियो मधुबन के यूथ जंक्शन के आरजे विनोद और उषा जी ने मिलकर रेडियो मधुबन के बिहाफ से किया। उन्होंने जाकर जो रैक पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं, उन बच्चों को इकट्ठा किया, उनके पेरेंट्स से बातचीत की और करीबन 20 बच्चों को रेगुलर रोज जाकर पढ़ाया, उनका एडमिशन पास के स्कूल में कराया ताकि वो बच्चे पढ़ भी सके और अपना फ्यूचर बना सके। इससे और कुछ मिले ना मिले उन बच्चों की कितनी सारी दुआएं भी हमें मिलती हैं, है ना?
6: हाँ दीदी।
5: तो आप लोगों के पास ये जितने भी आइडियाज हैं इनको आप एक्शन में ला सकते हो, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, हमेशा कभी भूलना नहीं इस चीज को, जो आपकी भावनाएं हैं उन्हें बना कर रखना, और कभी आपको ऐसा कुछ लगे कि आपको कुछ बड़ा करना चाहिए तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल में अपने टीचर से और बड़े लोग जो हैं उनसे अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो ताकि कुछ करने की आपको भी मदद मिल पाए और उनके पास भी आपके सजेशंस पहुंच पाए। ठीक है बच्चों?
3: हाँ दीदी।
5: तो अगली बार हम सब फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी विषय पर। आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।

खामोशी को सहकर जैसे चिड़िया सब कुछ सुन रही, और बहती हवाओं में जैसे कोई तितली बहकर घूम गई।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रहे, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। जब से हमारी ये सीरीज शुरू हुई है, बहुत से हमें कॉल्स आते हैं, बहुत से ईमेल्स आते हैं और आप सबका एक बहुत लगातार रिस्पांस आता जा रहा है। ढेर सारा प्यार भी मिलता है, लेकिन साथ ही हमें बहुत बार दर्शकों ने लिखकर भेजा कि उनके अनुभव जो हो रहे हैं, जो आप लोगों को मिल रहा है, वो बहुत सुंदर है और जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हर बार हम आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करें जो हो सकता है आप ही के जीवन में हुआ हो। तो आज एक बार फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। हम एक बात ये करना चाहेंगे कि जो लोगों का अनुभव हुआ है, जो परिवर्तन हुए हैं, वो जो उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है जो पूरे जितने और नए दर्शक जुड़ते हैं उनके लिए।
1: आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि परमात्मा भी हमें हमेशा यही कहते कि ज्ञान तो है ही सर्वश्रेष्ठ, लेकिन ज्ञान तब मेरे लिए पर्सनल हो जाता है जब वो मेरा एक्सपीरियंस बनता है। तब तक वो किसी और का ज्ञान है, जैसे या कहें पहले वो परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान, क्योंकि बाबा का ज्ञान मेरी प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि शिव बाबा ने कहा जो कुछ मेरा है वो आपका है, लेकिन वो मेरी प्रॉपर्टी कब बनता है, जब मैं उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हो और फिर यूज करके सक्सेस मिलती है, एंड देन आई से इट वर्क्स। सो टिल आई कम टू दैट लाइन व्हिच सेज दिस ज्ञान वर्क्स, दैट्स द डे व्हेन आई से ओके नाउ आई एम एट द राइट प्लेस, दिस इज एंड दिस इज गॉड। इवन दैट लेट्स से द बिलीफ टू द ट्रूथ, वो जो जर्नी है, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द बिलीफ कि ये ज्ञान जो है वो डायरेक्ट परमात्मा दे रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए ट्रूथ कब बन जाता, व्हेन आई सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन माई सेल्फ, देन आई से कि यू नो जो देने वाला है वो जो डॉक्टर है ही इज राइट बिकॉज आई एम गेटिंग क्योर्ड। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर एनी इंडिविजुअल।
0: और सिस्टर शिवानी, ऐसा बहुत से लोग मुझे हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो कहते जा रहे हैं कि मेरे में परिवर्तन देख रहे हैं वो, लेकिन मैं शो पर हूँ तो
1: आपके अंदर सब परिवर्तन देख रहे हैं। आई मस्ट टेल यू कि वेयरएवर आई हैव गॉन एंड हूएवर आई हैव मेट, एवरीवन टॉक्स अबाउट यू एंड एवरीवन सेज कनु देखते आ रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, एंड वो तो बिल्कुल चेंज हो गई है, एंड यू मस्ट नो कि यू आर बिकमिंग अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। दे आर बिकॉज दे सीइंग यू एंड दे से कि वो बहन के अंदर इतना चेंज आ गया है, उसको इतना समझ में आने लगा है, एंड दे ऑल्सो फील देर इज अ चेंज इन द वे यू आर presenting the whole gyan. So they say ke, because they're seeing you as the example on which the gyan has worked. See, इस साइड पर जो भी भाई बहने बैठते उनको तो वो देख ही तब रहे हैं आफ्टर दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, लेकिन आपको उन्होंने उस जर्नी पर देख लिया है कि व्हेन यू बिगैन विद इट एब्सोल्युटली रॉ, ओम शांति यू वर सेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड टुडे व्हेन दे कैन सी दैट इट वर्क्स, तो आपको देखकर हर एक को बहुत प्रेरणा मिल रही है कि यस दिस ज्ञान वर्क्स।
0: वेरी ट्रू, एंड इनफैक्ट ये हमें अनुभव तब होने लगता है जब हमारी सिचुएशंस जब आती हैं उनमें हमारा रिस्पॉन्स अलग होने लगता है, हम सिचुएशंस के ऊपर उतने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो ऐसा ही आप सबके साथ भी बहुत लोगों के साथ होता जा रहा है, और आज सिस्टर शिवानी के साथ हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, आप ही में से एक थी, समझा और फिर वो स्टेप उठाया। हम बार बार ये बात करते हैं कि हमें अच्छा लगता है सुनना, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ सुनते हैं, लेकिन क्या ये मेरे जीवन में हो पाएगा जब मेरे जीवन में सिचुएशन आएगी। वो एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया। हमारे साथ खास सिंगापुर से भारत आए हुए, इन दिनों भारत में है, समीना जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति।
2: ओम शांति।
0: आप ही की तरह के गेस्ट हैं, मतलब हमारे साथ, लेकिन आप बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं समीना जी, और एक परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कैसे हुआ ये सब, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे प्रोग्राम देखा?
2: आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कैसे हुआ, लेकिन एक बार चैनल सर्फिंग करने के टाइम पे ये प्रोग्राम देखा और मुझे लगा दिस इज डिफरेंट, यू नो ये रिलीजियस टॉक नहीं, ये कुछ और है। तो फर्स्ट एपिसोड देखा तो यू नो इट वॉज अ गुड थिंग, यू नो समथिंग डिफरेंट, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये क्या बोल के आ रहा है इन लोग। And then I felt ke this is just talking about life, jo hamari zindagi hai, hum usse kaise alag bana sakte hai, behtar bana sakte hai, ya you know if she is looking so calm, main aisa ban sakti hu, because you know hamare zindagi mein itni uthal puthal hoti hai, you know. So I felt ke all right, then I thought ke okay ye ek hi bar hoga, तो कभी और यू नो अनदर डे और टू टाइम वापस सर्व करने के टाइम पे वही वो उसी टाइम पे प्रोग्राम था. सो आई थॉट ओके दिस इज अ डेली शो, यू नो दिस इज नॉट अ वन टाइम शो, लेट मी सी. एंड एक फिर हैबिट बन गई. आप लोग अभी जो कहते हैं संस्कार, वो संस्कार बन गया कि नहीं मुझे देखना ही है, किसी भी तरह से मुझे ये टाइम निकाल के देखना है. एंड एवरी डे दैट आई सॉ मुझे लगा दिस इज डिफरेंट. ये जो कह रहे ये शायद अगर ये कह रहे और वर्क करता है तो इट इज इट कैन बी सच अ ब्यूटिफुल लाइफ. एंड आई थॉट ओके नथिंग टू लूज, नहीं काम करेगा तो नहीं काम करेगा, काम करेगा तो अच्छा ही है. तो स्लोली वेरी ग्रेजुअली आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग. रोज जो आपके प्रोग्राम आते उसमें से एक बात पकड़ के मैंने बोला ट्राई करते हैं इसे, ये वर्क है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक ट्राई करना था कि कैन यू समहाउ कॉन्कर योर एंगर.
0: आई नो दैट्स द बिगेस्ट
2: बिकॉज दैट इज सच अ इमीडिएट रिएक्शन. जब कुछ गड़बड़ होता है तो फर्स्ट रिएक्शन इज एंगर स्ट्रेस. क्या यू नो वेदर वी कैन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ओवर दैट सिचुएशन. एंड एवरी टाइम अ सिचुएशन केम जहां हम वॉलेटाइल हो सकते हैं या गुस्सा हो सकते हैं या यू नो एजिटेट हो जाते हैं, तो तब क्या हम वो सिचुएशन को संभाल सकते हैं, यू नो. एंड आई फेल्ट दैट एक बार किया, दो बार किया, जब बहुत बार किया तब लगा इट इज सो मच बेटर कि तब नहीं होना है गुस्सा, सोचना है करना क्या है. एंड अब गुस्सा अंदर जरूर आता है लेकिन बहुत धीमे आता है, यू नो लाइक ओके एक बात को जब हम भड़क जाते थे बहुत बात पे, अभी you know, थोड़ा वक्त देते हैं. ओके इट्स चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग है ये टाइम, यू नो कि गर्मी ठंडी में सब काफी काम रहते हैं लेकिन गर्मी में सबकी सबके टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. So it is, it's really a challenge, but it's very nice क्योंकि you know जब हम थोड़ा शांत होते हैं तो सामने वाला भी शांत हो जाता है. I don't know, I feel it that you know जब हम आराम से बात करते तो सामने वाला अगर गुस्से में भी होगा तो उसे बुरा लगेगा.
0: See, we've been talking about it.
2: जब वो जब वो हमारे से गुस्से से बात कर फिर उसको खुद को लगता है कि but she is not screaming, तो कोई जरूरत है. और हमारे आदत है, एक्चुअली आदत ये भी है कि एवरीबडी नोज मी एज अ पर्सन हुज नो हु रिएक्ट्स वेरी क्विकली. सो दे फील के ये ड्रामा करिए यू नो क्या हो रहा है, व्हाई इज हर रिएक्शन नॉट स्पॉन्टेनियस एनीमोर. लेकिन आई थिंक स्लोली आई थिंक दे'ल गेट यूज्ड टू इट, आई एम श्योर. एट लीस्ट आई फील गुड.
0: नो बट इट्स सो ब्यूटीफुल समीना, आई एम यू कमिंग ओवर एंड शेयरिंग दिस विच इज एक्चुअली सो रियल. लेकिन पहला कदम आपने उठाया, दैट वॉज सो इम्पोर्टेंट. सिस्टर शिवानी,
1: आई थिंक इट वुड बी नाइस इफ यू शेयर हाउ डिड यू एक्चुअली गेट द ज्ञान टू वर्क, यू नो, बिकॉज आई टेल यू लॉट ऑफ अस वॉचिंग द प्रोग्राम बट देन वन इज कि हमने प्रोग्राम देखा सुना, लाइक यू बहुत सारे भाई बहन रेगुलर भी देख रहे हैं, बट समवेयर दैट लिटिल गैप इज देयर बिटवीन प्रोग्राम को देखना सुनना, परमात्मा से जो ज्ञान मिल रहा है समझना भी, लेकिन टू टेक इट बैक टू माई लाइफ टुमारो. सो वॉट इज इट दैट प्रोबेबली इंस्पायर्ड यू टू डू इट एंड वॉट डिड यू डू टू डू दैट, यू नो, टू गेट इट टू वर्क? बिकॉज अदरवाइज गुस्सा नहीं करना तो अभी पहली बार थोड़ी सुना आपने. आई एम श्योर इफ यू वर अ हॉट टेम्पर्ड पर्सन तो आपको बचपन से राइट फ्रॉम योर पेरेंट्स टू एवरीवन मस्ट हैव बीन टेलिंग यू कि गुस्सा नहीं करना चाहिए. तो व्हाट इज इट दैट गॉट यू टू वर्क ऑन इट नाउ एंड यू नो हाउ डिड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ?
2: फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्ट दैट आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट ऑन दिस इज बिकॉज आई न्यू आई हैड नथिंग टू लूज. इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, इट डजंट वर्क ठीक है, आई विल बी बैक टू माई नॉर्मल सेल्फ. A lot of people are watching this program, they agree with it, but they don't make an effort to bring it into their lives. You know, isme effort chahiye. You have
0: to. What was that effort?
2: The effort was that the time when I started, I wanted this so much in my life, is there were many things, factors going wrong in my life, and I had no control over it. Mujhe laga ki jaise, you know, I'm holding, jaise rep pakdi hui haath mein sab phisalta ja raha hai. मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ, यू नो इज दैट आई वांटेड टू होल्ड ऑन टू थिंग्स.
0: चीजें सिचुएशंस हैं, वो
2: सिचुएशंस
1: हैं. दैट्स व्हाट आई थिंक इन दिस होल सीरीज दैट वी बीन डूइंग, इट्स अ न्यू सीरीज, वी बीन टॉकिंग कि जब जब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है तो जो फर्स्ट फीलिंग आती है दैट इज पावरलेसनेस, कि मेरे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू कंट्रोल अदर पीपल एंड सिचुएशंस एंड दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल एनी मोर. तो सडनली यू फील कि मेरी पूरी जीवन ही मेरे हाथ से निकल, माय हस्बैंड इज नॉट इन माय कंट्रोल, माय चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप नाउ दे आर नॉट इन माय कंट्रोल, एंड सबसे बड़ी बात I am not in my own control. So you just feel, then what is in my control? You know, nothing seems to be in my control. And usse ek bahut feeling of kahin demotivation, you know. Life is not enjoyable anymore when you feel ki nothing is in your control. So that's true. That's the time when it's really needed. So that when I come back into control, everything comes back into control.
2: I think that was the key thing, that if I felt, like Sister Shivani said many times, don't try to change everybody around you. Try and change yourself. I said, okay, let me work reverse direction abhi. Ki agar mere mein thoda, you know, if I can change a little bit and mere mein badlaav aa jayega, to shayad wo thoda reflect hoga jo mere aas paas hai. Ye waise bhi mere control mein nahi hai, to main let it flow. I don't want to try very hard to change something that's going against me. If I let it go, let me see what happens. And when I did that, when I let go of all possibility to control things, I felt, and I just talked to God. And I said, now you help me from here. Maine aapka haath pakda hai, aap ab mera haath pakdo. And jab maine wo kiya, toh I felt that he actually held on to me. And he said, okay, I'll show you the first step. Chalna tumhe hi hai, lekin steps main sikhaunga. And once I did that, I felt, now I know my path. And what happens is religion, baki sare, I'm a Muslim, and it gets complicated. Jo religions cheeze wo complicated. Mujhe kuch bilkul plain and simple, jo mere samajh mein aaye, aisa mujhe chahiye tha. Jisse meri zindagi, you know, hum jo bhi programs dekh rahe, everybody wants in their nuclear family to be happy. Koi ye sochta nahi hai ki mujhe dukhi hona hai. I don't think anybody thinks that. Everybody wants just to be happy.
0: Very true. Har koi apne efforts jo hai wo khush rehne ke liye kar raha hai.
2: Yes. So I just wanted to be happy. I wanted my family to be happy, contented. And I feel I'm already on that journey. I feel ke jo bhi mere haath se phisla ja raha tha, phisal gaya tha, jo chala gaya tha, wo dheere I don't know, main samjha nahi pa rahi hu, lekin wo wapas lot ke aa raha hai. It's a tide. It went and it's returning.
1: But what all do you feel? You want to share? What do you feel had gone on that's come back?
2: A lot of things. A lot of that particular phase jab maine ye experiment kiya tha, business mein bhi my husband's ko losses the, family mein bhi problems chal rahe the, and you know, things like that. And we were both depressed. We both were feeling that, you know, we are good people. Hume sab lagta hai, hum sab logo ko aise lagta hai ki we are good people.
1: हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है?
2: हमारे, you know, why should it happen? मैंने, हम लोग ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया है, ना किसी को चीट किया है, ना कुछ भी. तो हमारे साथ ये ये ये इतनी पनिशमेंट हमें क्यों मिल रही है? लेकिन नाउ आई रियलाइज दैट दीज वर लेसन्स, एंड दिस वॉज जैसे परमात्मा हमें, ईश्वर कहो, ऑलमाइटी कहो, अल्लाह करो, जो भी, you know, he was actually kind of tuning us, training us for better times to come. And as you start the journey, and now I am a long way into the journey, I feel that there is no other way to live. You know, we are peaceful souls. We are happy souls. We don't have to be sad, you know. Ye rona dhona is not our life.
0: Very true. How beautiful. This is what
1: this is what we've been saying
0: every time.
1: We've been
0: wanting people to come out and say.
1: Yeah. Because pain is not a part of your life.
2: Yes. No. Don't give pain to anybody, but don't accept pain also.
0: Yeah, you know. And
1: this is, you know, she's not even realized what she said. Yes. But this is what Shiv Baba says. Na dukh do, lekin na dukh lo. Majority log hum kehte hain ki humne dukh nahi diya, hum kuch galat nahi keh rahe. Lekin dukh lena nahi hai. That part we didn't know. We knew this ke dukh dena nahi hai. Wo bhi kabhi kabhi galti se de hi dete the. Lekin dukh na lo. We didn't know that we had a choice there. We always thought ki agar kisi ne kuch kaha hai to dukhi to.
2: But if you're in soul consciousness, if you're conscious all the time, mujhe 24 hours lagta hai ki the divine force is with me. Wo mere saath hi hai. He is with me. And therefore, I will not do wrong. And I will not be wronged. Wo hai. He's protecting me. वो मेरे साथ ही है. अगर कुछ समथिंग गोज रॉन्ग आई फील ही इज टीचिंग मी समथिंग नाउ. आई नेवर सी इट नेगेटिवली.
1: सो इट बिकम्स अ वेरी पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड.
2: यस, आई मीन नाउ आई हैव फाउंड के I have a mechanism for by which I can actually talk to him. I am sharing my life daily basis. When I'm in meditation, that's when I'm very quiet. But uske baad I talk to him. I tell him, if I've done something by mistake, I've done something wrong, ya mujhse kuch, you know, wo spontaneous jo pehle ke sanskar the, wo gussa kahin kisi pe aa gaya ya kuch bhi, I will tell him ki this is what I did today, but I will make sure that I will be more careful next time. So the conscious, like soul consciousness, I am in that soul consciousness. And because I'm in soul consciousness, you cannot do wrong. That's the thing.
0: See, that's like, drishti agar hamari theek rehti hai, ya hamara pura ehsaas rehta hai, to actually nothing can go wrong also. You know, ye bhi aapke par pura strong aapko ehsaas rehta hai ki kabhi kuch galat ho bhi nahi sakta. Bahut sundar. Ab to main aapko sister Samina bhi keh sakti
2: hu. Because
0: I feel so much a part of the family.
2: Yes, I am. That's true. I am a part of the family.
0: Apne sabhi darshakon ke saath hum ye bhi share karna chahenge ki Samina ji Bharat jo is baar aayi hain, वो अपने परिवार के साथ आई और माउंट आबू गए ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स. वो एक्सपीरियंस कैसा रहा?
2: या इट वाज आई डिडंट एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि मैंने सोचा मैं एक आश्रम में जा रही हूँ. पहले तो मुझे वही लगा जब मैं गई, और इट इज बिग, यानी इट्स ऑन अ बिग स्केल एंड इतने

0: बैठ सकती हूँ एक बार, यू नो आई एम वेरी फिजिटी, तो ऐसा लगा कि मैं हट जाऊंगी, लोग मुझे देखेंगे कि कितनी शिफ्ट हो रही है यहाँ से वहां. नो बडी इज बॉदर्ड ओवर देयर बिकॉज इवन द यू नो सीनियर दादीज जिससे मैं मिली वो कहते हैं कि ये अपनी पर्सनल जर्नी है, कोई आपको जज नहीं करने वाला है, आप जिस स्पीड से जाना चाहते हो जाओ, यू नो. एक बिल्कुल भी एक रिलीजियस फीलिंग नहीं था, सिर्फ स्पिरिचुअल फीलिंग थी दैट आई एम हियर एंड ही इज देयर एंड आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद हिम, दैट्स ऑल. आई वॉज जस्ट देयर फॉर दिस कनेक्शन.
1: Wonderful, and you felt that connection.
0: Yes, all the time. When it, meditation, all the time.
1: So how about your family's response? I mean, and not only your immediate family, but up to ek kafi time baad aap apne parivar se milonge jab Mumbai gaye, that becomes more important. Ki wo jab aap keh rahe ho ki wo kehti hai acting kar rahi hai ya abhi bolegi ya abhi ye shor machane wali hai.
0: Yeah, yeah. My mother doesn't say it, but she herself feels good, you know, and she herself now is toned down. यानी क्या होता है कभी कभी हम जब शांत हो जाते सामने वाला खुद ब खुद शांत हो जाता है, यू नो. हम जब भड़कते तो वो ज्यादा भड़केगा, हम जब चिल्लाएंगे तो उससे ज्यादा वो चिल्लाएगा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी हर्ड.
1: और दूसरी बात ये भी वो आपको शांत करने के लिए भी और चिल्ला रहे होते हैं,
0: राइट.
1: यू नो कि आपको कहते हैं आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, तो खुद भी बहुत हाइपर हो चुके.
0: आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एनी मोर क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा बोलना ही नहीं है, यू नो. व्हाट एवर आई वांट टू से आई विल जस्ट से, आई डोंट हैव टू रेज माय वॉल्यूम टू बी हर्ड. व्हेन यू हैव अराइव्ड एट वेयर आई वांट टू गो, आई डोंट केयर व्हाट समबडी थिंक्स ऑफ मी. आई नो व्हाट आई एम नाउ, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ पहुंचना है, ये मेरी जर्नी है, मुझे पता है. आई डोंट नीड समबडी टू एंडोर्स इट. It's not important.
1: Yes, that's a beautiful. Actually, we are spellbound. I'm really happy.
2: This is high self-esteem. You see, now I'm not dependent on other people's opinion about me because now I know who I am. This is what meditation does, and this is what the gyan does. It hits first on the self-esteem. Because low self-esteem is the cause of the whole list, which comes after that, whether it's anger or pain. And low self-esteem means ego. And when we don't say finish ego. But what Baba's Gyan does is raises my self-esteem, what I feel about myself. And like you say, you know, now I don't care anymore. So it's not in the negative sense that now I don't care anymore. But it's actually that even if some people are still going to take their time, I'm okay. I don't need to prove anything to anybody. And that wo sirf wohi keh sakega jo andar se bhar gaya hai. You know, jab hum andar se khali hote hain, so we need to make noise. Lekin jab andar se bhar jate hain, now you take your time, I'll wait for you till you come to know.
0: But also ego, that's another thing.
2: Yeah.
0: We all celebrate ego, actually. We feel, agar ego nahi hai, toh kuch nahi hai. This is, but we confuse ego with self-respect. My self-respect is where it is. But I have no ego issues. The reason I can say this is because somebody tells me I'm an idiot. Earlier, I would immediately react. Today, it's not important because if he says I'm an idiot, doesn't make me an idiot. They may say many things about you. They may say, you know, they may call you a failure. They may call you many, many things, you know. And that's the time, in the earlier times, it used to bother me. That, you know, it is, they're inflicting pain on me by saying this thing.
1: You know why it used to bother us, actually? Because somewhere deep within, we used to think we are.
2: Yeah somewhere deep that, within, you know, we didn't even know, actually. Hame pata bhi to nahi tha. I don't know myself. To aap jo mere baare mein bologe, I'm going to take that only as the truth. And agar aapne mujhe kaha, jaise usne kaha ki aapne kaha you're a failure, suddenly I feel like a failure. Agar aapne kaha bahut acche ho, suddenly I feel very good. So then I'm just waiting for people to say nice things about me. And if somebody is not going to say very nice things,
1: everything goes down. Samina, bahut kuch hua jo aapne apne mein parivartan kiya. Ghar parivar mein bhi definitely hona shuru hua hoga. Raaste mein ab kuch सवाल कुछ बातें अभी भी हैं.
0: नाउ आई फील दैट दिस इज द वे आई वॉन्ट टू गो एंड आई वॉन्ट टू वर्क मोर बिकॉज देर इज सो मच नॉलेज आउट देयर दैट आई फील के इट्स नॉट इनफ टाइम. आई जस्ट होप दैट वी डोंट रन शॉर्ट ऑफ टाइम. वी हैव टू यू नो गेट दैट शुड बी इन अ हरी दैट हमें जितना ज्ञान मिल सके.
1: यस
0: अबाउट अस अबाउट द डिवाइन कि क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझ में ही नहीं आता था कि वो है कहाँ. जब हम उनको बुलाते तो है नहीं,

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावनी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद।
1: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी। जागरण किसे कहते हैं? जब हम खुद ये जान ले कि हम क्या हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिंदगी का पूरा सफर सोते हुए ही गुजर गया, और जब हमने ये जाना कि अरे हम कौन हैं, तो ऐसा लगता है कि खुद को ही नहीं पहचान पा रहे, खुद से ही खुद का तारुफ कराने की कोशिश करते हैं। ये पूरी श्रृंखला जो हमारी चल रही है, उसमें इन दिनों हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। कई सारे मुद्दे आए, कई सारी बातें आई, कई सारी मिथ्स जो डिप्रेशन से जुड़ी हुई थी वो दूर हुई, लेकिन आज जो मुद्दा हम लेकर आ रहे हैं वो है जब हम या आप विक्टिम्स हो जाते हैं किसी भी हादसे का। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल, जाने माने साइकोथेरेपिस्ट। डॉक्टर गिरीश, अ वेरी वार्म वेलकम।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत।
3: ओम शांति।
1: ओम शांति। डॉक्टर पटेल, शुरुआत करते हैं उस मुद्दे से कि अगर एक बड़ा हादसा हो जाए, चाहे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए या फिर कोई आग लग जाए या कुछ इस तरह का इंसिडेंस हो जाए जिसमें पब्लिक आउटक्राई भी है, मैं उस जो पूरा हादसा हुआ है उसका एक विक्टिम हूं, चाहे मुझे फिजिकली कोई हार्म नहीं हुआ है, फिजिकली हार्म हो जाए, हैंडीकैप हो जाऊं तब भी प्रॉब्लम है, लेकिन एक इमोशनल स्कार, एक डिप्रेशन सीप इन कर जाता है, बार बार बार बार वो चीज याद आती है और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तब क्या किया जाए?
2: मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो इवेंट्स है उसका कारण एक तो बहुत बड़ा फियर या तो शॉक, क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नहीं, फिर भी वो शॉक रहेगा और वो शॉक बार बार बार वो एक जीवन का ऑब्सेशन भी बन सकता है। जो फोबियाज डेवलप होते कहीं प्रकार के, वो फोबिया इसी प्रकार से डेवलप होते हैं। जैसे ऐसे हादसे है तो हो सकता है कोई व्यक्ति को बड़े आवाज का फोबिया हो जाए, थोड़ा भी कहीं क्रैकर्स भी जैसे दिवाली में फूट रहे हैं तो वो एक्सट्रीम उसको फियर हो जाएगा।
1: तो जब तक वो फिजिकल था तब तक तो मैं फाइट आउट करता रहा, सब लोगों ने कहा, लेकिन जैसे वो नॉर्मल हुई लाइफ, जो इमोशनल स्कार्स थे वो भूल के मैं भी अपने आप को खुद मेहनत करता रहा, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन सीप इन कर जाता है। उस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं?
2: उस डिप्रेशन में मैं सोचता हूँ कि रिवेंज बहुत बड़ी बात है। जैसे हादसों में एक तो हुआ वो फोबिया, वो एक डिफरेंट इश्यू है, उसको भी हमें डिस्कस करना चाहिए, और एक बात है कि जो रिवेंज की एटीट्यूड आती है कि वैसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। कई बार टेररिस्ट अटैक्स होते हैं तो देन ऑल्सो नो यू फील लाइक टेकिंग अ रिवेंज। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि वो भी टेररिस्ट बन गए। तो उस इश्यू को एक अच्छे से अच्छा काउंसिलर उस बात को समझ करके, उनके जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसे अंडरस्टैंड करके एटीट्यूड को चेंज करना सिखा
1: कितना
2: सकता
1: काउंसलिंग
2: है।
1: जरूरी हो जाता है इन हादसों में, इन
2: तो सबको जरूरी है वास्तव में। ऊपर से हम कहे भी कि आवश्यक नहीं है, मैं तो नॉर्मल हूं, लेकिन हर एक विक्टिम को वास्तव में थोड़ा एक दो घंटा तो काउंसलिंग होना ही चाहिए ताकि हम ठीक से उसे अंडरस्टैंड कर सके और उस अनुसार सही राय दी जाए।
1: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये क्वेश्चन कंटिन्यूस हैमर करता रहता है। ऐसे में भारतीय स्पिरिचुअलिटी, अगर हमारी अपनी सोच को हम देखें कि कार्मिक डेप्थ्स है, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली रियली हेल्प्स, काउंसलिंग ऑफ कोर्स हैज टू बी देयर, बट ये जो विक्टिमाइजेशन की बात है जहां ऐसे में बिल्कुल सब मेरे साथ क्यों, मैं अच्छा बना था सब कुछ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, कंटिन्यूस ये सवाल सिर्फ लोगों से ही नहीं अपने आप से पूछता रहता है वो आदमी। फिर
3: सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण ही शायद वो बन जाता है, या वो दुख में जाने का कारण ही वो बन जाता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। और यू नो जनरली लोग कहते हैं मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैं तो सारी जीवन अच्छा ही चल रहा था, तो मेरे साथ फिर बुरा क्यों हुआ। अगर हम लॉ ऑफ कर्मा को भी लें तो यही हमें सिखाया गया कि आप जैसा करेंगे वैसा आपके साथ होगा। तो हम कहते हैं लेकिन मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, या थोड़ा बहुत किसी को दुख दिया, लेकिन इतना बुरा किसी के साथ नहीं किया है कभी, जो मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। तो वहां कर्म फिलोसफी या कर्म का ज्ञान पता होते हुए भी उसको समझ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कर्म फिलोसफी सिर्फ एक जीवन पर आधारित नहीं है। एक जीवन पर वो तब तक आधारित थी जब मैं एक शरीर, तब मेरे लिए जीवन क्या है, जिस क्षण में पैदा हुई अब तब से लेकर अब तक मैंने क्या अच्छा किया क्या गलत किया, तो आई यूज टू सेट माई पैरामीटर मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जब ये समझ में आ गया कि ये शरीर नहीं, ये तो एक कॉस्ट्यूम है, मैं एक आत्मा हूँ जिसने इस शरीर को धारण किया है, तो अब एक सेकेंड के लिए डिटैच हो जाइए, यू नो, टेक योर सेल्फ सेपरेट कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर मैंने धारण किया है। मुझ आत्मा की एज कितनी है?
4: वो तो है ही।
3: इस शरीर की एज 35 है, मुझे पता है। तो देन आई से आई हैव डन गुड फॉर 35 इयर्स, लेकिन मैं आत्मा हूँ, अब मेरी एज कितनी है और मैंने इस एज में कितना अच्छा किया और कितना गलत किया, दिस हाउ विल आई अंडरस्टैंड। जैसे आपने कहा आत्मा अजर अमर, तो आत्मा क्या कर रही है? इट्स इटर्नल, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। तो वो एक कॉस्ट्यूम लेती है, टाइम पूरा हुआ, वो भी कब टाइम पूरा हुआ, उस कॉस्ट्यूम को छोड़ा, तो कॉस्ट्यूम को छोड़ते ही वो कहाँ जाएगी? वो एक दूसरा कॉस्ट्यूम लेती है। लेकिन जब दूसरा कॉस्ट्यूम लिया, इस कॉस्ट्यूम में जो जो डीलिंग्स की थी, सपोज आज आपने पिंक कलर की साड़ी पहनी है एंड आज आप मेरे से 100 रुपीज ले लेती हैं, तो मैंने आपको 100 रुपीज दिए, आप लेकर चले गए, ठीक है। कल आप ब्लू साड़ी पहनकर आती हैं और आप कहें नहीं, मैंने तो पिंक साड़ी जब पहनी थी तब आपको 100 रुपीज दिए थे, तो वो बात वहीं की वहीं फिनिश हुई, अब मुझे वापस नहीं करने, तो दैट्स नॉट लॉजिकली राइट। आई सेड आपकी साड़ी ने पैसे नहीं लिए थे, आपने पैसे लिए थे, सो इट डजंट मैटर कि आपने कौन सी आज साड़ी पहनी है, यू स्टिल हैव टू रिटर्न माय 100 रुपीज टू मी।
4: सोल के डेप्थ्स।
3: यस, तो नाउ व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट आई एम अ सोल, आई अंडरस्टैंड कि इस कॉस्ट्यूम में शायद मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स और पहले धारण किए थे, उन कॉस्ट्यूम्स में मैंने क्या क्या किया I don't remember. तो आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, when we understand karma, it's karma of the soul, not karma of the body. तो soul की age ये age नहीं है, soul की age बहुत सारी lives पहले जा रही है और बहुत सारी lives में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हमने किया है। तो वो सब का डीलिंग कंप्लीट करना, या जिसको हम कहें कार्मिक अकाउंट सेटल होना, वो होना ही है।
4: सो फाइनली आई थिंक इट कम्स डाउन टू एक्सेप्टेंस, सिस्टर शिवानी, कि एक्सेप्ट कर ले कि ये कार्मिक डेप्ट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते।
3: एक्सेप्टेंस लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ, यू नो, इट इज नॉट अ फोर। एक होता है कि जबरदस्ती एक्सेप्ट कर लो, इट्स लाइक अगर आपको मुझे वापस करने हैं वो 100 रुपए, आप कहो ठीक है जी जबरदस्ती, मतलब मैं स्वीकार करूं, जबरदस्ती नहीं है, आपने लिया था, सो इट इज एन अंडरस्टैंडिंग, आपने लिया था, आपको देना है। अगर हम जबरदस्ती एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगा।
4: लेकिन फिर अगर मुझे याद ही नहीं कि मैंने लिया था या नहीं, तो मैं एक्सेप्ट कैसे करूं?
3: लेकिन समझ जाना पड़ेगा कि हर चीज एक नियम से चल रही है। हु इज इट अदरवाइज हु डिसाइडेड दैट आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट, यू नो, दैट इंसिडेंट? देयर इज नोबडी एल्स। और अगर जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा, यू नो, ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है, तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। तो परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वो ही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं।
4: Okay.
3: अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
2: और ना कनुप्रिया जी, इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू को भी सोचा जाए, वो शायद सरल भी हो सकता है। ये सत्य है कि मेरे साथ ये हादसा हुआ, लेकिन औरों को और भी प्रॉब्लम हुए हैं। अगर औरों के जीवन को आप देखो पूरे, तो उतनी ही मैग्नीट्यूड के भी, किसी को कैंसर हो गया, किसी की माँ बचपन में ही गुजर गई, तो वह देखेंगे तो सच उतने बड़े।
4: डॉक्टर पटेल, लेकिन बात ये होती है कि जब इसमें आ जाते हैं, जब हम उस दौर से गुजर रहे होते हैं, तब हम दूसरे जो हमारे से भी बुरी हालत में, उन्हें भी देख रहे होते हैं।
2: तो गलत है ना?
4: हाँ, लेकिन होता यही है, मतलब
2: नेचुरली ये कि वाई मी एटीट्यूड कभी नहीं कहो।
4: हाँ बिल्कुल,
2: यह सोचो उल्टा, तब समय भी दो और ये प्रैक्टिकली सोचो कि औरों के भी सामने सचमुच प्रॉब्लम्स हुए। इसमें बहुत अच्छी कहानी है जो इंटरेस्टिंग भी होगी। कहते कि एक बार एक व्यक्ति को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ और वो भगवान के पास गया और भगवान को कहा कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, भगवान मैं कितना बदनसीब हूँ, हाँ वाई मी, मुझे ही देखो, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है ना, उसकी गठड़ी बहुत बड़ी थी। फिर भगवान ने कहा कि भी तुझे देखना है कि भी औरों को भी कितने प्रॉब्लम है, कहां बिल्कुल मुझे देखना है। तो परमात्मा ने सबकी दिखाई गठड़ी, हाँ, उसके पिता की गठड़ी दिखाई, उसके चाचा की दिखाई, नेबर की दिखाई। तो जाके उसने खोल के देखा तो उनकी गठड़ी तो और भी बड़ी थी, उनके प्रॉब्लम्स तो और भी बड़े थे। नेबर का बेटा ड्रग्स लेने लगा था, बहुत सीरियस प्रॉब्लम था, हाँ? किसी के साथ वो फेथ टूट गया था, किसी का अफेयर था दूसरे के साथ, तो उसको तो और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो सब वह देखा तो उसको लगा हाश नहीं, मेरे प्रॉब्लम तो कम है। फिर वो जाने लगा, हाँ? अंत और भी इंटरेस्टिंग है इसका, बस थोड़ा सा स्पिरिचुअल है। वो जाने लगा तो भगवान ने कहा जा रहा है? उसने कहा जा रहा हूं, अभी मुझे तसल्ली हो गई, मेरी गठड़ी तो छोटी है। फिर से पूछा जा रहा है? कहते हाँ हाँ जा रहा हूं, अभी तो मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ। फिर पूछा गठड़ी? तो कहा जा रहा हूँ। अरे बुद्धू, देख और सब तो गठड़ी छोड़ के गए यहाँ पर, तू क्यों लेके जा रहा है? तो उसे ट्यूबलाइट हुई, अरे रे तो सब मुझे छोड़ के जाना है,
4: लेकिन एक और बड़ी गठरी लेकर आऊंगा जब मैं वापस लौटूंगा।
2: तो दे दो परमात्मा को, हाँ, अपने प्रॉब्लम है। एक तो राइट सोचो, साइकोलॉजिकली भी सोचो, स्पिरिचुअली भी सोचो, फिर अल्टीमेटली अपने प्रॉब्लम से भगवान को सौंप दो।
3: बहुत सुंदर लगता है। स्पिरिचुअली भी इसको अब साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया गया है, क्योंकि जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, पहले हिप्नोटिज्म हम सुनते थे, लेकिन हिप्नोटाइज वो इस जीवन में ही करते थे। यू नो, आपके कोई भी प्रॉब्लम को वो आपको हिप्नोटाइज करके सबकॉन्शियस माइंड से वो बातें निकालते थे कि आपके बचपन में या कुछ क्या हादसा ऐसा हुआ था जिसका ट्रॉमा आप अभी तक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अब जो साइंस ने और प्रगति की है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? आप हिप्नोटाइज कर रहे हैं, आत्मा है तो आत्मा की कोई एज नहीं है। अगर आप उसको 10 साल पीछे लेके जा सकते हैं, आप उसको 50 साल भी पीछे लेके जा सकते हैं, तो आप उसको 200 साल पीछे भी लेके जा सकते हैं। बात सिर्फ कितना पीछे जाने की है। तो आज कई लोग जो अपनी प्रॉब्लम्स लेके, मेरे को लगता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, तो हिप्नोसिस में यही पता चलता है कि उसकी जड़ कहीं ना कहीं थी। कोई चीज भी आपके साथ अभी ऐसी नहीं हो रही है जिसका कनेक्शन कहीं पीछे जुड़ा हुआ नहीं था। और जैसे ही उन लोगों को वो कनेक्शन दिखाई देता है, वो फ्री हो जाते हैं, बिकॉज दे जस्ट नीड अ लॉजिक कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है।
4: That's what I'm saying. Answer,
3: answer. Answer. Once they get the answer, it's very easy to accept. सारे जितने केस स्टडीज ये हुई है और इस पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी पब्लिश हुई है, जैसे ही उसको रियलाइज हुआ अच्छा ये हुआ, उसका रिजल्ट ये है, जस्ट गेट्स ओके। तो अब हमें, वी डोंट नेसेसरी हैव टू गो थ्रू दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वी नो देयर वाज अ पास्ट लाइफ एंड वी नो दिस इज समथिंग बिकॉज ऑफ दैट, सो इट्स जस्ट इजी टू एक्सेप्ट।
4: देन अभी आपने ये भी कहा कि थॉट जो है अब, क्योंकि एक बार हम विक्टिम हो गए, हम उस डिप्रेशन में चले गए हैं, नाउ द थॉट दैट हाउ टू कम आउट ऑफ इट, यू नो, नाउ दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज नाउ द टाइम इज लाइक व्हाट टू डू नेक्स्ट, you know, how to come out of it. So, मतलब एक थेरेपिस्ट के नाते भी क्या आप कैसे कहेंगे कि वो बाहर निकले? एंड ऑफकोर्स अगर हम स्पिरिचुअली भी देखें तो वो थॉट को किस तरह से मोल्ड करना है कि हम बाहर निकल सके।
2: ऐसे हादसों में एक तो बदले की भावना निर्माण होती है तुरंत, और भल वो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ बड़ी समस्या हुई है तो नेचुरली मन के अंदर वो विचार चलेंगे, परंतु उसके पीछे एक रीजनेबल टाइम दो। कई बार मैंने देखा है सारा जीवन वहीं चला जाता है, 24 घंटे बस यही सोचते हैं कि भी कैसे मुझे न्याय मिले, है ना, कैसे कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो। पल करिए, परंतु ये सोचिए कि जीवन में और भी बहुत कुछ है।
4: ऑब्सेशन बन जाता है,
2: ये ऑब्सेशन नहीं बनना चाहिए कि भी और चीजें मुझे करनी है, मेरी जो टैलेंट्स है उसको निखारना है, जीवन में आगे बढ़ना है, यह बात भी साथ साथ में होनी चाहिए। और एक जो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं कि इसे फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करो, क्योंकि तभी बिकॉज यू हैव सफर्ड।
4: पर ये जो जब हम इस हादसे की बात करते हैं, इसमें तो हम फ्यूचर में नहीं प्रिवेंट कर पाएंगे, लेकिन जो इंसिडेंट आप बात कर रहे हैं, जैसे हम एक्चुअली जो मेजर यू नो डिप्रेशन से गुजरते हैं वो है चाइल्ड अब्यूज और रेप विक्टिम्स जो है, कि रेप विक्टिम अगर आप है वो इंडिविजुअल हो जाते हैं।
2: यू आर राइट, रेप विक्टिम की बात ठीक नहीं, यहाँ पर भी मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल टेररिस्ट अटैक्स से, वहां इफ आई एम अ विक्टिम से, फिर मैं अपनी लाइफ को डेडिकेट करूं कुछ तरीके से, ताकि नहीं लोगों को ट्रेनिंग में दे सकता हूँ कि भी कैसे बचना है, और कुछ है ना, भाई टेररिस्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी कुछ एफर्ट की जाए. ब्रह्मा कुमारी तिहार जेल में भी जाकर के उन्होंने कई मेडिटेशन के प्रोग्राम्स किए हैं. भले हमारे पास एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक नहीं कि कितना परिवर्तन आया होगा, पर अगर 10% भी परिवर्तन आया है तो बहुत बड़ी वर्थवाइल चीज है. ब्रह्मा कुमारीज ने डाकुओं में भी चेंज लाए उसके लिए एफर्ट किए. डाकू पंचम सिंह की जो बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं, करीब 2 घंटे तक मेरा उनके साथ डिस्कशन हुआ था. तो कहते थे इम्पॉसिबल था कि अगर ये बहने वहां नहीं आती तो मेरे में बदले की भावना थी जिससे मैं छूटता रिवेंज लेता, लेकिन इसकी मेरे माइंड के ऊपर इफेक्ट हुई. तो ऐसी कुछ एक्टिविटी हम कर सकते हैं जिससे वो प्रिवेंट हो
4: और कहीं ना कहीं इंस्पायर होके, यू नो, इंस्पिरेशन जो है. और कहा यह जाता है कि जो खासकर मुजरिमों के लिए कहा जाए कि जो इतने प्लानर्स होते हैं, अगर वो पॉजिटिविटी में चले जाएं, सो दे कैन एक्चुअली बिकम सच गुड लीडर्स
3: एंड प्लानर्स. दे हैव द क्वालिटी,
4: यस, यू नो. तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी में आ जाए. अगेन विक्टिम्स के बारे में अगर हम बात करें, खासकर रेप विक्टिम एक ऐसा विक्टिम है जिसके बारे में, जिसको जो जिस दौर से गुजरता है उस पूरे हादसे के बाद, वो एक बहुत लंबा वक्फा होता है. बहुत लंबे टाइम तक उस पूरे इंसिडेंट से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. साइकोलॉजिकली ऑल्सो अगर हम देखते हैं तो वो बाहर कैसे निकल सकती है या कैसे निकलना चाहिए, और हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प हर. कार्मिक उसका ये सवाल कि मेरे साथ क्या हुआ, तो चलिए कार्मिक डेप्थ था, अब व्हाट नेक्स्ट, देयर हैज टू बी अ नेक्स्ट, देयर हैज टू बी अ टुमारो. सो हाउ इज इट दैट शी कैन कम आउट ऑफ इट.
2: या पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इट्स एक्सट्रीम स्ट्रेस. कहीं डॉक्टर राहे ने एक पूरा स्केल तैयार किया है, उसमें बहुत सारे प्रश्न है और ये सारे प्रश्नों के पॉइंट्स भी दिए गए कि भी इसको कितनी स्ट्रेस होगी. इसमें 100 पॉइंट्स दिए हैं कि नियर रिलेटिव की डेथ हो जाए तो दैट इज 100 पॉइंट. नो मैरिज इज 50 पॉइंट क्योंकि दैट इज ऑल्सो स्ट्रेसफुल. तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जो रेप विक्टिम्स की बात है, इट कैन बी इवन 10,000 पॉइंट विच इज एक्सट्रीमली सीवियर. लेकिन फिर भी देखा है कि ऐसे सिचुएशन में हर एक का रिएक्शन डिफरेंट होता है. भी कहीं तो डिप्रेस्ड फील करते, दे कमिट सुइसाइड इवन, नो. सम कीप दैट रिवेंज थ्रू आउट देयर लाइफ. कहीं तो डरने लगते हैं, ऑलवेज दे हैव अ फियर. और भी कुछ लोग है, ऑल्दो इट इज रेयर, लेकिन ऐसे भी है कि भी जिन्होंने इसको अपना एक सोशल वर्क बना लिया कि भी और भी जो इस प्रकार के विक्टिम्स है उनको जाके मिले, उनको काउंसिलिंग दी, अपना अनुभव सुनाया, हाउ टू कम आउट.
4: डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल बहुत से दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि ये जो विक्टिम है, क्या ये कभी इस ट्रॉमा से बाहर पूरी तरह से आ सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि ये जो इमोशनल स्कार है लाइफ का इतना बड़ा, इसे पूरी तरह से बाहर आया जा सकता है? विल दे एवर बी एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ?
2: फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑल्सो एग्री, क्योंकि नहीं, कई बार कहना सहज है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल यू कैन.
4: दैट्स व्हाट,
2: एंड इवन इफ यू कैन कम आउट टू 90% से, है ना, 80%, 90% भी आप बाहर आ गए और अपनी लाइफ को नॉर्मल बना दिया, देन दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव.
4: सिस्टर शिवानी, काउंसलिंग, स्पिरिचुअलिटी, द होल एस्पेक्ट ऑफ नोइंग माई सेल्फ, विल इट हेल्प?
3: लॉट्स,
4: बिकॉज आई कम आउट 100%,
3: बिकॉज आई थिंक इस चीज में इससे ज्यादा और कोई चीज हेल्प शायद नहीं कर सकती है, क्योंकि कोई और काउंसलिंग बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी इसमें, क्योंकि द पेन इज टू मच, यू नो. बट नाउ मे बी ज्यादातर इस तरह के मन में क्या चलता होगा, अपने आप से नफरत भी हो जाती है, यू नो. दूसरे से तो होती है, लेकिन अपने अंदर लगता है कि मेरे अंदर कुछ, यू नो, अपने आप से नफरत जो होती है ना, वो ज्यादा ट्रामेटाइज करती है दूसरे से, क्योंकि दूसरा शायद अब आपकी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन खुद को देख देख के आपको अपने आप से प्रॉब्लम होने लगती है और लगता है मेरे अंदर कुछ कमी थी जिसने इस तरह का घटना,
4: रीलिविंग दिस होल,
3: या यू आर कंटिन्यूअसली ब्रिंगिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द अंडरस्टैंडिंग, नथिंग वॉज रॉन्ग विद मी, यू नो, आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन. ये किसी और की कमजोरी थी, मेरी कमजोरी नहीं थी. वो सबसे पहले, क्योंकि बहुत लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है जब ये हो कि ये मेरी कमजोरी थी, मेरी कोई गलती थी, तो सबसे पहले वो अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरी कमजोरी नहीं थी, दिस वॉज समबडी एल्स इज वीकनेस. और दूसरा ओके इट मे साउंड ईजी बट इट इज द ओनली थिंग विच मेक्स सेंस इज आई हैव गोन थ्रू समथिंग. एक दर्द है, अब मैं इस दर्द को कितना टाइम यू नो लेकर चलना चाहती हूँ. एक दिन दस साल या पूरी जीवन, यू नो दैट्स इन माई हैंड, डेफिनेटली वो मेरे हाथ में है. तो कहीं ना कहीं अगर अपनी लाइफ में अपने आप को एक अलग डायरेक्शन में ले जाएं, यू नो अपने आप को किसी चीज में ऑक्यूपाई कर लें. और इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि आप नॉर्मल रहे. जितना आप नॉर्मल रहते हैं चीजें नॉर्मल हो जाती हैं. जितना आप सिंपथाइज करने की कोशिश करते हैं या बार बार उस इंसिडेंट को यू नो रीलिव करते हैं या उसको डिस्कस करते हैं, वो बार बार जागृत होता जाता है. बिकॉज हियर द ओनली थिंग दैट विल हेल्प इज फॉरगेट एंड फॉरगिव. Nothing else.
4: Yeah, the anger, you know.
3: Nothing
4: See,
3: else
4: when
3: will
4: the self pity comes, the anger also comes.
3: Absolutely. Yes. So आपको forget करना पड़ेगा, लेकिन भूलना easy नहीं है जब तक आप क्षमा नहीं कर सकेंगे. अब अगर logically कोई सोचे तो कहे ऐसे व्यक्ति को हम क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे हम अपने आप को दर्द पहुंचाते रहेंगे. तो we will have to, you know, let go of that person because that person is still here. You know, physically नहीं है लेकिन मैंने उसको hold करके रखा हुआ है अपने mind में. I will have to pick that person out from here and throw him out forcefully. बार बार वो thought जितनी बार भी मेरे सामने फिर आती है, no, that pain was for that one day, not again. लेकिन बार बार करने से I am inflicting that pain on myself. You know, so वो उस process से गुजरने के लिए. और दूसरा, किसी भी हादसे में, चाहे ये या कोई accident या handicap, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान बहुत ज्यादा help करता है. क्योंकि एक है कि मुझे कुछ हो गया है और एक है मेरे शरीर को कुछ हो गया है. Two things totally different.
4: मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता,
3: मुझे कुछ नहीं हो
4: ये
3: सकता,
4: एहसास
3: मुझे वो ही हो सकता जो मैं खुद को दूंगा, और वो है दर्द. शरीर का अंग खराब हो सकता है लेकिन वो मेरे शरीर का, यू नो द मिनट आई से मेरा शरीर, इट बिकम्स जैसे किसी और को हुआ है. यू नो, और जब किसी और को होता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है. लेकिन मुझे हुआ है, मुझे हुआ है, बार बार मुझे हुआ है, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ पेन. तो वो पेन हम अपने आप को देते हैं. जो एक्सीडेंट था उसने मेरे शरीर को तकलीफ दी, दर्द हम खुद को देते हैं. तो वो जब अपने आप को हम सेपरेट कर देते हैं विद अंडरस्टैंडिंग, इट्स जस्ट इजियर टू अंडरस्टैंड.
2: और यहाँ पर जो मैंने अनुभव किया है कि रिलीजियस टीचिंग्स आर आल्सो वेरी पावरफुल. वो उदाहरण याद आता है कि जो प्रिस्ट और उनके बेटों को उड़ीसा में सभी पूरा जिंदा जला दिया गया.
3: वेरी गुड केस
2: ना. तो एक साल के बाद उनकी पत्नी का एक इंटरव्यू आया था. उनको पूछा कि भी आपको कैसा लग रहा है वैसा हुआ, तो बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जिस दिन यह हादसा हुआ उसी दिन मैंने उनको माफ कर दिया. एंड नो लॉ विल टेक इट्स ओन एक्शन. उन्होंने ये भी कहा कि भाई लॉ के अनुसार सजा मिलेगी, कि मैंने तो उनको माफ कर दिया.
4: क्योंकि
2: तो ये पावर साइकोलॉजी में नहीं हो सकती है ना. कुछ भी करो मनोविज्ञान या नहीं कर सकते. आध्यात्मिक जो उनकी बिलीफ सिस्टम थी उसके कारण यह पावर आई.
4: एंड ब्यूटिफुल एक्चुअली फॉरगिव करना, माफ करने से मैं अपने आप के लिए ही शांति कहीं ना कहीं तलाश.
3: क्योंकि सबसे पहले मैं अपने आप को माफ करती हूँ. सी एनीथिंग यू गिविंग टू द अदर पर्सन वो आपके लिए है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो दूसरा, हम दूसरे को क्या माफ करेंगे, लेकिन खुद को जब कर देते हैं तो वी बिकम वेरी लाइट इनसाइड. एंड दिस एग्जांपल इज बिकॉज दैट लेडी इज लीडिंग अ ब्यूटीफुल लाइफ, जबकि उनके साथ जो हादसा हुआ, इट्स डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट. तो इट वॉज जस्ट फॉरगिवनेस.
2: और भूलने के लिए भी माफ करना. अल्टीमेटली व्यक्ति भूलना चाहता है.
3: जब क्षमा करते हैं तभी भूल सकते हैं.
2: वो रिपीटेशन स्टॉप होगा और भूल सकते हैं.
4: That's what you said, forgive and then forget.
3: Forget करना नहीं पड़ेगा ना, वो भूल जाएगा. हम लोग जनरली कहते हैं मैं भूल गया ना. अगर आपने ये तो बहुत बड़ी छोटी बातों में भी आपने मुझे ये कहा, मैं भूल गया जी, मैं भूल गया. अंदर फॉरगिव नहीं किया तो तब तक भूल नहीं सकते. फॉरगिव किया तो वो याद ही नहीं आएगा, और नहीं तो दस साल बाद भी याद आएगा, आपका एक एक कड़वा बोल याद आएगा. तो इट्स नॉट फॉरगिवन, सो इट्स नॉट फॉरगॉटन.
4: बिल्कुल डॉक्टर गिरीश पटेल, प्रोफेसर शिवानी, बहुत सार्थक हमारी बातचीत रही. ये एक्चुअली मुद्दे ऐसे नहीं हैं जिन्हें हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं. इस पे अभी आगे अगली कड़ी में भी जरूर बातचीत करेंगे. कुछ और विक्टिमाइजेशन की बात जो है, कुछ और विक्टिम्स ऐसे हैं जो सारी जिंदगी निकाल देते हैं और वो तो कह भी नहीं पाते. उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो चाइल्ड अब्यूज होता है. लेकिन वो हम अगली कड़ी में पहुंचेंगे. आज जो बातचीत रही अल्टीमेटली यही सामने आई बात की फॉरगिव एंड देन यू ऑलवेज फॉरगेट यू नो. एंड समवेयर जो ये बड़े हादसे हो रहे हैं जो कुछ हो रहा है उसमें कार्मिक डेप्ट उसमें हमारे हाथ में नहीं है. एक्सेप्टेंस हमारे हाथ में है कि ये होना था हो गया कोई बात नहीं अब आगे जिंदगी है. डॉक्टर गिरीश पटेल सिस्टर शिवानी थैंक यू सो मच. डिप्रेशन से जुड़ी और भी बातें हैं जो आपके दिमाग में होंगी जो आपको सता रही होंगी और शायद आप हमारे साथ उन्हें शेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है. आप हमें फोन पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी हमें भेज सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. विक्टिम्स हम में से हर कोई कभी न कभी हुआ है. क्या विक्टिम्स बनके हम अपनी सारी जिंदगी इसी तरह से गुजार देंगे या फिर फॉरगिव एंड फॉरगेट यानी कि माफ करना और फिर भूल जाना इस पद्धति को अपनाएंगे. सोचिए और अगली कड़ी में कुछ और ऐसी ही बातें कुछ और ऐसे ही मुद्दे लेकर आपसे मुलाकात करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: अमोरे मियो तो वे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज का हमारा विषय है मांसाहार रोगों और पापों को निमंत्रण देता है। मांसाहार आहार होना लोग सोचते हैं बहुत अच्छा है। आज के युग में लोगों के खान पान की जो महत्ता है या जो उनकी चाव है वो ज्यादा मांसाहार की ओर अग्रसर हो रही है, तो इसे हमें ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमात्मा पिता कर्मों की को ही गति बताते हुए कहते हैं कि हमारा जो आत्मा के साथ जो संबंध है, आत्मा प्रकृति के बने शरीर के संबंध में आने से जो अच्छे बुरे कर्म करती है उसका फल आत्मा को क्रमशः सौभाग्य या दुर्भाग्य के रूप में प्राप्त होता ही है। आत्मा करती है तो भुगतती भी आत्मा ही है, फिर चाहे इस जन्म के शरीर में या अगले जन्म के शरीर में, क्योंकि आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का हिसाब किताब लेकर ही जाती है। सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण आत्मा नजर नहीं आती, देह नजर आती है, तो हमें यह भ्रम हो जाता है कि देह कर रही है। देह त्याग कर दिया तो अच्छे बुरे कर्मों का फल भी यहाँ का यहाँ ही रह गया और आत्मा क्लीन स्लेट हो गई, परंतु नहीं, आत्मा निर्लिप नहीं है। इसे हमें यहाँ पर देखना है। वास्तविकता यह है कि आत्मा जब पहली बार इस धरा पर माता के गर्भ से जन्म लेती है तब वो क्लीन स्लेट आती है। जन्म मरण के चक्र में आते हाँ कर्म करते आत्मा पर हिसाब किताब बहुत ज्यादा हाँ हिसाब किताब का लेप जो है लेप छेप लगता जाता है, फिर आत्मा निर्लिप नहीं रह पाती। आत्मा अपने सत्य स्वरूप अपने आदि अनादि स्वरूप को भी भूल जाती है। इस अज्ञान अंधकार में गोते खाते खुद को तो यथार्थ रूप में आत्मा समझती नहीं, अपितु पेड़ पौधों में चैतन्य आत्मा है यह कहकर भ्रमित होती रहती है। मांसाहार को पाप न मानने के और प्रकृति प्रदत्त पदार्थों के सेवन को पाप मानने के तर्क वितर्क में उलझी रहती है। पेड़ पौधे प्रकृति के अंश है हमारे लिए, प्रकृति द्वारा प्रेम से बनाया हुआ भोजन आत्मा अर्थात पुरुष और प्रकृति का यह खेल बना हुआ है। प्रकृति के देश में आत्मा अपना निज धाम परम धाम छोड़कर मेहमान बनकर आती है। मेहमान नवाजी में प्रकृति ने मनुष्य की आत्मा के लिए विशिष्ट प्रकार के वस्त्र यानी कि देह और उस वस्त्र के लिए लाभदायक भोजन प्रदान किया है, शाकाहारी भोजन। ऐसे ही प्रकृति ने अन्य प्राणियों को भी उनके अनुरूप विशिष्ट वस्त्र पशु पक्षी आदि को भी और भोजन शाकाहार व मांसाहार प्रदान किया है। अगर हम देखें तो मनुष्य शरीर शाकाहार के लिए बना है। कहा जाता है जहां जाए वहां के जो नीति नियमों के अनुरूप चलेंगे तो लोग खुश रहेंगे, नहीं तो परिस्थिति से ग्रस्त रहेंगे। लोग का खुश रहना नहीं, हमें खुद को देखना है कि जहाँ के रीति रिवाज के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम खुद में भी खुश रहेंगे। तो हमें देखना है कि आज परिस्थिति से हम ग्रस्त रहेंगे। जैसे भारत का कोई व्यक्ति जर्मनी चला जाए तो वहां सड़क पर राइट की जगह लेफ्ट साइड सरकार चलाए तो नियम तोड़ने की सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसे ही जब मनुष्य आत्मा प्रकृति के देश अर्थात इस धरती पर आते हैं तो उसे यहाँ के नियमों का पालन करना ही होगा। शाकाहारी मनुष्य शरीरों के लिए प्रकृति ने फल सब्जियां अनाज आदि प्रदान किए हैं, वे ही कृतज्ञ भाव से स्वीकार करने चाहिए, न कि प्रकृति में मौजूद अन्य पशु पक्षियों को मारकर खाकर पाप का भागी बनना चाहिए। पशु प्राणियों थलचर दल और जलचर नवचर सब में चैतन्य आत्मा है, उनके शरीर को आहत करना पाप का भागी बनना है, जिस वजह से प्रकृति और पशु दोनों सजाए देते हैं। प्रकृति देह की बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में और पशु आक्रमण के रूप में। पेड़ पौधे भी बीज से निकलते हैं, बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, परंतु वे जड़ हैं। जिन्हों को प्रकृति ने मनुष्यों के भोजन हेतु औषधोपचार हेतु स्वास्थ्य लाभ हेतु बनाया है, फल सब्जियां तोड़ना काटना खाना कोई पाप नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसी चैतन्य आत्मा को देह से अलग नहीं कर रहे हैं, जैसे पशु हत्या में किया जाता है, और न ही यह प्रकृति के विरुद्ध कर्म है, क्योंकि प्रकृति में जो है, हाँ, प्रकृति ने मनुष्य शरीर शाकाहार के लिए ही बनाया है, इस बात को विज्ञान सिद्ध कर चुका है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।
1: प्रेम की गंगा, करुणा की देवी, वात्सल्य की प्रतिमा वो परम सेवी। प्रेम की गंगा, करुणा की देवी, वात्सल्य की प्रतिमा वो परम सेवी। शक्ति की दानी, सच्चाई का दर्पण, शुभ भावना की धारा, संपूर्ण शिव समर्पण, संपूर्ण शिव समर्पण। खिले हुए फूलों की जो महकती कयारी है, खिले हुए फूलों की जो महकती कयारी है, शिव सी जो सुंदर है, ऐसी दादी हमारी है, ऐसी दादी हमारी है।

नमस्कार दोस्तों, तो मैं ज्योत्सना फिर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है मांसाहार रोगों और पापों को निमंत्रण देता है। जैसा कि हम सभी देखते हैं, जैसी प्राकृतिक आपदाओं द्वारा मनुष्यों को तकलीफ होने पर प्रकृति पर कोई पाप नहीं चढ़ता, क्योंकि प्रकृति जो है वो जड़ है, उसमें आत्मा नहीं है। ऐसे ही प्रकृति द्वारा मिले फल सब्जी आदि खाने से मनुष्य आत्मा पर पाप नहीं चढ़ता, परंतु पशु की देह में विराजमान चैतन्य आत्मा को इसकी देह से यदि हम अपनी कामना पूर्ति के लिए अलग कर देते हैं तो पाप के भागी अवश्य बनते हैं। जैसे पहाड़ से यदि कोई व्यक्ति टकराकर गिर जाए तो पहाड़ पर पाप नहीं चढ़ता, हाँ, क्योंकि पहाड़ जड़ है। परंतु यदि किसी मनुष्य के धकेलने से वह व्यक्ति पहाड़ से गिरा हो तो धकेलने के कारण, हाँ, धकेलने वाले पर पाप लगता है, क्योंकि धकेलने वाला चैतन्य है और उसने एक चैतन्य आत्मा की देह को क्षति पहुंचाई है। किसी की देह छीन लेना, भले ही वो पशु पक्षी हो, महापाप है। फिर भी कुछ लोग यह तर्क देकर मांस खाते हैं कि फल फूल पेड़ पौधे साग सब्जी भाजी आदि में भी चैतन्यता है, लेकिन वास्तव में यह भ्रम है, अज्ञान है। फल फूल में पेड़ पौधे साग सब्जी हाँ भाजी आदि में चैतन्य आत्मा नहीं होती, पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि का हड्डी मांस जो है रक्त मज्जा से बना शरीर होता है, इसमें चैतन्य आत्मा होती है, जिस वजह से उनके सुख दुख के प्रकंपन प्रकृति में फैलते रहते हैं। यदि किसी प्राणी के शरीर की हत्या करते हैं तो उसे दुख पहुंचता है, हाँ, किसी को कष्ट देना पाप है, किसी की देह ही उस आत्मा से छीन लेना, भले ही वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, यह तो महापाप है। इस दुष्कर्म का दुखदायी फल मनुष्य आत्मा को भुगतना ही पड़ता है। मनुष्यों के लिए जड़ प्रकृति अर्थात शाकाहार ही बनाया गया है, जिसे खाने से किसी जीव अर्थात आत्मा के शरीर की हत्या नहीं होती, इसलिए मनुष्य आत्मा पर पाप का लेप छेप भी नहीं चढ़ता। यहाँ पर हम देखते हैं बढ़ते दुखों का एक कारण है जीव हत्या। मांस खाने के लिए पशु पक्षी के शरीर की हत्या करने से वे आत्माएं दुख क्रोध शोक भय आदि नकारात्मक भावनाओं के प्रकंपन वायुमंडल में फैलाती है, जिससे हिंसा और अशांति बढ़ती है। यह भी आज की दुनिया के बढ़ते दुखों का एक कारण है। फल फूल पेड़ पौधे साग सब्जी भाजी खाने से दुख का वायुमंडल नहीं बनता, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती जो दुख दर्द की लहर फैलाए। इसलिए मांसाहार छोड़कर शाकाहार अपनाना चाहिए, जिससे दुख अशांति और हिंसा का वायुमंडल बनाने में हमें सहयोगी न हम बने, हाँ, ताकि हमारे ही खाते में दुख हिंसा और अशांति न लिखी जाए। पति तपावन परमात्मा ने भी हमें शुद्ध सात्विक आहार लेने की श्रेष्ठ मत दी है। शाकाहार ही मनुष्य आत्मा की शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे अगर मिलती हूँ
और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो मैं ज्योत्सना फिर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है सहनशीलता ही सफलता का आधार है। एक तरफ हम देखते हैं कि सहनशीलता में ये भी हमें देखना हिसाब किताब का चुप्तू होना। कोई भी व्यक्ति हमें कटु वचन बोलता है, अपमानित करता है, तो समझना चाहिए कि पीछे का कोई हिसाब किताब चुप्तू हो रहा है। यदि हम सहन नहीं करते बल्कि क्रोध में आकर के उल्टा बोल देते हैं तो हिसाब किताब बढ़ जाएगा। इसलिए निंदा आदि को समझना चाहिए कि हम पर फूल बरस रहे हैं, और यह भी समझना चाहिए कि वह माया की जो है माया के वशीभूत है। क्रोध अहंकार आदि के प्रभाव में आकर यदि हम उसकी आलोचना करते तो हमने माया से हार खा ली। हाँ, यहाँ पर हमें देखना है हमारा कर्तव्य तो उस व्यक्ति तथा अपने को माया से मुक्त करना है। याद रहे कि लड़ाई तो माया से है ना, हाँ, ना कि किसी व्यक्ति से। इस प्रकार हम माया पर जीत पाते जाए तो सहनशीलता का गुण अपने आप ही आएगा। शिव बाबा कहते हैं कि मरजीवा अर्थात पुरानी देह व दुनिया से जैसे मर चुके हैं, मरा हुआ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। मरजीवा बनना मरना नहीं बल्कि माननीय बनना है। एक तरफ हमें ये भी देखना है कि कब तक हम सहन करें। कुछ लोग बार बार तंग करते व सताते रहते हैं। प्रश्न आता है कि कब तक सहन करें। यदि अपने हाँ आपने अगर उसे 9 बार सहन किया परंतु 10वीं बार सहन नहीं किया तो बाप दादा कहते हैं कि आपको सहनशीलता का खिताब मिल नहीं सकता। बाबा हमें क्या कहते हैं कि आपको सहनशीलता का खिताब मिल नहीं सकता। अतः हमें क्या करना चाहिए, जब तक हम संगम योग पर सहन करना ही हमारा क्या है कि हम समझे कि हम महान कार्य हमारा संपन्न हो रहा है, सहन करना पड़ता है। यह न समझकर हमें समझना है कि मैं बाप दादा यानी कि हम बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, बाबा ने मुझे सहन करने में आज्ञाकारी रहने का हमें स्वमान दिया हुआ है, मैं उस स्वमान रूपी तिलक को धारण कर रही हूँ। हाँ, समस्याओं को ड्रामा का नजारा समझ उड़कर पार करना होता है, यह झुकना नहीं उड़ना है। एक तरफ हमें ये भी देखना, पूर्वज आत्मा जो होते हैं वो मानव सृष्टि चक्र के आदि अर्थात सतयुग के शुरू में ही हम आत्माएं धरा पर देवी देवता के रूप में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि इस कारण तुम अन्य सभी मनुष्य आत्माओं के पूर्वज हो। लौकिक में जब बच्चे बड़े बूढ़ों के साथ शरारत करते हैं तो वे नाराज नहीं होते तथा कोई बात नहीं बोलकर सहन करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम सदा स्वमान में रहो, मैं पूर्वज आत्मा हूं, इससे आप ही सबका हाँ सब में अपने आप सहन होता रहेगा, सबकी बातें आप सहन करते रहोगे और सहनशीलता आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुणे की आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: क्रांतिकारी आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन की आधार भूमि रहा है। क्रांतिकारियों के उत्सर्ग का ही जज्बा था जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश किया था। क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे। बिस्मिल ने ही सबसे पहले कहा था कि यदि किसी देश का युवा शिक्षित, संगठित और शक्तिशाली हो तो देश की आजादी हिफाजत से रह सकती है। दुनिया की कोई ताकत उस देश को दास नहीं बना सकती। लखनऊ में सशस्त्र क्रांतिकारियों से मेल मुलाकात कर बिस्मिल ने शाहजहांपुर में अपने जैसे क्रांतिकारियों का संगठन खड़ा किया। इसी दौरान उनकी भेंट अशफाक उल्लाह खान से हुई। अशफाक और बिस्मिल के क्रांतिकारी दल का नाम था हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ। 7 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की बैठक हुई। राम प्रसाद बिस्मिल के सुझाव पर अस्त्र शस्त्र और कारतूस खरीदी हेतु ट्रेन का खजाना लूटा जाना तय हुआ। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 7 क्रांतिकारियों का एक दल सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में सवार हुआ। अन्य 3 क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ बख्शी, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को काकोरी से कुछ आगे जंजीर खींचना था। काकोरी स्टेशन और आलमपुर स्टेशन के बीच जंजीर खींचकर खजाना लूट लिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश क्रांतिकारियों की खादी की चादर घटना स्थल पर ही छूट गई। इस अनजानी भूल ने पुलिस को क्रांतिकारियों तक पहुंचा दिया। बिस्मिल को उनके शहर शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। काकोरी षड्यंत्र कांड के नाम से उन पर मुकदमा दायर किया गया। 16 अप्रैल 1926 को अंग्रेज जज ने उन्हें फांसी की सजा का फैसला सुनाया। फैसला सुनकर क्रांतिकारी एक दूसरे के गले मिले और भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष करते हुए जेल की तरफ चल दिए। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल को फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पूर्व बिस्मिल से अंतिम इच्छा पूछने पर उन्होंने कहा था, मैं अंग्रेजी साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ।

ज्यादा टेबल नहीं रखते, एक चाय का।

0: उस्ताद जी ये कहाँ रुक गए? राम भरोसे ढाबा?
1: ओए कुत्ते, राम भरोसे प्राजी के हाथ की चाय पिएगा तो सारी थकान भूल जाएगा। सत श्रीकाल राम भरोसे प्राजी।
2: ओ राम राम करतार सिंह, राम राम
1: जी। ये ढाबा तो बड़ा चकाचक कर लिया आपने, वो भी इतनी जल्दी।
2: हाँ भैया, बस सरकारी मदद मिल गई, अनुसूचित जाति जनजाति योजना के चलते।
1: ये तो बड़ा अच्छा हुआ प्राजी, अब जल्दी से दो स्पेशल चाय बना दो तो सफर की सारी थकान मिट जाए।
2: ओ अरे होए राजू, फिर दो चाय ले आ। आ गए रईस जादे।
1: कौन है ये लोग?
2: कॉलेज के लड़के हैं करतार, चले आते हैं यहाँ मस्ती करने, और क्या।
3: भैया चाय देना सबको
4: और समोसे भी।
5: हाँ अपना केमिस्ट्री वाला गंजा भी खूब समोसे खाता है।
6: यार भला हो उन क्रांतिकारियों का जिनके जन्मदिन या मरण दिन के चलते हमें छुट्टी मिल जाती है।
5: हाँ केमिस्ट्री की क्लास से तो बचते ही हैं और यहाँ पिकनिक भी हो जाती है।
6: हाँ अब उन्होंने सच में कुछ किया हो या नहीं, पर ये छुट्टी और पिकनिक के लिए हमें जरूर उन्हें थैंक्स कहना चाहिए।
7: शर्मानी चाहिए तुम लोगों को, उनका मजाक उड़ा रहे हो जिनकी वजह से यूं खुली हवा में सांस ले रहे हो, ये पिकनिक कर रहे हो, वरना गुलामी की जंजीरों से आज भी जकड़े होते सबके सब।
5: सब किताबी बातें हैं चाचा,
8: कोई कुछ नहीं करता किसी के लिए, सबका कोई ना कोई मतलब होता है। मतलब?
7: ठीक कहते हो बेटा, मतलब ही तो थे सब, पर मतलब ऐसा कि सब में होड़ थी फांसी के फंदे पर सबसे पहले झूलने की, उसे चूमने की।
5: अरे किसकी बात कर रहे हो चाचा?
7: अरे एक क्या न जाने कितने देशभक्त हुए ऐसे, कुछ का हुआ नाम तो कुछ आज भी गुमनाम, और ऐसे थे बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। अशफाक शाहजहांपुर का वो नौजवान जिस पर लोगों की निगाहें जमे बिना नहीं रह सकती थी, निकलता हुआ कद, हिला गोरा रंग, चौड़ा सीना, आंखों में चमक लिए वो झूम झूम कर चलता था, शराब नहीं पीता था, झूम कर चलना उसकी आदत थी, बस अपनी मस्ती में खोया। अशफाक जब कुछ अशार कहता, कुछ गुनगुनाता तो वो गजल हो जाता और वो उसमें खो जाता।

0: अरे बिस्मिल भाई साहब, जरा ठहरिए तो। मैं अशफाक आपको आदाब अर्ज करता हूँ, पर आप तो बिल्कुल अजनबी की तरह निकले जा रहे हैं।
1: तस्लीम भाई अशफाक, मैंने देख भी लिया था और पहचान भी लिया था, पर तुम अपनी शायरी के ख्यालों में खोए नजर आए तो दखल देना ठीक नहीं समझा। वैसे तुम गुनगुना क्या रहे थे?
0: आप भी गुनगुनाइए।

0: अच्छा भाई साहब, आप शाहजहांपुर कब आए और मुकदमे का क्या हुआ?
1: आए तो मुझे 2-3 दिन हो गए भाई अशफाक, पर सच बात तो ये है कि अब मैं अपने काम से काम रखता हूँ। और रही बात मुकदमे की, तो मैं बेदाग बरी हो गया हूँ। सरकार मेरे खिलाफ कुछ भी साबित न कर सकी।
0: ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई साहब कि आप मैनपुरी षड्यंत्र जैसे मामले में बेदाग बरी हो गए। पर आप जैसे लोग ही हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो ये देश आजाद कैसे होगा?
1: अब ये काम तुम जैसे नौजवानों का है अशफाक। हम लोगों को छुट्टी दो और संभालो अपना काम।
0: जहां तक इस तहरीक में शामिल होने की बात है तो मैं यकीनन शामिल होऊंगा, पर शर्त यह है कि मैं आपके साथ काम करूंगा।
1: भाई हमारी निप सकेगी कभी? मैं ठहरा एक कट्टर आर्य समाजी और तुम एक कट्टर मुसलमान। तुम्हें अपनी नमाज से और मुझे अपने हवन पूजन से फुर्सत ही नहीं है।
0: ये सब चीजें देश के कहां काम आती हैं भाई साहब। क्रांतिकारियों का मजहब तो उनका मकसद ही होता है।
2: ऐसा था अशफाक, बिल्कुल बेदाग, साफ, पाक, जिसे मजहब नहीं मुल्क प्यारा था।
3: तो क्या फिर अशफाक साहब और बिस्मिल साहब ने साथ काम किया?
2: साथ मिलकर काम तो किया ही, इसके पहले उनकी दोस्ती ऐसी हुई कि पूरे शाहजहांपुर में मिसालें दी जाने लगी। एक बार की बात है, अशफाक बहुत बीमार हो गया, बुखार बहुत तेज था, घर वाले परेशान, और वो पुकार रहा था।
4: राम, राम।
5: लाहौल विला कुवत, ये क्या राम राम बोल रहा है?
6: अशफाक, मेरे बच्चे आंखें खोल, देख देख, तेरी अम्मा तुझे पुकार रही है।
4: राम राम।
6: या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? कहीं कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया? अशफाक, अशफाक।
4: राम राम।
7: जनाब, मैं सारा माजरा समझ गया। ये अपने दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल को याद कर रहा है, हमें उन्हें बुलवाना चाहिए।
3: तो क्या फिर बिस्मिल साहब आए?
2: बिल्कुल वो आए, और उनके पुकारते ही अशफाक ने अपनी आंखें खोल दी।
8: वाह, क्या दोस्ती थी, मजहब से ऊपर।
2: हाँ, दोनों की दोस्ती में कभी मजहब आड़े नहीं आया, बल्कि उन्होंने तो दूसरों को भी पैगाम दिया इंसानियत के मजहब को अपनाने का।
3: वो कैसे?
2: एक बार की बात है, जब शाहजहांपुर मजहबी दंगों की आग में सुलग रहा था, हर तरफ हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे,

0: शहर में कर्फ्यू लग गया, देखते ही पुलिस गोली मार देती। ऐसे वक्त में भी दोनों दोस्त जान जोखिम में डालकर मिले और
1: राम भाई साहब, लोग मजहब के नाम पर ऐसे ही लड़ते रहे तो देश आजाद नहीं हो सकता।
2: ठीक कहते हो अश्वा, आजादी के मूवमेंट से पहले इन्हें एक करना ही होगा, भेद मिटाना होगा हिंदू और मुसलमान का।
3: तो क्या किया उन्होंने दंगे रोकने के लिए?
4: हाँ, क्योंकि शहर में तो कर्फ्यू था।
0: दीवाने कहाँ रुकते हैं किसी के रोकने से। उन्होंने आपस में मशवरा किया और बिस्मिल ने धारण किया ठेठ हिंदू रूप। सिर पर शिखा, खादी की धोती पर कुर्ता, कंधे पर दुपट्टा और माथे पर चंदन का लेप। और अशफाक ने मुस्लिम लिबास, अलीगढ़ी पायजामा, शेरवानी, सिर पर झब्बेदार तुर्की टोपी लगाए जान जोखिम में डाल पहुंच गए शहर के चौराहे पर और देने लगे आवाज।
1: अगर पुलिस को गोलियां चलाने का शौक हो तो हम पर गोलियां चलाएं। अगर हिंदू मुसलमान खून के प्यासे हो तो वो हम पर चाकू छुरे चलाएं।
2: हम लोगों का खून बहाकर आप लोग अपनी दीवानगी मिटा लें और हिंदू मुसलमान दंगों को हमेशा के लिए बंद कर दें।
1: कोई मजहब ऐसा नहीं कि वो दूसरे मजहब का खून बहाने के लिए कहता हो।

0: फिर क्या हुआ?
1: होना क्या था, दोनों शाहजहांपुर और देश के सच्चे सपूत थे। उनकी बातों का ऐसा असर हुआ कि लोग हथियार छोड़ गले मिलने लगे। मजहबी दंगों को दो दीवानों की आवाज ने दबा दिया। शाहजहांपुर में लोगों की जुबान पर थे दो ही नाम, अशफाक और राम।
0: वाह, दिलेरी की ऐसी दास्तान कहां सुनने मिलेगी?
1: हाँ, उम्मीद है कि तुम लोगों की समझ में आ गया होगा कि इन्होंने देश को भी कुछ दिया है, तुम लोगों की छुट्टियों के अलावा।
2: अब और शर्मिंदा मत कीजिए चाचा।
3: हाँ चाचा, अब हम इनकी कुर्बानी का मतलब समझ रहे हैं, पर आप कुछ और भी तो बताइए, इन्होंने इतना ही किया क्या?
1: अरे भाई, अभी तो बहुत सी बातें, बहुत से कारनामे बाकी हैं इनके, जिनके लिए खास तौर से इन दोनों देशभक्तों को याद किया जाता है। आज भी ऐसा ही एक काम था जिससे अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिल गई और आजादी के ये दो परवाने अमर हो गए। शहादत की वेदी पर चढ़कर हमेशा हमेशा के लिए।
4: तो क्या सिर्फ इन दोनों ने ही किया ये काम?
1: नहीं, इसमें उनके साथ थे चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ बख्शी, राजेंद्र लाहिड़ी के साथ ही और भी बड़े बड़े क्रांतिकारी देशभक्त।
0: पर चाचा, इन सब लोगों ने ऐसा क्या किया जो अंग्रेजी सरकार पर उसका इतना असर हुआ?
1: काकोरी कांड, राम प्रसाद बिस्मिल के दल का नाम था हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ, जिसकी उस दिन बैठक थी और मौजूद थे सभी क्रांतिकारी देशभक्त। क्रांतिकारी गतिविधि को चलाने के लिए जरूरत थी पैसों की, और इसलिए फैसला लिया गया ट्रेन से ले जाए जाने वाले सरकारी खजाने को लूटने का। सभी तैयार थे, लेकिन अशफाक को इस योजना पर एतराज था।
5: राम भाई साहब, मेरा मानना है कि ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूटने से क्रांतिकारी दल और ब्रिटिश हुकूमत में सीधा टकराव पैदा हो जाएगा, जो अभी नहीं है। सरकारी खजाना लूटना सरकार को एक खुली चुनौती होगी और अंग्रेज सरकार अपनी पूरी ताकत हमें मिटाने के लिए लगा देगी। अब ऐसी हालत में हम लोग अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने से पहले ही खत्म हो जाएंगे और हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि हम लोग पहले अपनी बुनियाद को पुख्ता करें और फिर मौका पाकर हुकूमत से सीधे टकराने की बात सोचें। हाँ, लेकिन मैं ये जाहिर कर देना चाहता हूँ कि मेरे कहने का ये मतलब ना लिया जाए कि मैं इस एक्शन से डरता हूँ। अगर आप सब लोगों की इच्छा है तो मैं इस काम में पूरे जोश से हिस्सा लूंगा।
0: फिर क्या हुआ? सबने अशफाक की बात मानी या अशफाक ने सबकी?
1: ज्यादातर लोग बिस्मिल साहब की इस योजना से सहमत थे, इसलिए अशफाक भी साथ हो लिए। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कुछ क्रांतिकारी सहारनपुर स्टेशन से लखनऊ जाने वाली गाड़ी में सवार हुए। इधर अशफाक अपने साथियों सचिंद्रनाथ और राजेंद्रनाथ लाहिड़ी के साथ काकोरी स्टेशन से सवार हुए और योजना के अनुसार गाड़ी के काकोरी स्टेशन से छूटने के कुछ देर बाद ही जंजीर खींच दी और
6: इधर है बक्सा, आओ निकलो से। तुम तीनों उधर जाओ और देखो कोई ट्रेन से नीचे ना आने पाए।
5: आप लोग घबराइए मत, हम देश की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी हैं। आपकी जान, आपका सम्मान और आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी गाड़ी से नीचे ना उतरे।
6: उफ़, ये बक्सा तो टूट ही नहीं रहा। अशफाक को बुलाओ।
4: अशफाक भाई, वहां आपकी जरूरत है, बक्से को तोड़ना है।
5: ठीक है, तुम यहां देखो, कोई भी ट्रेन से नीचे ना उतरने पाए। ये येलो पिस्तौल। ये लो,
6: खुल गया। चलो साथियों, काम हो गया, चलो भागो, जल्दी करो।
0: फिर क्या हुआ?
1: अरे होना क्या था, हड़कंप मच गया पूरी अंग्रेजी हुकूमत में और तलाश शुरू हो गई सबूतों और गवाहों की।
0: तो क्या कोई गवाह मिला अंग्रेजी सरकार को?
1: गवाही तो किसी की नहीं मिली, पर घटना की जगह पर खादी का एक चादर मिला जिससे हुकूमत को क्रांतिकारियों के घटना में शामिल होने का शक हुआ और पूरे देश में अंधाधुंध गिरफ्तारियां होने लगी और इस तरह दूसरे कई क्रांतिकारियों के साथ ही 26 सितंबर 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल भी गिरफ्तार कर लिए गए।
0: और अशफाक?
1: वो उस समय तो बच गए और महीनों तक पुलिस को छकाते रहे, एक शहर से दूसरे शहर पहचान बदल बदल कर, लेकिन एक गद्दार दोस्त की वजह से वो भी गिरफ्तार हो गए।
0: चाचा फिर क्या हुआ?
1: होना क्या था बेटा, मुकदमा चला और सभी देशभक्तों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई जिसमें अशफाक और बिस्मिल को फांसी पर चढ़ाए जाने का हुक्म शामिल था। सभी लोगों को जेल भेज दिया गया।
4: कितना गमगीन होगा ना माहौल उस वक्त, और उन देशभक्त क्रांतिकारियों के दिलों पर क्या गुजरी होगी देशभक्ति की यह सजा पाकर।
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सजा नहीं बेटा, फांसी तो जैसे इनाम था उनके लिए, उनकी तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई हो। और आजादी के उन दीवानों ने अपनी मौजूदगी से जेल का पूरा माहौल तक बदल कर रख दिया। झूमते गाते और मुस्कुराते इन मतवालों ने जेल की कठोर दीवारों को भी आजादी के रंग में रंग दिया।

0: और ऐसे ही उनकी शहादत का वो दिन नजदीक आने लगा जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था।
1: लेकिन चाचा, जिन्होंने इतनी बड़ी डकैती डाली, क्या वो जेल की दीवारें भी तोड़ ना सके?
0: बेटा, जेल की फौलादी दीवार तो वो तोड़ सकते थे, लेकिन अपने उसूल नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल इतने दयालु थे कि वे नहीं चाहते थे कि जेलर की नौकरी पर उनके कारण आंच भी आए। और अशफाक, वो तो खुश, बहुत खुश था, और फांसी के फंदे को चूमने के लिए बेकरार था। एक बार जब उनके दोनों बड़े भाई अपने बच्चों को अशफाक चाचा से मिलाने आए तो वो रोने लगे, और ऐसे वक्त अशफाक ने उनसे कहा,
2: अरे ये रोने का वक्त है कि खुश होने का? आप इन बच्चों को बताइए कि हिंदुओं में खुदीराम बोस और कन्हैयालाल दत्त जैसे सैकड़ों फांसी के तख्तों पर चढ़कर ये सबूत दे चुके हैं कि वे भारत माँ के बेटे थे। भाई, एक मुसलमान को भी तो फांसी पर चढ़कर ये सबूत देने दो कि मुसलमान भी भारत माँ के बेटे हैं। और मैं मुसलमानों में पहला खुश नसीब हूं जिसे ये सबूत देने का मौका मिल रहा है।
1: वाह, क्या जज्बा, क्या जोश था उनमें अपने वतन के लिए।
0: हाँ, ऐसे ही जोश को कायम रखते हुए फांसी पर चढ़ने जा रहे बिस्मिल से जब उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो वो बोले,
3: मैं अंग्रेजी साम्राज्य का विनाश चाहता हूं।
0: ये कहकर उसने आसमान की तरफ देखा और गीत गुनगुनाते हुए कुर्बान कर दिया अपने आप को भारत माता के चरणों में।

0: और अशफाक साहब का क्या हुआ?
1: अरे वो क्या कम था, उसे तो जैसे सदियों से इंतजार था इसी दिन का। वो उस दिन काफी खुश था। अशफाक ने उस दिन अपने लिए खास तौर से नए कपड़े मंगवाए, इत्र छिड़का और कुरान शरीफ का बस्ता टांगे कलमा पढ़ते हुए खुशी खुशी फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ चला। और वहां पहुंचकर उस दीवाने ने पहले फंदे को चूमा और बोला,
2: ऐ मेरी महबूबा, मुझे मालूम था कि निकाह के लिए तू मेरा इंतजार कर रही थी। लो, मैं आ गया और अब हम दोनों इस तरह मिलेंगे कि कोई हमें जुदा नहीं कर सकेगा। तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद से, चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से, जिंदाने फैजाबाद से।
3: वाकई चाचा, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। कितने अंधे थे हम, शायद अपने आप से भी आंख नहीं मिला पाए।
1: अब भी वक्त है बेटा, संभल जाओ। और कुछ नहीं तो उनकी कुर्बानी का मतलब समझो। उन्होंने हर देश आजाद किया है तो तुम लोगों से इस देश की तरक्की के लिए जो बन पड़े वो करना चाहिए।
0: हाँ चाचा, अब हम आजादी की कीमत समझ गए हैं और मिलके करेंगे वो सब जिससे दुनिया पे छा जाए हिंदुस्तान हमारा।
4: निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
5: तुम्हाला माहित आहे का, ईशान्य भारत जो कधी काळी दूरचा वाटत होता तो गेल्या 12 वर्षात आपल्या हृदयाच्या खूप जवळ आला आहे। ईशान्य भारतातील राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी वाढून 16,200 किलोमीटर वर पोहोचली आहे। सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशाला पहिल्यांदाच हवाई दळण वळणाची जोडणी मिळाली आहे। आता ईशान्य भारतासोबतचे अंतर कमी झाले आहे।
6: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
5: 12 वर्षे विश्वासाची, विकासाची, जनकल्याणाची।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है, हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच. हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं.
1: तेरे जैसा यार कहां.
0: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जात.
2: लकडी की काठी काठी पे घोडा.
0: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकत. त्याच सोबत
3: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
1: पहला नशा पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris.
5: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us. Welcome, sister.
6: Om Shanti.
5: Aapka swagat hai Being Bliss mein.
6: Thank you.
5: Sister, main ek line padhna chahunga.
6: Sure.
5: Perfect maturity is when a person hurts you and you try to understand their situation and don't hurt them back. Aur dusri hai on love. Love me when I least deserve it.
6: Beautiful.
5: Love me when I least deserve it, because that is when I really, really need it.
6: The powerful line hai. And hum kahenge ke jab koi aisi galti karta hai jisse hum kehte hamara vishwas toot gaya, जो हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था वो उन्होंने पूरा नहीं किया, जब उन्होंने कोई गलती की तब हमारा प्यार ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि इट गेट्स रिप्लेस्ड विथ एंगर, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, हर्ट. एंड दैट लाइन इज सो ब्यूटीफुल. लव मी व्हेन आई लीस्ट डिजर्व इट.
5: एक्चुअली बच्चों पे बहुत ये आता है ना, अगर बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, रियल लाइफ में कोई बहुत बड़ा नुकसान करके बिजनेस में आ जाएं, या स्कूल में कोई झगड़ा करके आ जाएं, या कहीं कोई चीटिंग करके आ जाएं, या मतलब कोई जो आपको बर्दाश्त भी नहीं होती है, उस टाइम पे वो जब घर आता है उसको कितने प्यार की जरूरत है. और हमने बोले तू ऐसा, तू वैसा, तूने हमारे खानदान का नाम खराब कर दिया. गेट आउट ऑफ दिस हाउस, वी डोंट नीड यू, वी डोंट वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विद यू. मतलब मैं तो ड्रामेटाइज नहीं कर रहा हूँ,
6: तो
5: मैं 1% में नहीं बोल रहा हूँ.
6: अभी तो आप उस लाइन को आराम से बोल रहे हैं ना.
5: तो मार मार के गेट के बाहर निकाल देते, बात नहीं करते, घर वाले बाइकॉट कर देते हैं. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करते हुए
6: आप जब
5: ये टाइम पर.
6: जरूरत किस चीज की है
5: प्यार.
6: सो बी डूइंग एब्सोल्युटली द ऑपोजिट.
5: बच्चे गाड़ी ठोक के आ जाते हैं, एक्सीडेंट मोटरसाइकिल पे हुआ, दर्द पूछने के बाद थप्पड़ मार देते हैं पहले. हाथ से चीज टूट गई बहुत महंगी, बच्चा अंदर से थर थर कांप रहा, एक थप्पड़.
6: तो ज्यादातर क्या हुआ कि जो एनर्जी देनी चाहिए उस टाइम उसकी ऑपोजिट एनर्जी थी. जब आप ये बात सुना रहे थे तो मुझे एक बात याद आई. कुछ समय पहले हमारे पास एक कपल आए अपनी बेटी को लेकर. वो बेटी 7th या 8th क्लास में थी उस समय. एंड दैट गर्ल, बिकॉज ऑफ यू नो, जैसे आजकल बहुत कॉमन हो गया है स्कूल्स में या वातावरण में कहें, तो दैट गर्ल वॉज इन्वॉल्व्ड विद समबडी, शी वॉज इन अ रिलेशनशिप, जैसे भी जिस लेवल पे वो है. तो एक दिन जब वो बच्ची घर आई शाम को, तो उसके चेहरे पे कुछ मार्क्स वगैरह थे थोड़े. तो इमीडिएट रिएक्शन जो पेरेंट्स का था वो था शॉक, एब्सोल्यूट शॉक, कि मेरी बेटी इतनी छोटी सी है 8th स्टैंडर्ड में एंड इज डूइंग समथिंग लाइक दिस. तो वो शॉक, एंगर, रिजेंटमेंट, मतलब इतना ज्यादा गुस्सा, एंड मिस्ट्रस्ट, विश्वास तो जैसे मतलब खत्म उस बच्चे के ऊपर. इफ यू मीट दैट गर्ल, मतलब एंजल देखना हो तो वो लड़की आपको दिखाई देगी, इतनी ब्यूटीफुल, नॉट फिजिकली बट ब्यूटीफुल पर्सन, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव प्योर पर्सनालिटी. तो जब वो मिले तो मतलब यू नो शी वाज लाइक एन एंजल, आई स्टार्टेड कॉलिंग हर एन एंजल बिकॉज शी वाज सो प्योर. एंड ये बात पता चली एंड पेरेंट्स ने जिस तरह के शब्द अपनी बेटी के लिए यूज किए, कांट यूज ऑल दोज वर्ड्स. एंड अब उन्होंने क्या करना शुरू किया कि जब वो घर से बाहर जाते वो उसको कमरे में लॉक करके चले जाते, क्योंकि बोथ वर वर्किंग, तो वो लॉक करके जाना, ये कई दिनों तक चलता रहा. अब धीरे धीरे, पहले तो सोचा स्कूल नहीं भेजेंगे अभी थोड़ा टाइम, क्योंकि कहीं अकेले भेजेंगे ही नहीं, फिर स्कूल तो जाना पड़ा. अच्छा, स्कूल तक ये बात पहुंच गई, स्कूल में भी पता चला. स्कूल का रोल देखिए, जो हम कहते हैं ना, हम बड़े कैसा रोल प्ले कर रहे हैं जब हमें किसी की कोई गलती पता चलती है. द प्रिंसिपल टेक्स एन एक्शन कि ये बच्चा हमारे स्कूल में नहीं रह सकता.

0: लगता है शी इज बैड इन्फ्लुएंस ऑन अदर पीपल एंड दिस इज वन ऑफ द टॉप स्कूल्स ऑफ दिल्ली सिटी, मतलब वन ऑफ द स्कूल्स जिसको हम कहेंगे जहाँ काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मन को समझते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसके पीछे कोई बात हो सकती है, उसकी हीलिंग करनी है. लेकिन इमीडिएट जो फर्स्ट रिएक्शन था कि ये बच्चा हमारे स्कूल में नहीं रह सकता है, इस बच्चे की काउंसलिंग करानी शुरू की. जब ये सारी बात हमारे पास आई सेंटर पे, ऐसे वो सेवन स्टैंडर्ड की बच्ची है, वी आर नॉट सेइंग कि जो हुआ वो राइट था या यू नो व्हाट, बट अब जिस तरह से हैंडल हो रही है ये पूरी चीज और अब जिस तरह की एनर्जी आप उसको दे रहे हैं, वो अब आने वाले समय के लिए ये एनर्जी क्या डैमेज क्रिएट करने वाली है, वी कैन नॉट कॉन्सेप्चुलाइज. अभी जो डैमेज हुआ है, यस छोटा सा डैमेज है जो भी कहे, लेकिन वो डैमेज तो बहुत इजीली रेक्टिफाई हो जाएगा, वो कोई बहुत इतनी बड़ी बात नहीं हुई है. लेकिन आज आप सब मिलकर, चाहे वो पेरेंट्स है, टीचर है, काउंसलर है, आप प्रिंसिपल है, आप एक एक जो शब्द यूज कर रहे हैं उसके लिए, आप एक एक जो एनर्जी दे रहे हैं उसको, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि हमारे वर्ड्स कितने हार्श हो जाते हैं और हम क्या क्या कह देंगे बच्चे को उस समय, और आप जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली वो क्रिएट कर रहे हैं जो आप अभी बोल रहे हैं. जो आप अभी बोल रहे हैं वो सच नहीं है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट इस बच्चे पर अभी पड़ने वाला है वो डेफिनेटली एक बहुत डैमेजिंग फ्यूचर क्रिएट कर सकता है. अब ऐसे पेरेंट्स से जब बात की एंड टू एक्सप्लेन टू देम कि ऐसे समय पे बच्चे को सिर्फ प्यार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, डांट नहीं चाहिए, समझानी नहीं चाहिए, रीजन एडवाइस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब पेन एंड पहली बात तो वो बच्चा ही गिल्ट में है, फियर में है. पेरेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लाइन दैट टाइम, कहते ऐसे कैसे, अगर अभी नहीं समझाएंगे, अभी नहीं कुछ बोलेंगे तो पता नहीं कल ये क्या करके आएगी. अब इससे क्या हुआ, वो बच्चा अपने एक शेल में जाने लग गया. देन वी फेल्ट कि इनको रेगुलर काउंसलिंग चाहिए, तो पेरेंट और बच्चे दोनों को एक प्रोफेशनल काउंसलर के पास भेजा. काउंसलर ने पेरेंट से बात की, सब हुआ, एंड द काउंसलर कॉल्ड मी, आप मुझे फोन किया उसके बाद और कहा नेक्स्ट सेशन के लिए सिर्फ पेरेंट्स को भेजना, बच्चे की जरूरत नहीं है. आई सेड आई डोंट नो, डिड यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मतलब बच्चे की काउंसलिंग की जरूरत है. शी सेड नहीं, पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है एंड वो सिंगल चाइल्ड है, एक ही बच्चा है, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है आपस में एंड दोनों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाली है बचपन से. मदर तो बच्चे को फिजिकली बहुत बीट करती है, उस लड़की को मारती है, तो उस बच्चे ने प्यार का कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा है अपने पेरेंट्स से, तो दैट चाइल्ड इज ओनली लुकिंग फॉर लव.
1: इन बातों को तो प्रिंसिपल की ड्यूटी थी ना देखना,
0: किसी ने नहीं देखा ना. और वो काउंसलर ने इतने प्यार से समझाया कि दैट चाइल्ड इज ओनली डिप्राइव्ड ऑफ लव, और इसीलिए ठीक है, वी आर नॉट सेइंग कि जो किया वो सही था, बट वो था एब्सोल्यूट इनोसेंस में कि मुझे घर पे दोनों से वो प्यार मिल ही नहीं रहा, तो जहां से भी जिस फॉर्म में भी वो था, द चाइल्ड जस्ट ड्रिफ्टेड अवे, वो तो ऐसे प्यार से वापस आ जाएगी, कुछ भी नहीं करना है उसको, कोई काउंसलिंग नहीं चाहिए, पेरेंट्स को काउंसलिंग चाहिए. पेरेंट्स को ये बात बताई, कहते द काउंसलर इज ओनली रॉन्ग एंड दे डिडंट गो बैक टू द काउंसलर. स्कूल चेंज कर दिया, बच्चे के ऊपर एक अलग ही यू नो स्ट्रिक्टनेस, एक अलग ही वो सब करना शुरू कर दिया. आज सोल्यूशन क्या है, वी दिस लाइन जो आपने पढ़ी है, लव मी व्हेन आई लीस्ट डिजर्व इट. हाउ मेनी ऑफ अस कैन डू दैट, वी से आई लव यू बेटा बेटी, फ्रेंड्स, स्पाउस, एवरीथिंग, लेकिन जैसे ही कोई गलती होती है एवरीथिंग चेंजेस. हम क्या करेंगे कि जितनी बड़ी गलती उतना ज्यादा डांट, उतना ज्यादा घर में इट्स अ डिस्कशन, सब लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग परेशान होकर बैठे हुए हैं, सब लोग अपने दर्द का कारण उस बच्चे को या उस
1: व्यक्ति को समझाने की कोशिश कहाँ करते हैं, टारगेट बना देते हैं घर का,
0: मतलब वो अपने इंटेंशन तो समझाने की है ना. लेट्स से बच्चे को कोई आदत पड़ गई है, कोई भी तरह की एडिक्शन हो गई है, कोई ऐसे

0: गलती हो गई है वो बहुत गुना ज्यादा दर्द में है। हमें ये नहीं समझ में आता कि जिसने गलती की है वो दर्द में भी हो सकता है। हमें लगता है उसकी गलती की वजह से हम दर्द में हैं। यू नो सपोज स्कूल का
1: वेरी नाइस
0: प्रिंसिपल,
1: पॉइंट।
0: स्कूल का प्रिंसिपल पेरेंट्स को बुला दे और कहे कि आपके बच्चे ने ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे किया, तो पेरेंट्स हर्ट भी हो जाते हैं, वरिड भी हो जाते हैं, चिंता भी है बच्चे के लिए। अब वो वरी और एंजाइटी पेन है, दर्द है। तो हमें लगता है बच्चे ने गलती की, हम दर्द में हैं। ये इक्वेशन बनती है।
1: लेकिन जब दीदी ये लगता है ना कि बच्चा भी दर्द में है, तो हम अपने आप को कहते अच्छा है, उसको दर्द में रहने दो, उसको जितनी दर्द होगी उतना सीखेगा,
0: पर
1: नहीं
0: दर्द,
1: तो
0: हाँ
1: दोबारा करेगा फिर
0: पर दर्द कौन सा दर्द है उस समय बच्चे को, ये अंडरस्टैंड करना
1: गिल्ट,
0: हो। गिल्ट एक है,
1: गलती करके आया है।
0: गिल्ट है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका स्वमान तो कम होगा ना सबके सामने
1: लो
0: कुछ
1: सेल्फ
0: बोल,
1: एस्टीम भी हो
0: लो
1: जाती है।
0: सेल्फ एस्टीम हो गई। फियर है कि अब जो मेरे आसपास के बड़े हैं वो क्या कहेंगे। अरे हर एक के लिए, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, किसी से भी कहीं भी कोई भी एज में कुछ भी ऐसा हो जाए या कोई आदत हो या कोई बात हो जिसको हम गलत कहते हैं और जिसकी गलती की वजह से बाकी जो हमारे आसपास हैं उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। सी गलती मींस जो बाकी सब उसके प्रति अपनी एनर्जी चेंज कर लेते हैं। जब ये एनर्जी सबकी चेंज होती है, मतलब दर्द, इवन इफ इसे चिंता है, वरी है, बट वो दर्द है। जब सारे आसपास दर्द में चले जाते हैं, वो अपने दर्द में इतना हो जाते हैं कि उनको ये नहीं रियलाइज होता कि जिस जो टारगेट है जिसको हम कह रहे हैं वो गलत है। हमें लगता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, उसने तो गलती की, उसकी वजह से हम दर्द में हैं। वो कई गुना ज्यादा दर्द में है। ये अंडरस्टैंडिंग, हमें लगता है कि वो तो वो ना वो है ही गलत, वो मस्ती कर रहा है, वो गलत है, इसलिए वो ये सब कर रहा है, हम दर्द में हैं। जो टारगेट है हम सब की रिएक्शंस का, वो उस रिएक्शन से पहले ही दर्द में था। सपोज हमें आज पता चले कि किसी को कोई आदत लग गई है, कोई भी तरह की नशे की, एडिक्शन की, हमें तो आज पता चला। सपोज आज पता चलने से हर्ट हुए पेरेंट्स, चिंता हो गई भविष्य की, हेल्थ की, स्टडीज की, बहुत कुछ हुआ, हमें हर्ट आज हुआ है। वो बच्चा पहले से ही हर्ट में है, इसलिए वो इस एडिक्शन की तरफ गया है।
1: विवेक ने मुझे एक बार बताया कि एक हमारे एक नेबर का बच्चा मिला उसको दिल्ली में, तो बहुत बोले तुमको क्या हो गया दोस्ती में, आपकी हालत ऐसी क्यों है, तो भाई मुझे भूत ने पकड़ लिया, छोड़ता नहीं है, और वो भूत मेरे सर पे बैठा रहता है, मुझसे चोरियां भी करवाता है, क्या क्या करवाता है, मैं कितना दर्द में हूं, वो खुश नहीं है एडिक्शन में, उसको वो कहता है वो भूत ने पकड़ लिया मुझे और मैं परेशान हूं, दिन रात छोड़ता नहीं है, और ये सारे गलत काम मुझसे करवाता है,
0: अब
1: और मैं मजबूर हूं, बहुत परेशान हूं।
0: राइट, लेकिन अब वो क्यों दर्द में है, क्योंकि वो एडिक्शन के वश है। लेकिन उससे पहले की स्टेज वो एडिक्शन की तरफ गया क्यों, क्योंकि वो किसी और दर्द में था इसलिए एडिक्शन की तरफ गया। एनी सोल, दिस इज 100%, एनी सोल हु इज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट कंटेंटेड, कॉन्फिडेंट कंटेंटेड कैन नॉट गो टूवर्ड्स एनी सब्सटेंस अब्यूज। ये पॉसिबल नहीं है अभी इसको। नहीं नहीं नहीं वी हैव टू थिंक अबाउट इट। हमें खुशी चाहिए, हमें स्टेटस चाहिए, हमें आसपास के लोगों की एक्सेप्टेंस चाहिए, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो समाज है, हमें वो थ्रिल चाहिए, हमें अपने मन की चिंताओं से
1: कुछ
0: दूर होना
1: चाहिए
0: है,
1: ये मैं मान सकता हूं।
0: यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। अंदर कोई खालीपन है,
1: हाँ, और क्या चाहिए नहीं मालूम, कुछ
0: पर चाहिए तो ना,
1: तो
0: अंदर कोई
1: चाहिए ना।
0: खालीपन है या
1: हाँ,
0: तो, या फिर कोई बहुत दर्द है जिसको मुझे सप्रेस करना है, या फिर पीयर प्रेशर है कि अकॉर्डिंग टू मी यू नो ये सब चीजें लेना, सबके साथ बैठकर ये ले पाना मुझे रिस्पेक्ट और रिकग्निशन और अप्रिसिएशन देता है लोगों से। ये सेल्फ एस्टीम की कमी है ना। जिसके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी होगी वो ही इन चीजों को अपना स्टेटस सिंबल बनाएगा, वो ही इन चीजों को लोगों से अप्रिसिएशन और वर्थ लेने का सब्जेक्ट बनाएगा, उसके अलावा तो नहीं बना सकता।
1: जिन लोगों के साथ में रात को बैठता था,

0: क्लब्स वगैरह में, वो धीरे धीरे धीरे करते करते कहने लगे, यार तू रात को नहीं आता तो फिर दिन में मिलके फायदा ही क्या है, तुमसे मिलने का मन ही नहीं करता, शाम को तुम घर भाग जाते हो. करते करते अब आज ये हालत हो गई कि वो दिन में भी मिलने से मुझे खुश नहीं है. क्यों, प्रॉब्लम क्या आपके, मैं अगर आपके साथ दिन में हूँ और रात को नहीं हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? उनका आंसर नहीं उनके पास, बोलता नहीं यार तुम बस क्या समझते हो अपने आपको.
1: अब आप इस एज में है ना,
0: मैं आज की बात कर रहा हूँ,
1: आप इस एज में है तो इस एज में डिसीजन लेना इज इजियर, क्योंकि हम कहते हैं नहीं मेरी हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है एंड आई डोंट वांट टू टेक दिस, इट्स ओके अगर मेरे से नहीं कोई बात कर रहे हैं उस वजह से. लेकिन जब एक 15 साल का 20 साल का 25 साल का बच्चा होता है, उसके लिए अभी वो फ्रेंड सर्कल वो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है. उस समय वो ही उसकी सेल्फ एस्टीम की चीज है. जैसे कई लोग कहते हैं कि फिर हम पार्टी में जाएंगे अगर हम नहीं लेंगे,
0: अगली बार वो नहीं बुलाएगा,
1: नहीं बुलाएंगे. अच्छा नहीं बुलाएंगे भी नहीं, छोड़ो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सेल्फ एस्टीम की कमी है. इट्स 100% जो आत्मा के अंदर.
0: वैसे तो सिस्टर फिर सबको कमी है.
1: हाँ तो सबको कमी है, दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट, सबको कमी है. सेल्फ एस्टीम की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या कोई पेन है, किसी की चाइल्डहुड में फैमिली एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, वो प्यार नहीं है, कोई ना कोई कमी है, तब हम किसी चीज की तरफ जाते हैं. तो जैसे आपने कहा कि उनके दोस्त ने कहा कि अब ये भूत मुझे तंग कर रहा है, वो एक दर्द, लेकिन उसकी तरफ गए क्यों, पहले एक दर्द, वी आर ट्राइंग टू सी कि उस व्यक्ति कितने दर्द में है, पहले कोई दर्द है तब एडिक्शन की तरफ गए, अब एडिक्शन हो गया उसका दर्द तो सेकंड चीज, अब थर्ड जो आसपास के फैमिली और फ्रेंड्स से रिएक्शन मिलेगा, जो इतनी सारी एंगर या जो भी हर्ट मिलेगा उसका दर्द. ये तीन पेन्स, तीन डिफरेंट रीजंस फॉर पेन, ये दर्द में है, हम उसकी हीलिंग कैसे करेंगे?
0: बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े टेक्नीशियंस, उनके बच्चे देखते हैं बचपन से कि पिताजी को ये लत लग गई शराब की, पहले दोपहर को भी पी के सोने लगे, फिर बाद में सुबह 7 बजे ही शुरू हो गया, फिर काम पर ही जाने लगे पी के, तो उन देखते हुए भी इनका बुरा हाल है. तो मैं सोचता था कि ये लोग देखेंगे पिताजी का ये हाल तो ये टच भी नहीं करेंगे. मैंने ये भी देखा टच भी नहीं करेंगे, और ये भी देखा कि वो भी शुरू हो गए.
1: तो वो आत्मा की अपनी विल पावर और अपने संस्कार पे डिपेंड करेगा.
0: देखते हुए भी खड्डे में,
1: तो जो आत्मा स्ट्रांग है, सपोज मैं देखूं आपको ऐसे चलते हुए आप खड्डे में गिर रहे हैं, तो मुझे खड्डे में नहीं गिरना है ना, बट फॉर दैट आई हैव टू बी एक्यूरेट. लेकिन मैं भी कमजोर हूँ, मुझसे नहीं जंप हुआ उसके ऊपर, तो मैं भी गिरूंगी, इवन इफ आई सी यू फॉलिंग इन टू इट. एंड सिर्फ एडिक्शन की बात नहीं है, किसी ने झूठ बोला, किसी ने धोखा दिया, किसी ने चोरी कर दी छोटी, किसी ने कोई रिलेशनशिप में है वो गलती कर दी. गलतियां जरूर एडिक्शन नहीं है, जिसकी वजह से
0: लॉस है,
1: बिजनेस में लॉस है.
0: कितने लोग तो सुसाइड कर लेते, मैंने शेयर मार्केट में गलत पैसा लगा दिया.
1: फैमिली से, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जिसकी गलती हुई, फैमिली से क्या रिएक्शन मिलता है उस टाइम,
0: ज्यादा सजा मिलती है उससे ज्यादा.
1: सपोज किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, कोई और भी उसने लोन लिया था, तो वो सारे लोग आ गए पैसा लेने के लिए घर पे. अब ये जो फैमिली है, ये इसका रोल क्या है उस हेड ऑफ द फैमिली के प्रति? गुस्सा, हर्ट, तुम्हारी वजह से हमारी भी इंसल्ट हो गई, हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं, हम कैसे फेस करेंगे समाज को, हमने ये किया था, हम क्या कर रहे हैं? एडिंग पेन टू देयर पेन.
0: अमेरिका में आई नो सिस्टर, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जैसे नौकरी से उन्हें निकाला गया कोई गलती से, या जो भी बॉस ने बोला आज के बाद गेट आउट, वो घर से औरत घर छोड़ के चले जाती है. सॉरी यू लूज योर जॉब, लूज मी,
1: इट हैपेंस.
0: ऊपर उस वक्त उसको जरूरत है दर्द में.
1: दैट्स व्हाई दैट लाइन, लव मी व्हेन आई लीस्ट डिजर्व इट बिकॉज आई नीड इट द मोस्ट दैट टाइम.
0: ये बड़ी सुंदर लाइन है, आई नीड इट द मोस्ट
1: दैट टाइम. क्यों? क्योंकि मैं बहुत बहुत बहुत दर्द में हूँ उस समय. प्लीज लव मी द मोस्ट दैट टाइम. और ये कोई भी गलती, एक छोटा बच्चा झूठ ही बोल दे, उस समय गिल्ट में है, फियर में है, झूठ बोला ही क्यों? झूठ बोला क्योंकि डर था ना सच बोलने से, नहीं तो क्यों झूठ बोलेगा कोई? इतने सारे दर्द को प्यार से हील करने की बजाय हम और दर्द देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं याद रहता या ये अवेयरनेस नहीं है कि वो दर्द में है।
0: एक लड़का आया था नौकरी के लिए मेरे पास, बहुत परेशान, दिखता तो अच्छे घर का था। मैंने बोला तुम्हारे कपड़े खराब, ये क्या, कहाँ रहते हो तुम, कहाँ पहले नौकरी किया? तो बोले मैंने कहीं नहीं किया, मैं फलानी फलानी जगह रहता था, मेरी भाभी से मैंने सब्जी मांगी तो उसने बोला अभी नहीं मिलेगी, ये है ऑल दैट, तो मुझे गुस्सा है, मैंने प्लेट वो पे फेंक दी उनकी और घर छोड़ के भाग गया, नहीं तो बहुत मार पड़ती। घर में उसकी जो पिटाई होती या उसके बाद उसका जो हशर होता, वो डर से वो बॉम्बे भाग के आया था।
1: आपको मालूम है जो बच्चे स्कूल में फेल होने के बाद सुसाइड करते हैं या सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या सुसाइड का थॉट आता है, देयर इज अ कंप्लीट स्टडी ऑन दैट, कि सिर्फ स्कूल में या एग्जाम में फेल होने से, अभी तो जीवन में बहुत कुछ करना है, तो स्कूल में फेल होने से सुसाइड करने का मन क्यों करता है या सुसाइड कर क्यों देते हैं, अटेम्प्ट क्यों करते हैं? द फाइनल रिसर्च सेज इट्स नॉट बिकॉज दे फेल्ड, इट इज बिकॉज दे कैन नॉट फेस देयर पेरेंट्स आफ्टर द फेलियर। एंड दिस इज वेरी वेरी डीप। मैं एग्जाम में फेल हुआ वो ठीक है, मैं नेक्स्ट ईयर पास हो जाऊंगा,
0: फ्रेंड्स है, सोसाइटी है, पीयर प्रेशर,
1: इट इज बिकॉज मैं उन
0: कॉलेज जाने वाले, मैं स्कूल में ही रहूंगी,
1: मैं उन पेरेंट्स को फेस नहीं कर सकता जिन्होंने पूरा साल मुझे ये मैसेज कन्वे किया था कि मेरे पास होने पर उनकी खुशी डिपेंडेंट है, और अब वो मेरे फेल होने से इतने दर्द में चले जाएंगे कि मैं उस सीन का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए कई बच्चे सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए कई बच्चे घर भी छोड़ देते हैं भाग के, जैसे आपने कहा भाग के चल। व्हाई इज ऑल दिस हैपनिंग? क्योंकि जब कुछ गलती हुई जो एनर्जी मिलती है वो है एडिंग पेन टू पेन, एंड दिस अगर हमें ये समझ में आ जाए तो दोनों का फायदा होगा। एक, जब किसी ने गलती की, प्लीज वी हैव टू रिमेम्बर वो दर्द में है, वो गलत नहीं है। ये हम लेबल कौन सा लगा देंगे, गलत, बुरा, खराब, बेसमझ, ये लेबल लगा के ये तो रियलिटी भूल ही जाती है कि वो दर्द में है, फियर में है, गिल्ट में है, अंदर
0: तो
1: कोई रिजेंटमेंट
0: है, बोलते हुए सुना मैंने,
1: कैसे संस्कार है,
0: आज के बाद मेरा तेरा रिश्ता नहीं।
1: Yes. वो दर्द में है, और अब अगर हम इतना दर्द क्रिएट करेंगे तो हम भी दर्द में जाएंगे, एंड हमारे दर्द से उसका दर्द कई गुना बढ़ जाएगा। इस समय हीलिंग मीन्स वो जितनी बड़ी गलती उसके लिए कई गुना ज्यादा एक्सेप्टेंस और कई गुना ज्यादा प्यार। वो प्यार पहले मुझे हील रखेगा क्योंकि हम चिंता में, दर्द में, गुस्से में नहीं जाएंगे, और वो प्यार उनके वुंड को, जो चोट है उसको हील करेगा, और उसको हील करने से वो उसको उस गलती से भी बाहर निकालेगा। सिर्फ अभी की चीज को नहीं ठीक करेगा, एड्रेस द रूट ऑफ द प्रॉब्लम।
0: सिस्टर आप देखिए ना, कहीं भी आप बैठिए, लोगों की बातचीत आप देखो, ऐसे लोगों को तो दो मारना चाहिए, इसको इसको तो उल्टा लटका देना चाहिए, इसको तो सड़क के ऊपर लटका के शूट कर देना चाहिए। बेसिक थॉट ये है, इसको मारो, इसको तोड़ो, इसको उल्टा लटका दो, पनिश हिम, एवरीबॉडी वांट्स टू जस्ट ऐड पेन टू द पेन। तो फिर आपकी बात कहां तक सही है, कहां तक गलत?
1: जो हम देखते हैं कि वर्तमान समय कुछ जेल्स में, प्रिजंस में ये हो रहा है कि जिनको, मतलब जेल में रखा जा रहा है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ अ पास्ट, उनको जो वहां का वातावरण दिया जाता है और उनको जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनकी हीलिंग की जाती है ताकि जब वो यहाँ से निकल के बाहर जाएंगे, दे डोंट गो बैक एज क्रिमिनल्स बट दे गो बैक एज रिफॉर्म्ड सिटीजंस ऑफ सोसाइटी,
0: रिफॉर्मर्स।
1: यस, एब्सोल्युटली।
0: जाके लोगों को भी शिक्षा दे सकते हैं।
1: उसके लिए एक देश में एक एक्सपेरिमेंट की तरह किया गया एक जेल में, कि जितने स्टाफ थे, यू नो, जेल के जो स्टाफ थे उन्हें ये एक प्रोजेक्ट की तरह दिया गया कि जो उस जेल के इनमेट्स हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनको गेस्ट की तरह ट्रीट कीजिए, पूरी कॉन्शियसनेस अपनी शिफ्ट कीजिए कि वो इस स्थान पर मेहमान है।
0: चोर हमारे मेहमान।
1: मेहमान किस लिए? ताकि आपका प्यार और आपका रिस्पेक्ट उनके लिए, क्योंकि वो चोर है, वो मर्डरर है, वो क्रिमिनल है, तो एनर्जी कौन सी जाएगी? हेट्रेड, एंगर, नफरत, एंड कितना उनको नीचा देखा जाएगा। एंड इट डज मैजिक। इंडिया में है, तिहार जेल में एक्सपेरिमेंट है, उनको स्पिरिचुअल सेशंस कराए जाते हैं, उनको पढ़ने का मौका दिया जाता है, उनको अपना करियर बनाने का मौका दिया जाता है। बट ऑल दिस इज डन नॉट ओनली आउटसाइड बट विद द एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट। अगर एक गलती करके जो आया है उसको ये वाइब्रेशन मिले, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, तो उसका क्राइम यहाँ से कभी खत्म नहीं होने वाला है। इनफैक्ट जब वो पनिशमेंट, जो हम कहते हैं पनिशमेंट तो चेंज करने के लिए होनी चाहिए ना, लेकिन अगर वो 1 साल या 14 साल उस वातावरण में रहे कि ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, उसके बाद जब वो बाहर जाए वहां से, तो वो पहले से भी ज्यादा दर्द में जाएगा। और यही अगर उसको उतना समय रिस्पेक्ट, प्यार, और बाहर जाने के बाद अगर समाज से, अपने परिवार से रिस्पेक्ट और प्यार मिले, रिफॉर्म्ड। फोकस रिफॉर्मेशन होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं। पनिशमेंट एंगर से हो सकती है, डांटने से हो सकती है, रिफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन प्यार से हो सकता है।
0: चलिए सिस्टर, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं।
1: उसके लिए एक ही चीज करनी है, जितनी बड़ी गलती, मतलब चाहे कोई भी गलती, उतना ज्यादा कई गुना हमें प्यार और अंडरस्टैंडिंग। जो हम नॉर्मल की डेफिनेशंस हैं अपनी, डांटना तो होता ही था, डांटना तो पड़ेगा ही, गुस्सा तो आएगा ही, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स मेकिंग द सिचुएशन टफर देन बिफोर।
0: देखते हैं सिस्टर, अगले एपिसोड में फिर से इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो आपने, जैसे आपने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन प्यार से होना चाहिए, तो मैं अपने ऊपर भी थोड़ा प्यार से ट्रांसफॉर्म करने की खुद को, स्वयं को कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। नमस्कार। थैंक यू।
2: When someone has made a mistake, they are in pain. We feel they have done wrong and we are in pain because of their mistake. Truth is, they are in more pain than anyone else. The one who has made a mistake creates guilt, low self-confidence, low self-esteem, fear of rejection and insecurity of future. If we create anger, hurt and hatred, then we are increasing their pain many folds. They need love and acceptance to heal their pain. A person goes towards any substance addiction because either they are deprived of love or crisis in life or low self-esteem and seeking public approval for feeling good. Help them to heal the pain in order to give up the addiction. The intention should be reformation, not punishment. Anger gives punishment, depletes the energy of the one who has made a mistake. Love empowers them and brings about reformation. God.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा।

0: तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना।
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतने भारी नहीं कन्हाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचू, दासों के बाजार में बेचू। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी?

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां बिरहा की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

0: सियासत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: आरती मन मानती, कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बस्ता क्यों नहीं बांधती, बस्ता क्यों

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप उन्हें कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सुने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसमें है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है।
1: काश मैं इसे झूठ कह सकता दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है।
2: बास चीजें इंसान के बस में नहीं होती बेटा, भगवान के हाथ में होती है।

लप्पे हल्का सा तबस्सुम तान पूरा जेब दोश हर अदा मस्ती में डूबी हर नजर बादा फरोश। फिल्म कोहिनूर के लिए राग हमीर में ये गाना जब मैंने बनाया और मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनाया तो बहुत खुश हुए, लेकिन फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो कहने लगे ये गाना लोग पसंद नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल राग है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने फरमाया कि हुजूर मुझे एक दफ़े गाने दीजिए और मैं इसकी कोई फीस आपसे नहीं लूँगा, अगर लोगों ने ये गाना पसंद किया तो फिर मुंह मांगी फीस आपसे लूँगा। प्रोड्यूसर ने कहा मंजूर है। मैंने भी कहा कि इस जगह के लिए मैं कोई दूसरा गाना नहीं बनाऊंगा, यही गाना रहेगा। बाहर कैफ वो गाना रिकॉर्ड हुआ और मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत जमकर डूबकर इस गाने को गाया और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो ये गाना मकबूल हुआ, लोगों ने पसंद किया। फिल्म के प्रोड्यूसर ने मोहम्मद रफ़ी साहब से कहा कि भाई आप जीत गए मैं हार गया, बोलिए क्या फीस आपको पेश करूं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा मेरी फीस मुझे मिल गई, हाय मैंने तो कुछ नहीं दिया। कहने लगे हुजूर आवाम ने जनता ने ये गीत पसंद किया, यही मेरी फीस थी, मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा। तारीफ नौशाद साहब की कीजिए जिन्होंने इसमें कमाल कर दिया। तो मैंने कहा हुजूर मैंने क्या कमाल किया, मैंने तो पुरानी शराब को नई बोतलों में भर के आपके सामने पेश कर दिया, कमाल तो इस राग हमीर का है।